आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 11वीं तिथि। तदनुसार 2 जुलाई सन 2026 ईस्वी प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: सभा के कार्यक्रमों की शुरुआत में आइए सुनते हैं चिंतन।
1: द्वेष जीवन की बड़ी विसंगति है। यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख एवं स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है। कई बार छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर हम अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। किसी भी संबंध में जल्द राय बनाने की आदत भारी असर डालती है। अच्छा तरीका यह है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। आप अपनी जिंदगी जिएं, अपने कौशल पर भरोसा कर आगे बढ़ें। ये समझें कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। कई बार आप खुद को बाकी लोगों की तुलना में कम समझने लगते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, सहपाठी या घर के किसी सदस्य को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो आपको ये बात पसंद नहीं आती है। आप सोचने लगते हैं कि वह तरक्की करे लेकिन वह आपसे आगे ना बढ़े। इसी भावना को द्वेष की भावना कहा जाता है। ऐसा अक्सर ऑफिस, घर, रिश्तों में होता है। जैसे आपके ऑफिस में किसी साथी का प्रमोशन होना, लाख कोशिश के बाद भी आप प्रमोशन हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करते देख आप खुद को कम समझने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जिस काम को करने में आपका मन लगा करता था उसे करने में आपको झिझक होने लगती है और मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये द्वेष है, जिसे ईर्ष्या भी कहा जाता है। द्वेष आपके रिश्ते भी खत्म कर सकती है और उनमें कुछ खटास भी ला सकती है। आमतौर पर आप अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह एक सामान्य बात है और अक्सर ऐसा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरे व्यक्ति के साथ आपका पार्टनर घुलने मिलने लगता है। आप उस तीसरे व्यक्ति को खुद से ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ देखने के कारण आप उन्हें खोने से डरने लगते हैं। वक्त के साथ आपको खुद को समझना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समझाना चाहिए। हर व्यक्ति को आजादी पसंद होती है और आपको अपने साथी को एक स्पेस देना चाहिए। अगर आप साथी को किसी तरह के बंधन में रखेंगे तो वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आप उससे किसी की तुलना करते हैं, यह बात आपके बच्चे को पसंद नहीं आती है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है और आपसे अपनी बात बेझिझक नहीं कह पाता है। कई बार परिवार में अपने भाई बहन को खुद से ज्यादा तरक्की करते देख आप जाने लगते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में उससे अधिक कामयाब हो। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से आप अपने भाई बहन से द्वेष करने लगते हैं और आपके बीच प्यार और लगाव कम हो जाता है। आपको अपने मन को समझाना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि अपनी तरक्की के लिए खुद ही कार्य करना होगा। ऐसा हमेशा होता है कि आप किसी को अच्छा करते देख अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। जो आपकी खूबियां होती हैं उनके लिए आप खुद को सराहते नहीं हैं। अपने आप को आम समझ लेने से ही आपके काम करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि आपको अपने काम के लिए प्रशंसा नहीं मिलती है तो आपको खुद के कार्य पर गर्व महसूस करना चाहिए और जो आपने हासिल किया है उसके लिए खुश होना चाहिए। कई बार अपने सफलता के लिए उत्सव मनाना भी अच्छा रहता है क्योंकि ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है। हमेशा ईर्ष्या से एक सीख लेकर आपको अपनी गलतियों और कमियों को सुधारना चाहिए।
0: अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अपराजिता एक फूल के रूप में आप जानते हैं। इसकी लताएं सुंदर होती हैं। भारत में धार्मिक, औषधीय और सजावटी उद्देश्यों के लिए अपराजिता को उगाया जाता है। इसे ब्लू पी, शंखपुष्पी, वाटरफ्लाई पी के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता एक आसान और कम देखभाल वाला पौधा है।

0: जिसे कोई भी उगा सकता है। अपराजिता के पौधे की विशेषता ये होती है कि यह एक बेल वाला पौधा है जिसे आप थोड़ी मेहनत करके हेज के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। इसके फूल नीले सफ़ेद रंग के शंख जैसी आकृति के होते हैं। यह गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ता है और लगभग साल भर हरा भरा रहता है। इसके बीज फली के रूप में विकसित होते हैं जो सूखने के बाद नए पौधे उगाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अपराजिता के पौधे का धार्मिक उपयोग है। इसे पूजा और हवन में प्रयोग किया जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। औषधीय गुण भी अपराजिता में पाए जाते हैं। मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के उपचार में भी अपराजिता का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इसे रक्तचाप और मधुमेह नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। चाय बनाने के लिए भी अपराजिता का प्रयोग किया जाता है। अपराजिता के फूलों से ब्लू टी बनाई जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। त्वचा और बालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण। इसकी जड़ें नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ती है जिससे यह जमीन की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसका बागवानी में भी प्रयोग होता है। अपराजिता को बीज से भी आप उगा सकते हैं। अपराजिता के पौधे की सूखी फलियों से बीज निकाल सकते हैं। बीज अच्छी तरह परिपक्व जब हो जाते हैं तो वे गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। बीज आप तैयार करें, रात भर पानी में भिंगो दें जिससे ये जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मिट्टी जिसमें आप लगाएंगे उसमें 50% बागीचे की मिट्टी मिलावें, 30% जैविक खाद और 20% बालू या रेत मिलावें। गमले या जमीन में बोने से पहले मिट्टी को नम कर लें। गमलों या बागीचे में यदि आप उगा रहे हैं तो इसके लिए भी विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 8 से 10 इंच का गमला लें और उसके निचले हिस्से में छेद होने चाहिए। बगीचे में उगा रहे हैं तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां दिन भर 6 से 7 घंटे धूप मिल सके। इससे यह तेजी से बढ़ता है। 1.5 से 1 इंच गहराई में बीज लगाएं। प्रत्येक बीज के बीच से 6 से 8 इंच की दूरी रखें। नियमित रूप से पानी और धूप लगना चाहिए। पानी आप इतना दें कि मिट्टी गीली जरूर हो जाए लेकिन जल भराव नहीं हो। अंकुरण के बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अंकुरण के 2-3 महीनों में फूल आना शुरू होते हैं। जब बेलें बढ़ रही हों तो उस समय लकड़ी या जाली का सहारा दे दें। फूलों के अच्छे विकास के लिए 15 दिन में गोबर की खाद या जैविक खाद डालें। महीने में एक बार सरसों की खली या केले के छिलके की खाद डाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ समस्याएं जो होती हैं कीटों की और रोगों की। अगर पत्तों पर सफ़ेद धब्बे दिखे तो नीम के तेल का छिड़काव करें। अधिक नमी होने पर फफूंद लग जाती है, इसलिए पानी देने में आप संतुलन बनाए रखें। जब आप गमले में पौधे लगाए हैं तो किसी तरह के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें। बालकनी में लगाए हैं, आंगन में लगाए हैं तो उस समय तो आप कीटनाशक का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। केवल नीम के तेल का छिड़काव करें और फफूंद यदि लगते हैं तो उसके लिए पानी का नियंत्रण कर रखें। इस तरह से आप अपराजिता के पौधे घर में गमले में या बागीचे में लगा करके लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप कृषि चर्चा कार्यक्रम में अपराजिता पौधे के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी

621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देश वंदना।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम में अब सुनिए भजन। कार्यक्रम का पहला भजन मन्ना डे के स्वर में

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए रामचरितमानस पाठ।

152. Episode number 152. 152.

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: को अस्पताल से पहले क्या करें। डॉक्टर मोतीलाल दास से हरेंद्र आजाद की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जानकारी देने के लिए NMCH पटना से हैं डॉक्टर मोतीलाल दास, और आपका इस फील्ड में काफ़ी लंबा अनुभव है। और आज हम आपके माध्यम से जानेंगे सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने से पहले क्या करें। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, कभी बाइक दुर्घटना हुआ, कभी कार दुर्घटना हुआ, या हम में से कोई ऐसे ही कहीं गिर गया। तो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को जब हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उस समय भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं, कैसे हम उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएं ताकि बीमारी और जटिल ना हो और उपचार आसान हो जाए। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपको।
2: धन्यवाद
1: सर। जो हमारा आज का विषय है, हाँ, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें।
2: सबसे पहले तो है कि आजकल सामान्य दुर्घटनाओं से लेकर के गंभीर दुर्घटनाएं तक हो जाती है।
1: जी जी।
2: कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दुर्घटना के समय ही आदमी का डेथ हो चुका होता है।
1: जी।
2: और कभी कभी जैसे कि आपस में टक्कर होता है, मोटरसाइकिल टक्कर होता है, कार से टक्कर होता है, तो अंदर में ही थोड़ा हल्का थोड़ा चोट लगता है, तो उस स्थिति में बहुत सोचने की बात नहीं है।
1: जी।
2: सिंपल एनाल्जेसिक ले लेने से, या छिल गया उस पर एंटीबायोटिक लगाने से, या थोड़ा सा गंभीर है घाव छिल गया ज़्यादा तो कट गया तो उस पर कटने पर भी देखा जाता है कि ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा कट जाता है कि वेन या आर्टरी कट गया तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में वहाँ मोटा पैड रख करके कपड़े से बांध देना चाहिए।
1: जी जी।
2: और कभी कभी देखा गया कि गंभीर स्थिति में फ्रैक्चर हो जाता है।
1: जी जी।
2: और कभी कभी ऐसा देखा गया कि सीवियर इंजरी जब होता है हाईवे पर देखिएगा, तो उस समय हड्डी मल्टीपल इंजरी हो जाता है, हड्डी का फ्रैक्चर होता है, स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले जो व्यक्ति है उसके स्थिति को देखना पड़ता है।
1: जी।
2: बाहर निकालते समय में या बाहर रखते समय में देखना पड़ता है कि व्यक्ति जीवित है या सांस चल रहा है या बेहोश है या किसी तरह का और कोई ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। तो सबसे पहले तो जहाँ से ब्लीडिंग पैर में अगर हो रहा है तो देखना चाहिए, कपड़ा हटा के देखना चाहिए ब्लीडिंग कैसा है।
1: जी।
2: सिंपल ब्लीडिंग है कि कोई ज़्यादा गंभीर ब्लीडिंग है तो उसको बढ़िया से कपड़ा से बांध कर रखना चाहिए। फ्रैक्चर है तो उस पार्ट को रेस्ट में रखना चाहिए। अगर अनकंशस हो गया, बेहोश हो गया, उस स्थिति में उसको देखना है सांस चल रहा है कि नहीं। सांस चल रहा है तो उसके मौत को देखना है, सांस नली को देखना है कि सांस क्लियर है कि नहीं। कभी कभी डैश होता है तो मुंह में चोट लग जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉट जमा होता है तो उसको साफ करना चाहिए। तो इस स्थिति से अगर साफ हो जाता है तो सांस लेते समय उसको ऑक्सीजन मिलता रहता है तो इससे जान बचा जा सकता है।
1: जी। तो अस्पताल ले जाते समय जब व्यक्ति को मान लीजिए अस्पताल ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस हो या अपनी गाड़ी हो या किसी अन्य सवारी से लेके जा रहे हैं, तो उस समय जो अटेंडेंट है या जो भी व्यक्ति लेके जा रहा है, जो मदद पहुंचा रहा है, उसे क्या क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ?
2: सबसे पहले तो ध्यान देखना है कि सांस चल रही है कि नहीं।
1: जी जी।
2: अगर सांस नहीं चल रही है, पल्स चल रही है कि नहीं, अगर नहीं पल्स चल रही है तो उसको तो CPR की आवश्यकता पड़ जाती
1: जी।
2: है। अगर CPR नहीं देते हैं तो कोई फायदा नहीं हो जाता ध्यान।
1: जी जी।
2: इसलिए जब तक मेडिकल सहायता नहीं पहुंच जाती है तब तक जो है उसको CPR देनी चाहिए।
1: जी।
2: और अगर इसी बीच अगर हेल्प आ गया, एम्बुलेंस आ गया, तो उसको ऑक्सीजन लगा देना चाहिए।
1: जी।
2: और अगर पल्स आ गया उसके बाद, तो अस्पताल पहुंचने के बाद उसको जो ICU ट्रीटमेंट है ICU में रख करके उसको गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उसका इलाज करना चाहिए।
1: निश्चित रूप से बहुत सही पते की बात आपने बताई कि जो पीड़ित है उसकी क्या स्थिति है उसका अवलोकन हम करें, आवश्यकता अनुसार उसे CPR दें, यानी कि उसके छाती पर दोनों हाथों से जोर से प्रेस करने की जरूरत है ताकि उसकी गई हुई सांस वापस
2: आ जाए।
1: और यदि कहीं कट गया हो जाए तो वहां पैड लगाकर बांधने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर मल्टीपल फ्रैक्चर है तो ऐसी स्थिति में सर बॉडी को कैसे रखना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बता दें। कहीं गर्दन में चोट हो, माथे में,
2: उसके लिए है कि एक चादर जैसा चीज है तो चादर पर रख करके तीन आदमी तीन जगह, माथे तरफ, कमर के तरफ, पैर के तरफ, एक साथ उठा करके उसको ट्रॉली पर रखना चाहिए या गाड़ी में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि कोई भी पार्ट इधर उधर लचक नहीं होवे। कभी कभी सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हो जाता है या स्पाइन का इंजरी हो जाता है तो उस स्थिति में और स्थिति गंभीर हो जाती है।
1: जी, जी।
2: तो इससे बचाव के लिए यही है कि सावधानी पूर्वक एक साथ उठा करके उसको ट्रांसफर करना।
1: क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से श्रोताओं, यदि दुर्घटना

रामचरित मानस पाठ के बाद आकाशवाणी पटना की अगली प्रस्तुति स्वास्थ्य चर्चा। सड़क दुर्घटना में घायल

0: ना हो ही जाए तो फिर उसके भयावहता को हम कम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसके खतरे को काफी कम कर सकते हैं। आज इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोतीलाल दास जी, हमारे स्टूडियो में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। स्वास्थ्य चर्चा अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे चंदन कुमार श्रीवास्तव की आवाज में गजल। 7:25 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे रोशन अली, इनसे आज आप सुनेंगे सारंगी वादन। प्रादेशिक समाचार 8:48 पर होंगे, उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर, कलाकार होंगे वैद्यनारायण राय। दिन के 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, बिहार का लोक संगीत भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे 12:00, कलाकार होंगे मनोरंजन ओझा और संकट मोचन मिश्र। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का समय होगा 12:30। संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती आप सुनेंगे 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:30 पर और 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार 2:00 होंगे। सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी बुलेटिन आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। ग्रामीण महिला कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे चक्रपाणि मिश्रा। फिल्म संगीत रात 8:00। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय लोकगीत एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दकिया ओवल लंदन में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और इसके तुरंत बाद 7:00 हिंदी में समाचार होंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेता काईशी इत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर

0: किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटिंग में भी 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिन के इतिहास से और

जानते हैं कि आज के दिन क्या खास है हमारे इतिहास में। लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेत्री लिंडसे लोहान का जन्म आज ही के दिन यानी 2 जुलाई वर्ष 1986 को हुआ था। मशहूर ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री मार्गोट रोबी का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1990 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी यूसुफ मेहर अली का निधन वर्ष 1950 में आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने, उन्हें विश्व स्तर पर एक मंच पर साथ लाने और खेल पत्रकारिता के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और साथ ही विश्व खेल पत्रकार दिवस जो आज के दिन मनाया जाता है नैतिक खेल पत्रकारिता और निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने में खेल मीडिया की भूमिका का जश्न मनाता है। खेल पत्रकारिता एक अत्यंत लोकप्रिय और कलात्मक विधा है जो केवल खेल के परिणामों को बताने तक सीमित नहीं है बल्कि खेलों, खिलाड़ियों और उनसे जुड़ी घटनाओं का गहन विश्लेषण, जीवंत विवरण और कहानी प्रस्तुत करती है और खेल पत्रकार को संबंधित खेल के नियमों, बारीकियों, खिलाड़ियों के फॉर्म और खेल रणनीतियों का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। खेल रिपोर्टिंग में स्कोर, खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, समय और तिथियों जैसे आंकड़े की पूर्ण सटीकता का होना अनिवार्य होता है। एक खेल पत्रकार को अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठकर निष्पक्ष और पेशेवर विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है।

श्रोताओं, नियमित योग करने से जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियां जैसे तनाव, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और थायराइड जड़ से ठीक किया जा सकता है। यह शरीर के हार्मोन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित कर बीमारी से लड़ने में मदद करता है। योग रक्त संचार को बेहतर बनाता है और तनाव कम करके बीपी को नियंत्रित रखता है। अनुशासित योगाभ्यास और प्राणायाम से वजन नियंत्रित होता है और शरीर में फैट जमा नहीं होता है। अगर आप नियमित रूप से कपालभाति और मंडुकासन करते हैं तो इससे पैनक्रियाज सक्रिय होता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। वज्रासन और पवन मुक्तासन गैस, कब्ज और एसिडिटी से तुरंत राहत दिलाते हैं। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो रहा है, तो इस वायदे के साथ कि कल 7:05 पर प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। कार्यक्रम हालचाल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए गजल। कलाकार हैं चंदन कुमार श्रीवास्तव।

अभी आप चंदन कुमार श्रीवास्तव की आवाज़ में

गजल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे सारंगी वादन, कलाकार होंगे रोशन अली। इनसे आज आप सुनेंगे पहले राग नट भैरव और उसके बाद राग मिश्र भैरवी में धुन।

अभी आप सुन रहे थे सारंगी वादन राग मिश्र भैरवी में धुन। इसके पहले आपने सुना सारंगी वादन राग नट भैरव। कलाकार थे रोशन अली। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एजेंसी समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों

0: हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार

0: संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर है। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए

0: प्रारंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड एनुअल समिट विद हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए ताकाइची इन न्यू दिल्ली टुडे। ईपीएफओ नोटिफाइज 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ डिपॉजिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation.

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली के तहत कार, जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह दर ₹2 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण वाहनों और अन्य वाहनों के लिए टोल की दर ₹6 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है।
1: बिहार रोड यूजर फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई, यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी। पहले से इसमें प्रावधान नहीं था, जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: कैबिनेट ने पटना नगर निगम की ओर से ₹200 करोड़ का बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद पटना नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला निकाय बन जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त राशि से शहर की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना

0: मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि मलाही पकड़ी स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत हो जाएगी। इसके लिए 6 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण में अभी तक मेट्रो का परिचालन बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड 0 माइल से होकर भूतनाथ तक ही किया जा रहा था। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के तत्वावधान में बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इधर इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी नागरिकों से अपने अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के चिकित्सक, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर बिना पंजीयन के प्रैक्टिस कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक केवल निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन पोर्टल पर अपलोड कर राज्य में विधि सम्मत रूप से कार्य कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नगर परिषद दानापुर निजामत के पार्षद पदों के आरक्षण के संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। आयोग ने आधिकारिक सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के DL.ED कोर्स की योग्यता पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने

0: इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 18 महीने की DELED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
4: दिनांक 2 जुलाई, राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अरिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जुलाई महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान राजद से वैशाली के पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक वार्षिक सौराठ सभा का आज विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सौराठ सभा के दौरान मैथिल समाज के विवाह के लिए योग्य वर वधु की तलाश पूरी करते हैं, साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अरवल जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर तथा सब जूनियर राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट सहित सिगरेट बनाने वाले सामान और 9.5 लाख रुपए नगद जब्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि पहली पाली का मैच पूरा खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। गौरतलब है कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी टीम 11 में शामिल नहीं थे। श्रृंखला का दूसरा

0: टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 2014 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ग्रामीण मजदूरों को 7 घंटे काम की 300 रुपए मजदूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, भावुक पल, नए आर्मी चीफ सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, फिर पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रभात खबर ने राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, चढ़ावा चोरी के आरोपी के कमरे में मिला रामराज कोष का संदूक, अब तक 80 लाख रुपए हो चुके हैं बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद

तो ये हमारे आज की नशरियात की तफसीलात थी। आइए अब कोई भी ताखिर किए बगैर लीजिए, हम अपने इस महफिल का आगाज़ किए दे रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में पेश इस गज़ल के साथ। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाएं।

सामिन हसरत जयपुरी का कलाम आप अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में समाप्त कर रहे थे, और हम इस बात से आगाह हैं कि हम जिस रूए ज़मीन पे सांस लेते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की हमारे ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें हवा, पानी और जंगल काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उसी में एक ख़ास चीज़ कि इन तीनों में से अगर किसी भी चीज़ का मुतवाजन अगर बिगड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो सकती है। और सबसे ख़ास और अहम बात कि ये तीनों चीज़ें ख़ास मकदार में हमारे पास मौजूद हैं, जिसे हमें हिफाजत भी करनी है और अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए बचा के भी रखना है। पेड़ पौधे जिनकी ज़रूरत हम सांस लेने से लेकर के माहौलियात तक पे देखते हैं, यकीनन इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो दरख्तों पे मुनहसर करता है, क्योंकि ये इंसान की सबसे बड़ी कीमती शय है जिसको हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका एहसास बहुत कम करते हैं। हम अपने सांस के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिगर तरह की जो हवा में गैसें मिलती रहती हैं, तो उन तमाम को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर दरख्त हैं, क्योंकि ये उन तमाम आलूदगी को, उन गैसों को जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, अपने अंदर समो लेती हैं और उसके बदल में हमें ऑक्सीजन फराहम करती हैं। यकीनन ये हमें धूप से भी बचाती हैं, हमारे मौसम पे भी इनका काफ़ी अहम किरदार है, यानी हम जिस पानी के लिए मुंतज़िर होते हैं उसमें भी इनका खासा हिस्सा है, और साथ ही साथ ये हमें खाने पीने

0: की चीज़ें भी देती हैं जो इनके फल की शक्ल में होता है, और साथ ही साथ ये ज़मीन को थामे रहती हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह कर ये बह के ख़त्म ना हो जाए। गर्ज़ ये कि इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हम रोज़ इस बात से आगाह होते जा रहे हैं कि हमने अपनी तरक्की के लिए इन तमाम शय को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, और बिलाखिर ये हमारे ही सेहत के ऊपर मुज़िर पड़ने वाला है। लिहाजा हम अब भी जागने की कोशिश करें, और सबसे अहम ये कि दरख्तों को लगाएं। दरख्तों को काटना एक ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसे लगाना भी हमारी ही ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को हम साफ़ हवा और पानी फराहम कर सकें, जो ज़िंदगी की बुनियादी और अशद ज़रूरत है। लिहाजा हम तमाम लोग इस बात का अहद करें कि दरख्त को लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें, और जिससे कि ज़िंदगी इस कुर्रे अर्ज़ पे बाकी रह सके, क्योंकि दरख्त अगर बाकी नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी का भी बाकी रहना मुमकिन नहीं है। आई सामीन, इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब मुतवज्जे होते हैं। लीजिए, आपकी समातों के हवाले सैयद असगर हुसैन से ये अफसाना जिसका उनवान है कर्ज एक मर्ज।
1: मैं हूँ भैया, रुखसार रोते हुए बोले जा रही थी। मैं हूँ ना, बड़े भाई की परेशानी और फिक्र देखकर रुखसार से रहा न गया। आखिरकार उसने अपने बिखरे हुए घर को बचाने की आखिरी कोशिश में अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, पर उसे अदा कैसे करेगी ये सोच सोच कर वो दिन रात परेशान रहने लगी थी। जब भी ये जुमला उसके कानों से टकराता तो माजी बुनियादों में चली जाती और फिर खुद से दोहराती, मैं हूँ ना भैया, मैं हूँ ना। या अल्लाह, मैं करूँ तो क्या करूँ, न तो मेरी कोई जॉब है और न ही कोई और ख़जाना। उफ, इंसान कितना कमज़ोर है और फिर भी तकब्बुर व गुरूर में जीता है। इंसान के हाथ से वक्त किस तेज़ी से गुजर जाता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उसे लगता है दुनिया का सारा निज़ाम उसी की वजह कर चल रहा है। इंसान तो खुद अपने घर का निज़ाम तक सही से नहीं चला पाता, जो अगर चला लेता तो आज मेरा हंसता खेलता घर यूं न बिखरता। खुद से गुफ्तगू करते हुए रुखसार को कब नींद आ गई और जहन अपनी परेशानी से निजात का रास्ता ढूंढने लगा। उसके कानों में दोनों भाइयों की गुफ्तगू गूंज रही थी। अरे भाई, आप परेशान क्यों होते हैं? मेरी जॉब लगते ही मैं आपको बिजनेस के लिए पैसे दूंगा। आप बस दुआ करें, मैं जिस कंपनी में चाहता हूँ वहाँ मेरा काम बन जाए। कई बार अल्लाह भी दूसरों के काम किसी दूसरे इंसान के जरिए ही करवाता है। कई बार दूसरों की दुआ से किसी का काम बना देता है, तो कई बार किसी अनजान इंसान को ही मदद के लिए भेज देता है। इस बार उसने भाइयों की मदद एक दूसरे से करवाई और मुझसे बेरोजगार बहन को भी इसमें शामिल कर लिया। छोटे भाई की जॉब लगी तो परेशानी कम न होकर बढ़ गई, जैसा हंगामा घर में कभी न हुआ था। लाडले, तुमने ही तो कहा था जॉब लगेगी तो मेरी मदद करोगे। भैया, आप छोटे भाई से ऐसे मदद की बात कर रहे थे मानो वो उसी के भरोसे बैठे हों। अल्लाह का करना भी कैसा था, जिस कंपनी में लाडले की जॉब लगी उसके लिए भैया ने बहुत दुआएं की थी और उनकी दुआ कबूल भी हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसमें आज अब्बू भी शामिल हो गए। तुम अब लाडले से भी पैसे लोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरा दिया हुआ पैसा डुबा दिया और अब छोटे भाई से पैसे मांग रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ पाते हो लड्डू, तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। कब से कोशिश में हो, तुम्हारी मदद करते करते मेरा सारा जमा पैसा खत्म हो गया है। शादी, बीवी, बच्चे सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं और तुम्हारे साथ में और दो मजीद लोगों को पाल रहा हूँ। अब तो मेरा भी सब खत्म हुआ जा रहा है, जमीन के पैसे भी अब खत्म हो रहे हैं। तुमने कहा था कि अब्बू मदद कर दीजिए, मैं दुगना करके पैसा दूंगा, पर इन 4 सालों में तुमने 1 रुपया भी न दिया। हाँ, लेते ज़रूर रहे, जवान बहन घर में है, उसके रिश्ते की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। बस हुआ, अब मैं यहाँ लाडले तुम्हें मजीद पैसे नहीं देंगे और अब तुम अपना और बच्चों का कहीं और इंतज़ाम करो। इस महंगाई में मेरा तुम सब को लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। भैया खामोशी से सारी बातें सुनते रहे, खुद गुनाहगार महसूस करते हुए अपने कमरे में चले गए। भाभी और बच्चे भी दूर से ये सब देख रहे थे। इधर अम्मी भी खामोश डरी

सहमी किचन के पास खड़ी रोए जा रही थी। माँ तो माँ होती है पर कुछ कह नहीं पाई। अब्बू के फैसले ने सबको खामोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद भैया कमरे से भाभी और अपना सामान लेकर निकले। हम जा रहे हैं पर यकीन कीजिए अब्बू, बहुत जल्द मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। इतना सुनना था कि अब्बू ने गुस्से में कहा, जाओ पहले अपने घर को पाल लो फिर मेरा कर्ज देना। 4-5 सालों से यही सब सुन रहा हूँ। अम्मी ने जाकर भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भाभी ने भैया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी आखिर ये मेरे शौहर हैं, ये जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। अब परेशान न हो, आप माँ हैं, बस दुआ कीजिएगा। भाई अम्मी से लिपट कर रो पड़े और खुदा हाफिज कहकर चले गए। लाडले के भी कुछ समझ में ना आया कि कब छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई। उसकी जॉब नई नई थी, बार बार कंपनी से फोन आ रहा था, वो अपने कमरे में ही ज्यादा वक्त रहा। जब अम्मी की चीख निकल गई, लड्डू को रोक लीजिए, तो लाडले अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। क्या हुआ रुखसार, तो कभी अब्बी कहकर मुझसे पूछना चाहा, तो अब्बू ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो भैया को। अब्बू के आगे किसी की न चली और भैया घर छोड़कर चले गए। उधर उनका काम जैसे तैसे चल रहा था। 6 माह बाद जब मैं मिलने गई तो भैया सर पकड़े बैठे थे और भाभी तेल मालिश कर दूं के रट लगा रही थी। रुखसार तुम ही समझाओ अपने भैया को। अस्सलाम वालेकुम भैया कहते हुए मैं घर में दाखिल हुई। भैया की आंखें सुर्ख और नम थी। क्या हुआ भैया, मुझे बताइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलें डॉक्टर को दिखा लीजिए। नहीं रुखसार, अब तो बस मौत ही मेरा आखिरी हल है। मुझे गुस्सा आ गया, क्या बकवास करते हैं आप बड़े लोग, इधर अम्मी आपके गम में और इधर आप, आखिर कोई तो हल होगा। कोई हल नहीं रुखसार, ये कर्ज मर्ज की तरह बढ़ता जा रहा है पर खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या भैया आपकी मौत से ख़त्म हो जाएगा या फिर ये आपके बीवी बच्चे पर आ जाएगा? और क्या कर्ज से आपकी रूह को मौत के बाद सुकून मिल पाएगा? क्या करूं बहन, मैं थक गया हूं, हर बार नई कोशिश और हार का सामना। अब तो ससुराल वालों का भी कर्ज हो रहा है। तभी रुखसार की ज़ुबान से निकल गया, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी रुखसार, भाभी चौंक कर बोली। नहीं मालूम भाभी, पर अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। दरअसल आप लोगों के घर छोड़कर आने के बाद से लाडले की तनख्वाह एक बार भी नहीं आई है, सब टेंशन में है। लाडले कह रहा था, भैया की दुआ की बरकत से मुझे मेरी पसंद की कंपनी मिली और भैया घर छोड़कर चले गए, शायद ये सब इसीलिए हो रहा है। किस मुंह से भैया से मिलूं? भैया अब बस दुआ कीजिए कहते हुए रुखसार भाई ऐसे लिपट गई और रोने लगी। भैया ने रुखसार के सर पर हाथ फेर हुए उसे जाने को कहा, घर जाओ वरना अब्बू नाराज होंगे। जी भैया मैं जाती हूँ, पर आप वादा कीजिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, अपना और सबका ख्याल रखेंगे। मैं हूं ना, रुखसार की आंख खुल गई और वो भागते हुए लाडले के कमरे में गई, जैसे कोई रास्ता उसे ख्वाब में मिल गया था। भाई एक बात करनी है। जी आपी, तुम्हारी सैलरी आई? लाडले का चेहरा उतर गया। आ जाएगी, तुम एक बात मानोगी मेरी? हाँ हाँ बोलो ना। लाडले उस कंपनी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। देखो भाई, बहुत मुश्किल से तुम्हारी जॉब लगी, पर पहले माँ की सैलरी पर तुमने सबको मिठाई तो खिलाई और सबसे अहम काम करना भूल गए। लाडले चौंक कर, क्या काम? अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च न कर पाए। लाडले शर्मिंदगी के साथ अचानक बोल पड़ा, या अल्लाह मेरी सैलरी आ जाए और मेरी जॉब रह जाए, मैं हर माह तेरी राह में अपनी कमाई का सदका दूंगा। अल्लाह ने सबके अहद को कबूल कर लिया और अगले ही दिन उसकी सैलरी आ गई। लाडले ने सैलरी का सदका निकाल कर रुखसार के हाथ में देते हुए कहा, मुझे 1-2 दिन में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है, तुम उसे देना जो बहुत जरूरतमंद है, और हर माह मुझसे याद से ये सदका ले लेना। बहन मैं अगर भूल भी जाऊं तो तुम मुझे मेरे अल्लाह से किए हुए अहद को निभाने में मेरी मदद करना। रुखसार ने खामोशी से पैसे को रख लिया और ये कहकर के लाडले को रुखसत किया कि तुम टेंशन न लेना, इंशाल्लाह ये पैसा उस इंसान के पास जाएगा जो सच में बहुत जरूरतमंद है। रुखसार दूसरे ही दिन भैया के पास पहुंची और कहा, ये
कुछ पैसे हैं, आप चाहें तो इसे खर्च कर दीजिए, ये चाहे तो अपने कर्ज को अदा करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए, मर्जी आपकी है। रुखसार, ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? भाई और

0: भी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये पैसे अल्लाह ने भेजे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं अल्लाह से आपकी मदद के लिए दुआएं मांग रही थी। एक बहुत नेक दिल इंसान है जो अपने अल्लाह से किए हुए वादे को निभाने के लिए कोई बहुत जरूरतमंद इंसान ढूंढ रहा था, बस मैंने उससे आपका जिक्र कर दिया। उसने वादा किया है कि वह हर माह कुछ पैसे मुझे देगा और मैं उसके पैसे उस इंसान को दूं जो सच में बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। भैया आप बस इंसान के लिए दुआ करें, अल्लाह उसके रिस्क में खूब बरकत दे और आप धीरे धीरे अपने सारे कर्ज से निजात पा जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपका बिजनेस जरूर कामयाब होगा। एक बार फिर अल्लाह पर यकीन करके उसकी रहमत से मायूस हुए बगैर एक और कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। इस तरह एक भाई का सदका दूसरे भाई के कर्ज उतारने के काम आता गया और वो दिन भी आया, भैया ने अपना फोकस अपनी बिजनेस की नई शुरुआत की तरफ की और कर्जा धीरे धीरे उतरता चला गया। साल भर बाद ईद के मौके पर हमारे घर में सच्ची ईद हुई। भैया बहुत तो नहीं पर बहुत कामयाब हो चुके थे। अपनी हिम्मत के साथ और अब्बू का सारा कर्ज उतार कर वो वापिस घर आए। लाडले आज भी अपने अहद को निभाता है और मैं भैया जैसे कर्ज में डूबे हुए भाई को ढूंढती हूँ और उनकी मदद करने की हमारी कोशिश आज भी जारी है। मैं समझ चुकी हूँ कर्ज एक मर्ज है जिसे ख़त्म करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी और का कर्ज मर्ज की तरह न पड़े, बस यही कोशिश है।
1: सामिन, कर्ज एक मर्ज के उनवान से आपने ये अफसाना भी समाप्त किया। पेश कर रहे थे सैयद असगर हुसैन, और अब हमारी अगली पेशकश कलामी शायर लीजिए समाप्त करते हैं मजहर जमील से उनके कलाम।

खुदकुशी की तरह जिंदगी। एक गजल के चंद अशार पेश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिए। अर्ज किया है, तेरी

काफिल तेरे गम से बढ़ के हमदम, ये मेरी खुशी नहीं है। तेरे गम से बढ़ के हमदम, ये मेरी खुशी नहीं है।

अभी शब ढली नहीं है, अभी चांदनी है बाकी, अभी शब ढली नहीं है, तेरी जुस्तजू से गाफिल जो मिटा दे आके मेरी शब गम की तीरगी को, जो मिटा दे

तेरी खाक रह गुजर से मेरी मंजिलें हैं रोशन, तेरी खाक रह

मकता अर्ज कर रहा हूं, मुलाजा कीजिए। मजहर का फिक्रो फन है तेरी याद की बदौलत, मजहर का फिक्र फन है।

मक्ता अर्ज कर रहा हूं, मुलाजा कीजिए। मजहर का फिक्रो फन है तेरी याद की बदौलत, मजहर का फिक्र।

सामिन कलामी शायर के तहत आप समाप्त कर रहे थे मज़हर जमील को, और इसके बाद हमारी ये अगली पेशकश मौसीकी। मौसीकी में ये पहली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ पीनाज मसानी की है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

सामीन, आप तीनाज मसानी की आवाज़ में इस गज़ल को समाहत कर रहे थे। नैयर आसमी का ये कलाम था और अब हम अगली गज़ल आपकी समाहतों के हवाले किए दे रहे हैं। लीजिए मुलाहिज़ा हो, गुलाम अली की आवाज़ में।

शमीन गुलाम अली को आप समाप्त कर रहे थे इस गज़ल में, और अब अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो जगजीत सिंह की आवाज़ में है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी।
1: देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवली हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए

अभी आप लज्जा फिल्म का गीत सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। कार्यक्रम का अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आप सुन रहे हैं शूट आउट एट बराला फिल्म का गीत मीका सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे मुबारका फिल्म का, मीका सिंह और प्रीति कक्कर की आवाज़ में। गीतकार होंगे कुमार और संगीतकार गौरव रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म वार्निंग का पूर्वी और मेका सिंह की आवाज़ में। गीतकार होंगे कुमार और संगीतकार शारिब और तोशी।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अजहर का, अरमान मल्लिक और अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ में। गीतकार होंगे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भजन। कलाकार होंगे वेद नारायण राय।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश, पीडियाट्रिशियन सिवान से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
1: इसके कारण समय बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना होता है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे छुट्टियां होती हैं, स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो फिर दोबारा एक साथ क्लासेस में आते हैं, कक्षा में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिनमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, ये ज्यादा बच्चों में आसानी से फैल जाती है। कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक हाइजीन है उसके बारे में ट्रेन करें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में अगर बच्चे भींग जा रहे हैं तो उनके कपड़े तुरंत बदलवा दिए जाएं, पानी खूब पीना है बच्चों को इस मौसम में, और इसके अलावा खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे बच्चों को बचाना है।
0: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे वेद नारायण राय। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गुलामी फिल्म का, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीतकार थे असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कर्ज। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए सुरेश वाडेकर को, फिल्म का नाम है ईमानदार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं मनोरंजन ओझा और संकट मोचन मिश्र। पहले सुनिए मनोरंजन ओझा से ये गाना, ये लोकगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश, पीडियाट्रिशियन सिवान से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
4: इसके कारण समय बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना होता है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे छुट्टियां होती हैं, स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो फिर दोबारा एक साथ क्लासेस में आते हैं, कक्षा में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिनमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, ये ज्यादा बच्चों में आसानी से फैल जाती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक हाइजीन है उसके बारे में ट्रेन करें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में अगर बच्चे भींग जा रहे हैं तो उनके कपड़े तुरंत बदलवा दिए जाएं, पानी खूब पीना है बच्चों को इस मौसम में, और इसके अलावा खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे बच्चों को बचाना है।
3: यह संदेश अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे मनोरंजन ओझा और संकट मोचन मिश्र। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: नारी जगत सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो साथी सुरभि का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कहते हैं कि जिस धरती पर पेड़ पौधों की हरियाली मुस्कुराती है, वहां जीवन भी खुशहाली के गीत गाता है। इसी महत्व को समझने और जागरूकता के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये 7 दिवसीय वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1950 में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पर्यावरण का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रेरित करना है। वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जल, जीवन, जलवायु और जैव विविधता के भी सबसे बड़े संरक्षक हैं। आज बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते वन हमारे भविष्य के लिए चुनौती बन रहे हैं। यदि हम सभी एक एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें, तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और हरित भविष्य दे सकते हैं। आइए इस वन महोत्सव पर केवल पौधे लगाने का संकल्प ही नहीं, बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक सहेजने का भी वचन लें, क्योंकि पेड़ पौधे लगाना तो केवल एक शुरुआत है, उनकी देखभाल करना ही सच्ची सफलता है। बहनों, जब प्रकृति अपने रंग बिखेरती है तो दृश्य बहुत ही मनोरम हो जाता है। कहीं पर्वतों की भव्यता, कहीं नदियों की कलकल, कहीं बारिश की रिमझिम, कहीं जंगल की हरियाली तो कहीं नीले आसमां की बात है निराली, कहीं सुबह सूरज की किरणों की लाली तो कहीं इठलाती हुई फूलों की डाली डाली। बहनों, प्रकृति का हर रंग, हर रूप एक नई कहानी सुनाता है। जो दिल से इसे महसूस करे वही समझ पाता है।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन ग्राम पंचायत श्रीमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: बहनों, प्रकृति की गोद

0: कहीं जब मन ठहर जाता है तभी हर एहसास कविता बनकर कागज पर उतर आता है। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और कृष्णा कुमारी से सुनते हैं काव्य पाठ।
1: अगर इस धरती के इतिहास पर गौर करूं तो समय समय पर कलम बड़े बड़े परिवर्तन का कारण बनती रही है, चाहे क्रांति के शोले हों या शांति के गीत हों। कलम ने बखूबी दोनों दायित्वों को संभाला है। इसी संदर्भ में मेरी प्रथम रचना है जिसका शीर्षक है कलम की हुंकार। तो लीजिए सुनिए कलम की हुंकार। जब जब चमकी कलम धरा पर तब गूंजा भीषण हुंकार, विश्व इतिहास गवाह खड़ा ये हुआ एक नहीं सौ सौ बार। कलम अस्त्र है कलम शस्त्र है, कलम अस्त्र है कलम शस्त्र है, कलम है बोफोर्स और राफेल, जन गण मन में अलख जगाकर चक्रव्यूह का तोड़े खेल। अनीतियों के तांडव का, अनीतियों के तांडव का करती खुल्लम खुल्ला संहार, और जब जब चमकी कलम धरा पर तब गूंजा भीषण हुंकार। राजनीति के धागे से ही जुड़ती जनता और सरकार, इस जमीन को सज संवार कर रखते हैं ये कलमकार। शांति पर्व का सरगम रचकर युद्ध का रोके हाहाकार, जब जब चमकी कलम धरा पर तब गूंजा भीषण हुंकार। देश पे विपदा मंडराए चाहे चुनाव का हो त्योहार, कलम सदा प्रहरी बनती, कलम सदा प्रहरी बनती, ना संविधान से हो खिलवाड़। जाग उठती जब कलम, जाग उठती जब कलम, चरण पर शीश झुकाती है तलवार, जब जब चमकी कलम धरा पर तब गूंजा भीषण हुंकार। अंतिम पंक्तियां हैं कि कलम जीतती दिल की दुनिया, कलम जीतती दिल की दुनिया, प्यार के फसल लगाती, आह्वानों के बिगुल फूंकती, अंतर दीप जलाती। राजनीति स्फटिक बने, राजनीति स्फटिक बने, जब साहित्य से होता साक्षात्कार, जब जब चमकी कलम धरा पर तब गूंजा भीषण हुंकार। युगों युगों से तिरस्कृत और उपेक्षित बेटियां आज शक्ति रूपा बनकर जल थल नभ तीनों की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण का समाज में ज्वलंत प्रमाण दिखता है। उन बेटियों के लिए ही आज मेरी कलम भी उनका यशगान करना चाहती है। तो सुनिए मेरी ये रचना जिसका शीर्षक है बेटियां। जी हाँ, बेटियां। माँ पापा के प्यार का आगार हैं ये बेटियां, माँ पापा के प्यार का आगार हैं ये बेटियां, घर के दरवाजे की वंदनवार हैं ये बेटियां, घर के दरवाजे की वंदनवार है ये बेटियां। कहते हैं कि धन है पराया, कहते हैं कि धन है पराया, प्यारी प्यारी बेटियां, दान करें जैसे कोई सामान हो ये बेटियां, दान करें जैसे कोई सामान हो ये बेटियां, तो टूट जाती बिखर जाती जान देती बेटियां, दो कुलों का मान रखती मुस्कुराती बेटियां, दो कुलों का मान रखती मुस्कुराती बेटियां। ईश्वर का धरती पर अनुपम उपहार हैं ये बेटियां, ईश्वर का धरती पर अनुपम उपहार हैं बेटियां, और माँ पापा के प्यार का आगार हैं ये बेटियां। शिक्षा के पंखों पर तारे तोड़ सकती बेटियां, शिक्षा के पंखों पर तारे तोड़

मोड़ सकती बेटियां हवा का विपरीत रुख भी मोड़ सकती बेटियां। फौज से मातृत्व तक, फौज से मातृत्व तक को जोड़ सकती बेटियां। संबल भरो तो दानवों को मरोड़ सकती बेटियां। डगमगाती नैया की पतवार हैं ये बेटियां, डगमगाती नैया की पतवार हैं ये बेटियां, माँ पापा के

पतवार हैं ये बेटियां, डगमगाती नैया की पतवार हैं ये बेटियां, माँ पापा के प्यार का आगार हैं ये बेटियां। अंतिम पंक्तियां हैं, दुनिया के कोने कोने को रोशन करती बेटियां, जल थल नभ तीनों लोकों में रौनक भरती बेटियां। दुनिया के कोने कोने को रोशन करती बेटियां, जल थल नभ तीनों लोकों में रौनक भरती बेटियां। बेटों को अब राह दिखाती, बेटों को अब राह दिखाती, आगे आगे बेटियां, आगे आगे बेटियां। जो बेटा ना कर पाया सब पूरे करती बेटियां, जो बेटा ना कर पाया सब पूरे करती बेटियां। सृष्टि करे गर्व, सृष्टि करे गर्व, इनकी संसार हैं ये बेटियां, अब माँ पापा के प्यार का आगार हैं ये बेटियां, आगार हैं ये बेटियां। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, महामारी और प्रदूषण जैसे संकट गहन चिंता का विषय हैं। इसके लिए जन जागरूकता हेतु हमारी कलम की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी कड़ी में मेरी कलम का एक प्रयास है, मेरी यह रचना जिसका शीर्षक है प्रकृति संरक्षण। तो सुनिए, प्रकृति संरक्षण। सुंदर जीवन जीना है तो करो प्रकृति से प्यार, सुंदर जीवन जीना है तो करो प्रकृति से प्यार, जियो और जीने दो का ये मंत्र करो उच्चार, ये मंत्र करो उच्चार। वृक्ष धरा के रक्षक हैं, वृक्ष धरा के रक्षक हैं, राखी के धागे बांधो सिंचन पोषण करो, सिंचन पोषण करो। भूल से वृक्ष कभी ना काटो, भूल से वृक्ष कभी ना काटो। प्राणवायु के ये दाता, प्राणवायु के ये दाता, विष मुक्त परिवेश बनाते नख से शिख तक हितकारी, नख से शिख तक हितकारी, जीवन के बाग सजाते। शीत जल सूर्य गगन और वायु, शीत जल सूर्य गगन और वायु हैं प्रकृति के हिस्सा, इन्हें बचाने का देते संदेश पुरातन किस्सा, इन्हें बचाने का देते संदेश पुरातन किस्सा। एसी फ्रिज वाहन जैसे हैं वस्तु सभी प्रदूषक, ओजोन परत के चिथड़े करते, ओजोन परत के चिथड़े करते, बनते हैं विध्वंसक। माटी नहीं करो जहरीली, माटी नहीं करो जहरीली, रासायनिक खादों से, गोबर कचड़ों और कंपोस्ट से, गोबर कचड़ों और कंपोस्ट से जुड़ो नेह धागों से। जल संरक्षण पर्व मनाओ, जल संरक्षण पर्व मनाओ, हर एक बूंद बचाओ। कई तरीके संरक्षण के, कई तरीके संरक्षण के, सबको इन्हें बताओ। अंतिम पंक्तियां हैं कि तब धरती पहने हरी चुनर, तब धरती पहने हरी चुनर, पर्यावरण प्यार बरसाएगा, लक्ष्य 84 जीव जंतु प्रकृति संग खिल खिलाएगा, प्रकृति संग खिल खिलाएगा। और अब मैं जवानों को नमन करते हुए अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूं, जिसका शीर्षक है हमारे जवान। जवानों शत शत तुझे प्रणाम, जवानों शत शत तुझे प्रणाम, रहो सलामत युग युग तक तुम, रहो सलामत युग युग तक तुम, भेज रहे पैगाम जवानों शत शत तुझे प्रणाम, रहो सलामत युग युग तक तुम, भेज रहे पैगाम जवानों शत शत तुझे प्रणाम। सियाचीन में अस्थि गलाते, सियाचीन में अस्थि गलाते, मरुथल में झुलसाते,
चट्टानों पर चढ़ते।

0: चट्टानों पर चढ़ते मस्तक उन्नत कर मुस्काते, अपनी नींद लुटाकर, अपनी नींद लुटाकर देश को देते चैन आराम। जवानों शत शत तुझे प्रणाम, जवानों शत शत तुझे प्रणाम। सीना तान खड़े सीमा पर, सीना तान खड़े सीमा पर, दुश्मन को ललकारे, दुश्मन को ललकारे। कदम बढ़ाया जो इस माटी पर वो स्वर्ग सिधारे, कदम बढ़ाया जो इस माटी पर वो स्वर्ग सिधारे। लिए तिरंगा शैल शिखर पर, लिए तिरंगा शैल शिखर पर, बढ़ा रहे सम्मान जवानों शत शत तुझे प्रणाम। जब मांग धुली रमणी की, जब मांग धुली रमणी की, टूटी आशा वृद्ध पिता की। राखी का धागा चितकारा, राखी का धागा चितकारा, जय भारत माता की, जय भारत माता की। खड़ा हिमालय बोल उठा, खड़ा हिमालय बोल उठा, अमर तेरा बलिदान जवानों शत शत तुझे प्रणाम, जवानों शत शत तुझे प्रणाम। रहो सलामत युग युग तक तुम, रहो सलामत युग युग तक तुम, भेज रहे पैगाम जवानों शत शत तुझे प्रणाम, जवानों शत शत तुझे प्रणाम।
1: कृष्णा कुमारी से अभी आप सुन रही थी काव्य पाठ। बहनों, शब्दों में हो संवेदना, कदमों में हो जोश अपार, कविता दे मन को ऊंचाई तो खेल दिलाए नया विस्तार। जी हाँ बहनों, खेल केवल मैदान में नहीं खेले जाते, वे समाज की सोच, युवाओं के सपनों और देश के सम्मान को भी दिशा देते हैं। और इन खेलों की हर जीत, हर हार और हर संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता केवल मैच का स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके अनुशासन, उनकी मेहनत और खेल भावना को समाज के सामने लाने का सशक्त माध्यम है। एक अच्छा खेल पत्रकार निष्पक्ष होकर खेल का विश्लेषण करता है और दर्शकों तक सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाता है। आज डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। अब दर्शक केवल समाचार नहीं, बल्कि विशेषज्ञों की राय, खिलाड़ियों के साक्षात्कार, आंकड़ों का विश्लेषण और पर्दे के पीछे की कहानियां भी जानना चाहते हैं। ऐसे में खेल पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे सनसनी खबरों से अधिक सत्य और निष्पक्षता को महत्व दें। खेल पत्रकारिता युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित भी करती है। जब किसी खिलाड़ी की संघर्ष गाथा लोगों तक पहुंचती है तो वो अनगिनत सपनों को उड़ान देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि खेल पत्रकारिता केवल खबरें मात्र नहीं है, बल्कि प्रेरणा, जागरूकता और खेल संस्कृति का सशक्त माध्यम है। बहनों, खेल हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक उसी तरह बदलता मौसम भी हमें यही संदेश देता है कि यदि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो हर मौसम आनंददायक बन जाता है। बारिश की फुहारें जहां धरती को हरियाली की चादर ओढ़ाती है, वही मौसम अपने साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आता है। इसलिए वर्षा का आनंद लेने के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। बरसात का मौसम प्रकृति को नई ऊर्जा देता है। ठंडी हवाएं, भीगी मिट्टी की सोंधी सी खुशबू और हरियाली सुकून तो देती है, लेकिन इसी मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बरसात में दूषित पानी और बाहर का अस्वच्छ भोजन पेट संबंधी संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए और पौष्टिक तथा ताजा भोजन का सेवन करना चाहिए। भीगने के बाद गीले कपड़े जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए। हाथों की नियमित सफाई, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखते हैं।

छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी सतर्कता और स्वच्छता को अपनी आदतों में शामिल कर लें तो बारिश का ये सुहाना मौसम केवल आनंद ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का संदेश भी बन सकता है। बरसात की हर बूंद जीवन का संगीत सुनाती है, पर सावधानी की छतरी ही स्वस्थ जीवन की राह दिखाती है। वैसे बहनों, बरसात का मौसम कितना मनमोहक होता है ना, और ऐसे में दिल से कुछ यूं अल्फाज निकलते हैं कि तपन से थकी इस धरती को ठंडी सांसों का सहारा दो। तपन से थकी इस धरती को ठंडी सांसों का सहारा दो, सूनी आंखों में फिर से सपनों का चमकता सितारा दो। हर बूंद बने जीवन, हर बूंद बने नई उम्मीद, हर बूंद बने जीवन, हर बूंद बने नई उम्मीद। प्रकृति के सुर में सुर मिलाकर बरसो रे मेघा बरसो।

0: तो इसी प्यारे से गीत के साथ अब अपनी रेडियो साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
3: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
4: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले

0: जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती में प्रस्तुत है वार्ता, युवा भारत के लिए है राष्ट्र प्रथम। वार्ताकार है विजय कुमार कर्ण।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: सर्वे जानन्ति एव विश्वस्य युवा राष्ट्र रूपेण भारतस्य स्थानम् वर्तते। इदानीं यद् भारतं तद् भारतं युवयुवतीनां भूयसी संख्या कारणात् इदं राष्ट्रं युवराष्ट्रम् इति सर्वे मन्यन्ते। अतः ईदृशस्य युवा भारतस्य कृते कीदृशः विचारः स्यात् अत्रत्याः युवयुवतीनां कृते? तर्हि विचारः भवति, युवानः युवत्यः एवं विचारयन्तु यद् अस्माकं राष्ट्रं प्रथमं वर्तते। यदि राष्ट्रं पृष्ठे भवति, अन्यानि वस्तूनि अग्रे भवन्ति, तर्हि अस्य राष्ट्रस्य विकासः, पूर्णविकासः, अभ्युदयः नैव सम्भवति। कस्यचित् राष्ट्रस्य या चरमोत्कर्षिणी स्थितिर्भवति, तस्यां स्थितौ नूनमेव तत्रत्याः नागरिकानाम् अवदानम् अवश्यमेव रेखाङ्कितं भवति। तत्र अवदानं नाम राष्ट्रं केवलम् एकः भूखण्डः नास्ति, तत्र केवलं जनसंख्या न भवति, तत्र केवलं संविधानं न भवति, तत्र केवलं संप्रभुता न भवति, अपितु एतानि सर्वाणि अपि यद् बध्नाति तद् भवति सांस्कृतिकं सूत्रं। तदेव सांस्कृतिकं सूत्रं कमपि राष्ट्रं श्रेष्ठत्वं प्रापयति। अतः एतया धिया एकं सूत्रं भवति, इदं राष्ट्राय इदं नमः। इमानि यानि वस्तूनि सन्ति, याः शक्तयः सन्ति, यानि कानि अपि वैशिष्ट्यानि सन्ति, तानि सर्वाणि राष्ट्राय वर्तते। राष्ट्रं देवरूपं भवति, राष्ट्रदेवता इति। अतः युवा भारतस्य कृते यदिदानीं महत् आवश्यकं वर्तते तदस्ति राष्ट्रप्रथमम्। अतः अहं स्वयं मम यत् सौविध्यमस्ति तत् सर्वमपि गौणं भवति, प्रामुख्यं वर्तते राष्ट्रं। राष्ट्रम् अग्रे गच्छतु, अतः त्यजेत् एकम् इति एकः सिद्धान्तः वर्तते। एकस्य कृते एकस्य त्यागः, यतोहि यदि राष्ट्रस्य

0: तत्र जीवने गांभीर्यम् दिनचर्यायां सर्वत्रैव राष्ट्रभक्तेः तत्र स्थानं स्यात्। राष्ट्रभक्तिः इति तस्य मूले स्यात्। यत्किमपि करोमि, यत्र कुत्रचिदपि गच्छामि, यत्किमपि कार्यं करोमि, तत्र सर्वत्रैव मूले इदं राष्ट्रं कथं समुन्नतं स्थानं प्राप्नोतु, अनेन राष्ट्रेण सह मम रागात्मकः सम्बन्धः वर्तते। मम माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, एवं प्रकारेण सम्बन्धः वर्तते। अतः सांस्कृतिकः सम्बन्धः वर्तते, सांस्कृतिकसूत्रेण अहं बद्धः। एवं
1: संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, युवा भारत के लिए है राष्ट्र प्रथम। वार्ताकार थे विजय कुमार कर्ण। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है पिया का घर।

लिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है राजपूत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार ISPT से मलाही पकड़ी तक हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत समृद्ध बिहार थीम पर आयोजित जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था को कमजोर करता है तथा विकास की गति को बाधित करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इधर इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में सभी राज्यवासियों से अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र

0: से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। इंतखाबी कमीशन ने पटना की बांकीपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी होगा और उसी दिन से पर्चा नामजदगी का काम भी शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 जुलाई मुकर्रर है। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफे के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्राइमरी कॉरिडोर के तहत मलाही पगड़ी मेट्रो स्टेशन की तौसी का इफ्तिताह किया और मेट्रो सर्विस की तौसी की। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल खिदमात की तौसी ISBT से मलाही पगड़ी तक हो गई है। इस मौके पर डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शहरी तरक्यात के वजीर नितेश मिश्रा, बीजेपी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद समेत कई मुअज्जज लोग मौजूद थे। रियासत में आज बिहार चौकसी बेदारी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आला सम्राट चौधरी ने बिहार बेदारी हफ्ते का आगाज़ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत खुशहाल बिहार थीम पर मुनक़िद बेदारी हफ्ते का मकसद बदउनवानी के मामले में सिफर टॉलरेंस की पॉलिसी को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी समाज और सिस्टम को कमज़ोर करती है और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करती है। वज़ीर आला ने लोगों से बदनवानी से पाक बिहार की तरक्की में सरगर्म हिस्सेदारी निभाने की अपील की है। इधर इस मौके पर गवर्नर सैयद अता हसनैन ने अपने पैगाम में सभी बाशिंदों से अपने अपने दायरे कार में ईमानदारी और शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देने की अपील की। रियासत में 14 अगस्त 2026 तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी प्रति अमृत ने मिशन मोड में मुहिम चलाकर हदफ को हर हाल में पूरा करने की हिदायत की है। टीवी से पाक भारत मुहिम की जायजा मीटिंग में बताया गया है कि रियासत की 2,76,00,000 के निशाने वाली आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। मानसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे ज़्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास ज़िले में शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से तनख्वाह कमीशन के अंडर सेक्रेटरी आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफसर एक सुबकदोश मुलाजिम से एरियर की अदायगी के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु जनूबी तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में बिहार के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना इलाका के तहत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। مونگیر ضلع کے بریارپور تھانہ علاقہ سے پولیس نے ایک آٹو رکشہ سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ دو اسمگلرز کو گرفتار کیا ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کے رام نگر تھانہ علاقہ میں ایک کرانے کی دکان میں شارٹ سرکٹ سے زبردست آگ لگ گئی۔ آگزنی کے واقعے میں لاکھوں کی مالیت جل کر تباہ ہو گئی۔ حادثے میں ایک نوجوان بھی شدید طور

0: से झुलस गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी है तो विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को

0: कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसने बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोक भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित

0: अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म रोटी में सुनिए किशोर कुमार को, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश को। फिल्म का नाम है रामलखन। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है नाम। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
2: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
1: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
2: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
1: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
2: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
1: जी रहे हैं
2: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं, और आनंद का जो
1: क्षण
2: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
2: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जब बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
2: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है
2: जी। तो इस

0: के लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए?
0: गीत सुनना चाहिए।
1: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: बोला जाए फूलों का शबा।
1: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
2: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
2: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
1: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती
2: है। जी,
1: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
2: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। जी,
2: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई

0: लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
1: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
0: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
1: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है कथा कढ़ाई,
0: जी
1: ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
0: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें?
1: गीत सुनेंगे,
0: तो एक गाना सुनते हैं।
1: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह दिया।

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
1: हमारा
0: मजाक
1: चेहरा
0: में
1: वैसा
0: बोलते
1: ही
0: हैं
1: हो जाए।
0: वैसे ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
1: हाँ,
0: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
0: हाँ
1: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
0: हाँ
1: फोटोज,
0: बिल्कुल,
1: ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी
1: कुछ
0: जी।
1: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
1: जी।
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
1: और फिर
0: जाता है, और
1: उस
0: फिर वो बातें
1: वक्त,
0: पता नहीं कहाँ तक चली जाती
1: और
0: हैं।
1: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
0: बिल्कुल।
1: सुंदर यादें, है ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी ऐसा जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथ ही लिख के

0: कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। चूंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है जो अब दुनिया में नहीं

0: उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था? कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो
1: बिल्कुल।
0: हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल।
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल,
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन।
0: बटाए।
1: हाँ
0: यानी
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ, लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी उस वक्त।

0: साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए लें। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं, तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती, तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान लें कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल
1: यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी। अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती हैं कि मेरी एक सखी हैं, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपने ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कॉम्पिटिशन इतना

0: है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: जरूरी है।
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई, अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले
0: ले
1: सकती है,
0: सकती है,
1: अपनी
0: पा
1: इच्छा पूरी
0: सकती,
1: कर
0: अपनी
1: सकती,
0: इच्छा पूरी कर सकती, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
1: हाँ
0: कर
1: पूरी
0: लेती
1: कर
0: है।
1: सकती है,
0: और वो खुशी, वो आनंद सिर्फ वो उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
1: पूरे परिवार
0: परिवार को
1: को।
0: होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए, तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
0: बिल्कुल
1: भी बाहर से गए, अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार
1: अक्सर
0: ऐसा
1: ऐसा
0: होता
1: होता तो है
0: है ना।
1: हाँ?
0: पर
1: और ये
0: नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में सोच के,
0: सोच
1: है
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों
1: ना।
0: बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या
0: खाना
1: फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप
1: बिल्कुल।
0: हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है और पूरा

0: गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है
1: है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्यौहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज़ हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत
0: हम
1: ज़रूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है, तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेच कर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर
0: रहना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से
1: बिल्कुल
0: पहले,
1: बिल्कुल
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम दे।
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले।
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और ज़रूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों

0: की तमन्ना भी पूरी होगी क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
1: जी,
0: सुनते
1: सर,
0: हैं।
1: जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल का रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ, मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने के शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनील दत्त फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है।
0: जी
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर,
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का। स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: इनके
0: जरूर।
1: रोल है, घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर,
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा,
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत्री
0: नमस्कार।
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर।
0: और
1: श्रीनगर का
0: श्री
1: मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विद भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें
0: ओके।
1: हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर।
0: हाँ
1: कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है, जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर,
0: हैं कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी
0: सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना
0: है? अच्छा।
1: जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी विविध भारती के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध भारती के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों के
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंचते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग
1: तो
0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा
1: जी
0: रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसे होती है क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं
0: जी
1: कहना
0: जी
1: चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी
0: बिल्कुल।
1: है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है। मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आई ना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: शतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रचा।
4: मैं हूँ निशा। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए ढेर सारी बातें हैं।
3: बिल्कुल निशा, आज हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की बात करेंगे, तो वही वन महोत्सव के साथ पर्यावरण का संदेश भी देंगे, साथ ही थ्रोबैक थर्सडे, स्पोर्ट्स अपडेट और कुछ बेहद रोचक तथ्यों के साथ आज के सफर को पूरा करेंगे।
4: बिल्कुल, तो दोस्तों चलिए सफर की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सा फिल्मी गीत से।

के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेलकम मूवी से आनंद राज, आनंद के आवाज़ में ये गीत।
1: चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के प्रेरक पंक्ति के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा प्रेरक पंक्ति है, वही लोग इतिहास रचते हैं जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी गलत, अपनी अलग पहचान बनाने का साहस रखते हैं।
0: वाकई निशा, और इसी साहस की बात करते हैं आज की बात में। आज है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। खेल की दुनिया की हर हलचल को हम तक पहुंचाने वाले उन जाबाज पत्रकारों को सलाम, जो मौसम की परवाह किए बिना मैदान के हर कोने की सच्चाई दुनिया को दिखाते हैं।
1: बिल्कुल ऋचा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, वे एक तरह से मैदान के इतिहासकार होते हैं। एक आम दर्शक सिर्फ स्कोर देखता है, लेकिन एक पत्रकार उस खिलाड़ी की आंखों की नमी, उसकी मांसपेशियों का खिंचाव और उस जीत के पीछे के सालों के संघर्ष को देखता है।
0: बहुत सही कहा निशा आपने, और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जब हर कोई ओपिनियन दे रहा है, तब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। फेक न्यूज़ के शोर में तथ्यों की सत्यता बनाए रखना ही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सच भी है। आज हम उन तमाम पत्रकारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावना बनाया है। चाहे वो मैदान की तपती धूप हो या कमेंट्री बॉक्स की वह एकाग्रता, उनका हर एक शब्द करोड़ों लोगों की धड़कनों से जुड़ा होता है। दोस्तों, हम आगे भी इस विषय पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आइए सुनवाते हैं आपको एक और शानदार सा गाना।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये फिल्मी गीत, फिल्म कुछ कुछ होता है से, आवाज थी अलका याग्निक और कुमार शानू की।
1: दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे स्पोर्ट्स डे जर्नलिस्ट डे पे, तो आज उन सभी गुमनाम नायकों को भी नमन जो पर्दे के पीछे रहकर खेल जगत की हर पारी की हम तक पहुंचाते हैं। सलाम है उन कलम के सिपाहियों को जो खेल की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं।
0: बिल्कुल ऋचा, अक्सर लोग विनर की कहानी तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वह व्यक्ति है जो हमें अंडरडॉग्स की कहानी सुनाता है, वो खिलाड़ी जो अभावों के बावजूद खेल के मैदान तक पहुंचते हैं।
1: और निशा, एक बात और जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। उनका असली कौशल तब दिखता है जब वो हारने वाले खिलाड़ियों के पास जाते हैं।

0: हर पारी की हम तक पहुंचाते हैं। सलाम है उन कलम के सिपाहियों को जो खेल की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं।
1: बिल्कुल ऋचा, अक्सर लोग विनर की कहानी तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वह व्यक्ति है जो हमें अंडरडॉग्स की कहानी सुनाता है, वो खिलाड़ी जो अभावों के बावजूद खेल के मैदान तक पहुंचते हैं।
0: और निशा, एक बात और जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम सिर्फ यह बताना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। उनका असली कौशल तब दिखता है जब वो हारने वाले खिलाड़ियों के पास जाकर उसके दर्द को महसूस करते हैं और उसे सम्मान के साथ पेश करते हैं।
1: क्या बात कहा आपने। जी हाँ रिचा, उनकी वही मेहनत तो दर्शकों को ये सिखाती है कि हार आखिर का रास्ता नहीं है, बल्कि अगले इम्तिहान की तैयारी है। आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ सेकेंडों में बदल जाता है, तो इन पत्रकारों का धैर्य और उनकी शोध ही हमें खेल की सही तस्वीर दिखा पाती है।
0: इसलिए तो कहते हैं निशा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वही है जो शब्दों के जरिए मैदान का वो माहौल हमारे कैमरे तक ले आए, मानो हम खुद वहाँ मौजूद हों।
1: बिल्कुल दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर एक सुबह आप उठे और आपको लगा कि आपके चारों ओर पेड़ नहीं है, ना पक्षी है, ना चहचहाहट है चिड़ियों की, ना ठंडी हवा है, तो आप जरा सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों आप सोचिए, तब तक हम अभी आपको सुनाते हैं एक और फिल्मी गीत, और इस गीत के बाद हम बात करेंगे इसी एक महत्वपूर्ण विषय पर। फिलहाल आइए हम सुनाते हैं आपको ये फिल्मी गीत।

0: श्वेता अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत, फिल्म वीर जरा से आवाज थी उदित नारायण की। दोस्तों अभी हमने आपको बोला था कि आप सोचिए कि अगर आप किसी सुबह उठते हैं और आपके चारों ओर पेड़ पौधा ना हो, ना पक्षियों की चहचहाहट हो, ना हवा, ना ठंडी हवा का एहसास और ना ही हरियाली, तो वो मतलब आप क्या मिस करेंगे उस टाइम? क्या हम बिना इस दृश्य का अपने जीवन का कल्पना कर सकते हैं?
1: शायद नहीं निशा, क्योंकि पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। इसी महत्व को समझाने और लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है।
0: रिचा, क्या आपको पता है कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी?
1: बिल्कुल निशा, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री ने की थी। उनका उद्देश्य था कि हर नागरिक पेड़ों के महत्व को समझे और वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए।
0: और सच कहे तो आज इसकी आवश्यकता पहले से भी कई अधिक है। बढ़ता प्रदूषण, लगातार बढ़ता तापमान, घटते जंगल और जलवायु परिवर्तन से ये सभी हमें यही संकेत देते हैं कि अब प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही होगा।
1: बिल्कुल, अक्सर हम सोचते हैं कि एक पेड़ लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर हर व्यक्ति साल में सिर्फ एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो करोड़ों नए पेड़ हमारे देश को फिर से हरा भरा बना सकते हैं।
0: क्या बात कहा आपने। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक विकसित पेड़ अपने जीवन काल में न केवल हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और उनके और अनेक पंक्षियों व जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करता है। दोस्तों हम इस विषय पर आगे और भी बातचीत करेंगे, फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं एक और फिल्मी गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा से उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेड़ों की। पेड़ गर्मी को कम करने, वर्षा चक्र को संतुलित रखने और भूजल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वास्तव में हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन एक सवाल आप सभी से, क्या हमने कभी किसी पौधे को लगाने के बाद उसकी देखभाल भी उतनी ही जिम्मेदारी से की है? क्योंकि सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं, उसे पेड़ बनना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वन महोत्सव केवल एक सप्ताह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह हमें साल भर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हम अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं, जैसे अपने जन्मदिन पर एक पौधे लगाना, किसी खास अवसर पर पौधा उपहार में देना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी बचाना और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का प्रयास करना। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को भी पेड़ों का महत्व बताना, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की सबसे अच्छी शुरुआत घर से ही होती है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इसलिए अगर अभी तक आपने कोई पौधा नहीं लगाया है तो आज ही एक छोटा सा संकल्प लीजिए, क्योंकि एक पौधा केवल पेड़ नहीं बनता, वह छाया बनता है, सांस बनता है, बारिश बनता है और जीवन बनता है। आइए, वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि एक व्यक्ति, एक पौधा केवल नारा नहीं बल्कि हमारी आदत बने। जब धरती होगी हरी भरी, तभी सुरक्षित होगी आने वाली हर पीढ़ी। इसी सकारात्मक सोच के साथ और संदेश के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और शानदार ट्रैक।

0: अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत, फिल्म वेलकम टू द जंगल से आवाज़ थी आनंद राज और आनंद रूबाई की। तो दोस्तों आज है थर्सडे और हर थर्सडे को हम आपके लिए लाते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है थ्रोबैक थर्सडे। तो आज थ्रोबैक थर्सडे में आइए आज का थ्रोबैक थर्सडे जानते हैं।
1: दोस्तों अब वक्त है हमारे आज के इंस्पायरिंग सेगमेंट का, जहां हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे एक ऐसी प्रतिभा को जिन्होंने अपने हुनर, आत्मविश्वास और लगन से AIR@90 प्रतियोगिता में विजय हासिल की है। ये प्रतियोगिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपनी शिक्षा और सांस्कृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान अंबिका शरफ जी को। अंबिका
0: बहुत
1: जी, युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद ईशा जी। मैं आपका और आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
1: अंबिका जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आप कर रही हैं?
2: जी मैं मूल रूप से मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ और BRA BU के महिला शिल्प कला भवन कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरे कोर्स का नाम है बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस। मैं फिलहाल थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाली हूँ, अभी बस सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स ओवर हुए हैं।
1: जी, तो बताइए इस कोर्स को चुनने के पीछे क्या सोच थी? क्या आपका चाइल्डहुड पैशन था या फिर धीरे धीरे इस ओर इंटरेस्ट बढ़ा?
2: चाइल्डहुड पैशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि बचपन से मुझे साइंस भी बहुत पसंद था, लेकिन मैथ्स पसंद नहीं था।
1: अच्छा,
2: तो मैं ऐसे करियर को वो एक्सप्लोर करने लगी जहाँ पर मैथ्स का ज़्यादा रोल ना हो। तो मुझे पता चला हाँ ऐसे भी करियर होते हैं, तो बस उसी समय इसका ऑप्शन मेरे सामने आया। और ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस ही क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं अच्छे से पढ़ भी सकती हूँ और किसी को पढ़ा भी सकती हूँ।
1: अच्छा, अब आते हैं उस कंपटीशन की बात पर जिसने आपको ये मंच दिया, AIR 90 प्रतियोगिता। अंबिका जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये प्रतियोगिता किस विषय पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था?
2: ये आयोजित की गई थी क्योंकि AIR 90 वर्ष का हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, लगभग 10 टॉपिक थे, उनमें से हमें किसी एक को चुनना था। तो मेरा जो टॉपिक था वो था सैनिकों का मनोबल और आकाशवाणी का संदेश। इसमें मुझे बताना था कि ऐसे कौन से समय हुए, मुश्किल समय, जब आकाशवाणी ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया, टूटने नहीं दिया।
1: तो इसमें भाग लेने का ख्याल आपको आया कैसे?
2: ख्याल आया ऐसे, खुद से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मेरी जो HOD है शालिनी गुप्ता जी, उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया
1: अच्छा, उनके
2: था।
1: मोटिवेशन से है
2: जी
1: ना?
2: हाँ, और कारण ये था कि इसके पहले भी मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स जीत रखे हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम दिया था।
1: जैसे कौन से कॉम्पिटिशन्स?
2: जैसे अभी फिलहाल जुलाई में ही एक हुआ था दैनिक जागरण की तरफ से, उनका
1: अच्छा
2: 50 वर्ष कंप्लीट हुआ था बिहार
1: ओ
2: में। तो रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने स्पीच कंपटीशन रखवाई थी 3 लेवल्स पे, पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट लेवल यानी इंटर यूनिवर्सिटी। तो उन तीनों पे मेरा हमको मुझे विजय हासिल हुई। और जो स्टेट लेवल पर जो हुआ
1: जी
2: उसमें मुझे गवर्नर साहब और बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं उनके तरफ से 1 लाख का कैश प्राइज और ट्रॉफी दिया गया था।
1: बहुत
2: और
1: बहुत बधाई आपको अंबिका जी।
2: थैंक यू ईशा जी। और इसके पहले भी नेहरू युवा केंद्र संगठन के तरफ से नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हुआ था, उसमें हमें बिहार विधानसभा जाना

0: था, तो वहां जाकर मुझे 6th रैंक प्राप्त हुआ था।
1: अच्छा, और जब आपने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, माहौल कैसा था वहाँ का? कितने प्रतिभागी होंगे वहाँ, और कंपटीशन कितना टफ रहा होगा आपके लिए?
0: वहाँ लगभग 80 से 90 प्रतिभागी थे। कंपटीशन टफ था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा बोला था, तो मुझे डर तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले भी कॉम्पिटिशन्स ऐसे किए हैं, लेकिन हाँ अच्छा था, हेल्दी कॉम्पिटिशन था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी।
1: बहुत बढ़िया अंबिका जी, जब आपका नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ होगा, उस पल आपको कैसा लगा? दिल की धड़कनें बढ़ी थी या टीयर्स ऑफ जॉय?
0: टीयर्स ऑफ जॉय तो नहीं, लेकिन हाथ दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जीतूंगी, पर लेकिन मेरा नाम आया शायद इस कारण से क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स रखे थे वो बहुत अलग थे, बहुत ज्यादा यूनिक थे और ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत अच्छे थे, वो पॉइंट्स किसी ने भी ऐड नहीं किए थे।
1: हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो अंबिका जी, आपको इंस्पिरेशन किन से मिलती है?
0: मेरे इंस्पिरेशन तो मेरी फैमिली में ही है, मेरे मम्मी पापा और जो मेरी एल्डर सिस्टर है, मेरी दीदी, हमेशा से, स्पेशली मेरी दीदी, वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही है। ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आई जो मेरे और मेरे छोटे भाई पर ना आकर मेरी दीदी नहीं झेल ली। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खुद झेल लेती है मुझे और मेरे भाई को बचाकर, तो
1: अक्सर ऐसा
0: बस
1: होता है कि
0: अक्सर
1: एल्डर जो सिस्टर या ब्रदर होते
0: हाँ
1: हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर लेते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ बस वही मेरी इंस्पिरेशन है, उसी को देख के रोज मोटिवेशन मिलता है, किसी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं
1: किस छात्रों के लिए जो
0: है।
1: करियर सिलेक्शन को लेकर अनश्योर हैं?
0: सबसे पहले तो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, पहले ही किसी चीज़ में नहीं चले जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर इंटरनेट से या फिर किसी एक्सपर्ट से, या फिर अगर आपके घर में कोई है फैमिली मेंबर रिलेटिव आप उनसे पहले पूछिए, फिर आप खुद सोचिए कि अगर मैं उस स्थान पर होऊंगा या होऊंगी तो क्या मैं उस काम को ठीक से कर पाऊंगा या पाऊंगी।
1: बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस थी ये। वैसे अंबिका जी, इस कंपटीशन में आपने कौन सा टॉपिक चुना था?
0: मेरा टॉपिक था सैनिकों का मनोबल और आकाशवाणी का
1: जी,
0: संदेश।
1: तो उस सैनिक कंपटीशन के बारे में आप थोड़ा, आपने क्या क्या कहा था वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स मेंशन किए थे, थोड़ा हमारे श्रोताओं को ही बताइए।
0: मैंने शुरुआत की थी कि एक इंट्रो था कि कैसे आकाशवाणी ने अपना संदेश पहुंचाया है सैनिकों से, उसके बाद मैंने एग्जांपल्स दिए थे जैसे 1962 का वॉर हो गया इंडो चाइना वॉर, फिर 1965 का इंडो पाक वॉर, फिर जो 1970 का बांग्लादेश वॉर हुआ था इंडो पाक वॉर, उसमें सैम मैनेकशॉ ने एक बहुत वो ब्रेवरी वाली चीज की थी, वो ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को मैसेज भेजा था कि अगर
1: जी
0: आप हार मानोगे तो मान लो, नहीं तो फिर आप लोग का तो वैसे ही खात्मा होने वाला है। तो ये एक ऐसा चीज था कि उसके बाद लगभग 1 लाख वहां के सैनिकों ने सरेंडर किया था, तो ये था। और उसके बाद कुछ ऐसे शोज के मैंने नाम बताए थे, होते हैं आकाशवाणी में, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सैनिकों के लिए खास करके, जैसे कि सैनिकों का संदेश, वीर गाथा, बस ये कुछ पॉइंट्स थे।
1: बहुत इंस्पायरिंग। मुझे लगता है आपकी यही सोच आपकी जीत का कारण बनी है। अंबिका जी, अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी जर्नी को 3 शब्दों में बताएं, तो वो कौन से होंगे?
0: मेहनत, विश्वास और निरंतरता,
1: बहुत ही
0: क्योंकि
1: सुंदर जवाब दिया आपने।
0: ये अगर 3 रैंडम रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर आप मेहनत करोगे लेकिन आप डिसिप्लिन और निरंतर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है आपको। अगर ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 8 घंटे ही पढ़ना है, आप रोज भी 4-4 घंटे पढ़ोगे ना, लेकिन वो रोज आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है।
1: बहुत ही सुंदर जवाब। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई शॉर्ट मैसेज दें, कुछ ऐसा जो उन्हें मोटिवेट करे।
0: मेरा मैसेज है, स्वामी विवेकानंद का ये एक मैसेज था कि कमजोरी, वीकनेस इज द बिगेस्ट सिन, कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको पीछे खींचती है, यानी वो आपकी कमजोरी है, तो सबसे पहले आप उस पर काम कीजिए, उस कमजोरी को आप त्यागिए, क्योंकि वही है जो सबसे बड़ा पाप है जो आपसे करवा रहा है। अपनी कमजोरी को त्यागिए, वो कमजोरी जो भी हो उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करिए।
1: सच में अंबिका जी, आपकी बातें सुनकर सच में दिल बहुत खुश हो गया है। आप जैसी युवा आवाजें ही तो हमारी समाज की नई पहचान है।
0: धन्यवाद ईशा जी।
1: और अब इस खूबसूरत बातचीत को एक प्यारे से गाने के साथ खत्म करते हैं। अंबिका जी, बताइए आपका मनपसंद गीत कौन सा है?
0: वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक है जो बहुत अच्छा है, जब भी मिट का तुमसे ही।
1: तो दोस्तों, अंबिका जी की फरमाइश पर हम ये गाना जरूर सुनेंगे। अंबिका जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे आकाशवाणी परिवार का मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद।
1: आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गाना अंबिका जी की फरमाइश पर।

0: सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूँ और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना प्रोग्राम युवानी, मैं हूँ निशा
3: और मैं हूँ ऋचा।
2: तो अभी आप सुन रहे थे थ्रोबैक थर्सडे में ईशा और अंबिका की बातचीत। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है स्पोर्ट्स अपडेट का।
3: दोस्तों अब समय हो चला है खेल जगत की हलचल जानने का। अब हम आपको बता दें कि किन महिला की T20 विश्व कप 2026 अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुका है और आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल।
2: जी हां, आज लंदन के प्रतिष्ठित द ओवल मैदान पर इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला लगभग रात के 11 बजे शुरू होगा। इस नॉकआउट मैच की विजेता टीम फाइनल में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी।
3: अगर दोनों टीमों के पिछले रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई देता है। दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इंग्लैंड ने 23 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को केवल 4 मैचों में सफलता मिली है। एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकल सका।
2: हालांकि सेमीफाइनल का दबाव बिल्कुल अलग होता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि मेजबान इंग्लैंड अपने घरेलू मैदान और शानदार फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहेगी।
3: इंग्लैंड ने इस विश्व कप के ग्रुप चरण में अपनी सभी मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की है। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है।
2: तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएगा या फिर दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल करेगी।
3: इसी के साथ समाप्त होते हैं आज का स्पोर्ट्स अपडेट। आइए सुनते हैं एक और फिल्म की।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: दोस्तों अब वक्त है हमारे आज
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जावेद अली, इरफान, अशरफ और सादाब की आवाज़ में फिल्म तुम मिले से ये गीत। और कार्यक्रम के आखिरी में रोचक तथ्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। एक परिपक्व पेड़ एक साल में इतनी ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है जिससे दो लोगों की साल भर की जरूरत पूरी हो सके। इसलिए पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की ही नहीं बल्कि जीवन की भी सुरक्षा है।
1: सचमुच ज्ञान तभी मजेदार बनता है जब वह हमें अलग, नया और कुछ सोचने में मजबूत करे। इन्हीं रोचक तथ्यों के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। अगली बार हम फिर कई रोचक तथ्यों के साथ आपसे मिलेंगे।
0: साथ ही स्टूडियो की घड़ी भी इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: जी हाँ दोस्तों, और जाना भी ज़रूरी है ताकि हम फिर से इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ लौट सके आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवानी को लेकर।
0: दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा या कोई भी सुझाव हो, आप हमारे मेल आईडी patna@gmail.com पे जरूर जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं।
1: साथियों, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दोस्त निशा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब गीतनाद। गीतनाद सुनौता आशुतोष कुमार मिश्रा संगहि सुनब एक गोट वार्ता बिखे होयत मैथिली साहित्य में श्रृंगारक पक्ष। मुदा एहिसँ पूर्व किछु अपना में दुटप्पी सेहो करब। देखू श्रोता मित्र, अपना संस्कृति में आदिकालसँ गाछ बिरिछके पूजनीय आ जीवनक आधार मानल गेल अछि। मुदा आइ बढ़ैत जनसंख्या, शहरीकरण आ वनक अंधाधुंध कटाईसँ पर्यावरणक संकट आबि गेल अछि। एहनमे जुलाईके पहिल हप्तामे मनाओल जायवला वन महोत्सव हमरा सबके प्रकृतिके प्रति अपन जिम्मेदारीके याद दियाबैत अछि आ धरतीके हरियर बनेबाक संदेश दैत अछि। श्रोता मित्र, स्वतंत्रता के बाद देश में गाछ वृक्ष के घटैत देख आ एकरा बढ़ेबाक लेल 1950 में

मुंशी एक गोट आंदोलन शुरू कलन। आई मादे एक साल में आय के बाद हरेक साल देश में लाखों लाख गाछ वृक्ष लगाल जा लागल। एखन वर्तमान केंद्र सरकार सेहो एहि के महत्व के बुझि एक पेड़ माँ के नाम जेहन राष्ट्रीय अभियान चला रहल अछि। एहि मादे करोड़ों के संख्या में गाछ वृक्ष लगाल जा रहल अछि। वन मात्रे लकड़ी आ फल फूल नहीं दैत अछि, किंबा इस संपूर्ण पृथ्वी के सुरक्षा कवच थिक। ई हमरा सबके जीवनक प्राण वायु प्रदान करैत अछि, संगहि बरखा लाबय में सेहो सहयोग दैत अछि आ बढ़ैत तापमान के नियंत्रित सेहो करैत अछि। गाछक जड़ि माटि के बान्हि के राखैत छैक, एहिसँ बाढ़ि में माटिक कटाव रुकैत अछि। गाछ वृक्ष लाखों जीव जंतु कीट पतंगी के आवास आ भोजन स्थल सेहो होइत अछि, एहिसँ भोजन भेटैत छैक। ई वन महोत्सव मात्रे अभियान नहि, ई एक गोट धरा के बचेबाक संकल्प थिक। मात्रे गाछ लगायब नहि, ओकर रक्षा कऽ नम्हर बना धरती के बचायब। आउ हम सब मिल एहि संकल्प के पूरा करी, आइ दिस काज करी। ई तऽ छल किछु अपनामे गपशप। आब हमसब कार्यक्रम दिस प्रवेश करी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई लोकगीत। कलाकार छथि आशुतोष कुमार मिश्रा।

0: एखन सुनि रहल छलहुँ श्रोता मित्र ई पावस गीत आशुतोष कुमार मिश्रा एकरा सुना रहल छलाह। कार्यक्रममे हिनकासँ हम सवार गीत नादक आनन्द लेब, मुदा एखन सुनैत छी ई वार्ता। बिखे अछि मैथिली साहित्यमे श्रृंगारक पक्ष, वार्ताकार छथि डॉक्टर रंजना। ताव सुनैत छी एहि सम्बन्धमे हिनक विचार।
1: साहित्य आ श्रृंगारमे अद्भुत समन्वय रहल अछि। जँ साहित्यमे श्रृंगारक समावेश नहि रहय तँ ओ अपूर्ण मानल जाइत अछि। श्रृंगार रस उत्पन्न करैत अछि, विरह अभिसार उत्साह उमंग हास परिहास संयोग वियोग आदि साहित्यक आधार स्तंभ अछि। मैथिली साहित्यक आदि ग्रंथ वर्णरत्नाकर जे कवि शेखर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि ओहूमे श्रृंगार वर्णन कयल गेल अछि। एहि पोथीक दोसर कल्लोलमे ज्योतिरीश्वर नायिका वर्णन कयने छथि। ओ कहै छथि जे नायिका अत्यंत सुंदर छथि, जिनकर शरीर अत्यंत कोमल अछि, गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकार नाभि छनि, विशाल पयोधर स्वर्ण आभूषण सँ सुसज्जित शरीर, पैरमे पायल हरिण सन आँखि, पूर्णिमाक चाँद सन अमृत पूरल मुँह, काजरक कलोल सन भौं, श्वेत पंकज सन आँखि, नव पल्लव सन ठोर, सोटल नाक, मोती सन चमकैत दाँत, बेतक साठ सन बाहि, पारिजातक पल्लव सन हाथ, जानो युगल विशाल पयोधर, खंजन चिड़ै सन चंचल नयन, कदलिक थम सन जांग, कामदेवक नगर सँ सम्पूर्ण शरीर, स्वर्गमे वास कनिहार अप्सरा उर्वशी मेनका रंभा आदि हुनका समक्ष तुच्छ बुझैत छथि। लगैत अछि जेना इंद्र हिनकर रूप देख सहस्त्राक्ष भय गेलाह आ चतुर्भुज ब्रह्मा के आलिंगन के स्वयं कृष्ण चतुर्भुज भय गेलाह। ज्योतिरीश्वर इहो कहै छथि जे नायिका कानन सो कानक शोभा देखि बुद्ध ध्यानस्थ भय गेलाह, नायिकाक मुँहक शोभा देख चंद्रमा जल में प्रवेश कयल, आँखिक शोभा देख हरिण बन चल गेल, केशक शोभा देख चामर गाय पलायन कय गेल, दाँतक शोभा देख दारिमक हृदय विदीर्ण भय गेल, अधरक शोभा देख प्रवाल अथवा मूंगा द्वीपांतर भय गेल, कंठक शोभा सँ घबरा कय कम्बू यानी शंख पुनः समुद्र में समा गेल, तनक सुंदरता देख चक्रवाक विचलित भय गेल, बाह युगलक सुंदरता देख कमलक नाल पंक निमग्न भय गेल आ जंग युगलक शोभा सँ खिन्न भय कदलिक गति विपरीत भय गेल। कवि शेखर नायिका के त्रिभुवन मोहिनी कहलनि अछि। वर्णरत्नाकर मध्ययुगीन उत्तर भारतक सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययनक अमूल्य निधि अछि। भाषाक विकासक अध्ययनमे एकर असाधारण महत्व अछि। उत्तर भारतक आधुनिक आर्य भाषा सबहमे ई प्राचीनतम ग्रंथ थिक आ एकरा बादो बहुत दिन धरि अद्य गद्य ग्रंथ उपलब्ध नहिए अछि। लोक प्रचलित भाषाक यथार्थ स्वरूप पद्यमे नहि गद्यमे परिलक्षित होइत अछि, तैँ वर्णरत्नाकरके मैथिली साहित्यक आदि ग्रंथ कहल जाइत अछि। मैथिली साहित्यक गगनमे एक दिस चंद्रवत ज्योतिरीश्वरक तिरोभाव होइत अछि

तहन दोसर दिस सूर्य विद्यापतिक उदय। महाकवि विद्यापतिक कीर्तिगाथा 14 शताब्दी से अद्यावधि मिथिले टा में नहि अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में गुंजायमान होइत रहल अछि। महाकवि विद्यापति मैथिली साहित्याकाशक सर्वाधिक दैदीप्यमान नक्षत्र छथि। हिनका नाम पर स्वतंत्र युगधारा प्रवाहित भेल। हिनका मध्यकालीन मैथिली साहित्यक अधिष्ठाता कहल जात अछि। जनिक गीतक प्रचार प्रसार राजप्रसाद सँ लय कए अकिंचन टूटल मरैया एवं बाध बोनक रखवारक खोपड़ी धरि भेल। राजमार्ग सँ लय कए गामक बीथी पर्यंत भेल। विद्वन मंडली सँ लऽ गाम घरक चरवा हरवाहक कंठ धरि गुंजित भेल। विद्यापति भक्ति एवं श्रृंगार दुनू पदक रचना कयने छथि। दुनू अपन पराकाष्ठा पर अछि, केओ ककरो सँ कम नहि। विद्यापतिक नायिका अपन नायक सँ अनुनय विनय करैत छथि। राखह माधव मोर विनती देहे परिहरि पर युवती, चुम्बने नयन काजर गेला दसने अधर खंडित भेला। पीन पयोधर नखर मंदा जनि महेश्वर शरद चंदा। नायिका के समाज आ परिवारक डर होइत छनि, ओ अपन व्यथा नायक सँ कहैत छथि। हुनक हृदय अपन प्रेमी के सानिध्य पाबि प्रफुल्लित अछि, मुदा ओ तैयो हुनका सँ शिकायत करैत छथिन। एतय श्रृंगार में हर्ष विस्मय दुनुक वर्णन भेल अछि। विद्यापतिक दोसर पद अछि बारिश जामिनी कोमल कामिनी दारुण अति अंधकार, पथ निशाचर सहसे संचर घन पर जलधार। माधव प्रथम नेहे से भीत गए अपने ही से अवलोकीय करिया तैसन रीत। एहि पद में नायक आ नायिकाक प्रथम मिलनक अवसर छनि। प्रकृति सेहो दहीन अछि, लगातार मूसलाधार बरसात भय रहल अछि, बिजली चमक रहल अछि, घनघोर अंधकार पसरल अछि, जाहि कारणे पथ पर चलब कठिन अछि। तैं नायिका अपन बाधा नायक के कहै छै जे अहाँ परिस्थितिक अनुकूल विचार करू, जे उचित बुझाइत अछि से करू। राधा कृष्णक प्रेम के सखी द्वारा आगू बढ़ाओल गेल अछि। सखी कृष्ण के राधाक विरहक दशा सुनबैत छथिन। अविरल नयन गले जलधार नव जल बिंदु सहय के पार, कुछ युग ऊपर आननहि हेरु चांद राहु डरे चढ़ल सुमेरु। अनल अनिल बम मलयज बीख जे छल शीतल से भेल तीख। तुअ दर्शन बिनु तिलाउ न जीव जौ कलामत पियुब जीव। एहिठाम नायिका विरहक अग्नि में जरि रहल छथि। हुनका जलक बूंद शीतलता प्रदान नहि कय पबैत छनि। जेना चंद्रमा राहुक डरे पहाड़ पर चढ़ि जाइत छथि, तहिना सुंदरी लोक लज्जाक कारणे विरहक परिताप सहि रहल छथि। हुनक उपचार तखने संभव अछि जखन नायक हुनका समीप रहथिन। जौं से नहि हैत तँ ओ जीव नहि सकती, खाहे हुनका अमृतक पान किएक नहि कराओल जाय। विद्यापति लिखैत छथि ततहि धावल दुह लोचन रे जहि पथे गेल बड़ नारी, आशा लुब्धल न तेजय रे कृपणक पाछू भिखारी। सहजहि आनन सुंदरी रे बहु अनिरित आँखी, पंकज मधुकर मधुपिबिरे उड़य पसारय पाखी। जाहि बाटे नायिका जाइत छथि नायक ओहि दिस तकते रहि जाइत छथि। मन में जिज्ञासा होइत छनि जे कहुना ओ एक बेर पाछू घूमि के ताकथि। जेना भिखारी के मन में भीखक आशा रहैत छैक, तहिना नायिकाक सुंदर मुख देखबाक लेल नायक कामुक भए जाइत छथि। मधुकर बनिके हुनक रसपान करय चाहैत छथि। नायिकाक मुँह में सुरेखल भौं हुनका आकर्षित करैत छनि। एहि पद में विद्यापति सुंदरीक सुंदरताक उत्कृष्ट वर्णन कयने छथि। नायिकाक श्रृंगारिक वर्णन करैत विद्यापति लिखैत छथि तोहर बदन सम चांद हो अथि, नहि जइयो जतन विहि देल, कैबेरी काटी बनाओल नवके तैयो तुलित नहि भेल। लोचन तूल कमल नहि भय सक से जग के नहि जाने, से फिर जाय लुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। अर्थात नायिकाक शरीर चांद सन अछि, आँखि कमल सन अछि, दुनुक अपरूप सौंदर्य अछि, मुदा चंद्रमा आ कमल नायिकाक सुंदरताक समक्ष हीन बुझैत छथि, से संसार में सब जनैत अछि।
उड़

अंचल झापि चंचल आध पयोधर हेरु पौन पराभव शरद धान जन बेकत कमल सुमेरु पहिल बदर कुछ जुग नवरंग दिन दिन बाढ़ पिरा अनंग से पुन भय गेल बीजल पोर अब कुछ बाढ़ल सिरफल जोर। विद्यापतिक पद में नख सिख श्रृंगारक वर्णन कयल गेल अछि जकर दृष्टांत प्रस्तुत कयल गेल अछि। नायिकाक बेरह वर्णन सेहो अत्यंत मार्मिक अछि। सखी हे हमर दुखक नहीं ओर ईभर बादर माह भादर सून मंदिर मोर झम्पि घन गर्जन्ति संतत भुवन भरि बरसंतिया कंत पाहुन काम दारुन सघन खरसर हंतिया। घर में पतिक नहि रहलाक कारणे पत्नी अन्हार गुजगुज राति में हुनका बरखा भेलाक कारणे मेघक गर्जना सँ डेरा जाइत छथि। दारुक डाकब हुनका शरीर के व्यथित करैत छनि। घोर अन्हरिया राति में बिजुड़ीक चमक

0: पत्नी अन्हार गुजगुज राति मे हुनका बरखा भेलाक कारणे मेघक गर्जना सँ डेरा जाइत छथि। दारूक डाकब हुनका शरीर के बेधित करैत छनि। घोर अन्हरिया राति मे बिजुड़ीक चमकब मन के अस्थिर करैत छनि। बुझाइत छनि जेना हुनकर छाती फाटि जैतनि, किएक तँ ओ शांत कियो हुनका सांत्वना देनिहार घर मे नहि छनि। विद्यापतिक उत्तरोत्तर कवि लोकनि हुनके काव्यक धारा के आगू बढ़बैत रहला, तैं लगभग 600 वर्ष धरि कृष्ण काव्यक परिपाटी बनल रहल। आधुनिक कालक प्रणेता चंदा झा राम काव्यक निर्माण करैत मिथिला भाषा रामायणक रचना कयलनि, जे मैथिली भाषा मे लिखल गेल अछि। हिनका बाद महाकवि लालदास सेहो रामेश्वर चरित रामायणक रचना कयलनि। ओ जानकी रामायणक रचना सेहो कयलनि, जे मात्र एकटा एहन रामायण अछि जकर मुख्य केंद्र मे सीता छथि। कविवर लालदास रचना मे श्रृंगारक वर्णन करैत कहैत छथि, त्यागल निसी चंद्रक सहवास, लोक लाज पुनिमानस त्रास, अंधकार फुजल छल केस, से सब समेट बेध लेल वेश, पति संगम टूटल जे हार, छल छिरियायल समेटल तार, लावण्यमयी रजनी संभोग निमात्री थिकी, चंद्रमा और रजनीक रासक चित्रण अत्यंत सुंदर कयल गेल अछि। श्रृंगारिक होइतों एहिठामक चित्रण स्वाभाविक अछि। रजनीक पति चंद्रमा छथि, जिनका आगमन सँ रात्रि प्रसन्न भय अपन श्रृंगार प्रदान करैत छथि। कुमुदनी प्रस्फुटित होइत छथि, मुदा चकवाक वियोगी भय जाइत अछि। दोसर देश कवि कहैत छथि, देख बसंतोत्सव एहन सुनि सुनि मधुपक गान, प्रिया विरह दुख प्रबल बढ़ी, लय अछि छन छन प्राण। प्राकृतिक सौम्य रूप कविक मोन के अपना देश आकृष्ट करैत रहैत छनि। उद्दीपन प्रकृतिक उभरल भावक प्रतीक थिक, लावण्यमयी रजनी संभोग निमात्री थिकी, चंद्रमा और रजनीक रासक चित्रण अत्यंत सुंदर कयल गेल अछि।
1: एखन श्रोता मित्र सुनि रहल छलहुँ ई वार्ता, बिखे छल मैथिली साहित्यमे श्रृंगारक पक्ष, वार्ताकार छली डॉक्टर रंजना, हिनका धन्यवाद दियनि। देखू श्रोता मित्र, 1971 के युद्धमे पाकिस्तान के पराजय के बाद भारतक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आ पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच में शिमला में एक गोट समझौता भेल छल, नाम पड़ल शिमला समझौता। 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान के बड़का पराजय झेलय पड़ल आ एहिके संग बांग्लादेश नामक एक गोट अलग देश बनल। भारत 93,000 पाक सैनिक के युद्धबंदी बना लेने छल आ पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा सेहो कऽ लेने छल। स्थिति के सामान्य करय आ शांति लेल ई शिमला समझौता भेल छल। एखन कार्यक्रम में अपने सबके सुनबै छी ई नचारी।

श्रोता मित्र, हमसभ खेल जतबे खेलैत छी ओतबे ओहिके पसीन सेहो करैत छी। एहि खेल आ हमरा अहाँक बीच ओकर खबरि पहुँचाबयमे एक गोट सेतुक काज करैत छथि खेल पत्रकार। ई मात्रे खेलक स्कोर नहि, किम्बा ओहिके पाछूके संघर्ष, अनुशासन आ खिलाड़ीके अनकहल कहानी सेहो बताबैत छथि। एहि खेल पत्रकारके योगदानके सराहना लेल प्रत्येक वर्ष 2 जुलाईके विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाओल जाइत अछि। ई दिवस ओहि पत्रकारके प्रति आभार व्यक्त करबाक अवसर सेहो होइत अछि। कार्यक्रमक समापनसँ पूर्व आओ सुनैत छी ई झूमर।

श्रोता मित्र, एक सभक लेल आ सभक लेल एक के सिद्धांत पर आधारित सहकारी समिति एक गुट आदर्श आ आत्मनिर्भर समाजक रीढ़ अछि। ई व्यवस्था मात्रे आर्थिक लाभ लेल नहि किंबा सामाजिक बदलाव के एक गुट माध्यम सेहो अछि। ई व्यवस्था छोट किसान, कारीगर आ मध्यम वर्ग के कम लागत पर संसाधन आ ऋण दऽ आत्मनिर्भर बनाबैत अछि, संगहि आपसी मतभेद सेहो समाप्त करैत अछि। सभक विकास एहिसँ सेहो होइत अछि, ताउ हमसभ सेहो सहकारी समितिसँ जोड़ी आत्मनिर्भर बनी। आजुक भारतीय कार्यक्रममे आब एतबे, पुनः अगिला कार्यक्रममे अपने सभसँ भेंट होयत। प्रभातके विदा देल जाय, बेस तऽ शुभ साँझ।

भारती, अभी आप ये मैथिली कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का।

7:30 पर प्रादेशिक समाचार और 7:47 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। सात बजकर 52 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे चक्रपाणि।

8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ 8 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीज किए जाएंगे। आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच द किया ओवल लंदन में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे रात्रि 10:30 से। तो ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। निर्वाचन आयोग पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीख के घोषणा कर देले बा। ए सीट खातिर 30 जुलाई के वोट डालल जाई। चुनाव के अधिसूचना 6 जुलाई के जारी हुई आ वही दिन से नामांकन पत्र भरे के काम भी शुरू हो जाई। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन कर सकी हैं। 14 जुलाई के नामांकन पत्रन के जांच हुई आ नाम वापस लेवे के आखिरी तारीख 16 जुलाई तय कैल गई बा। वोटन के गिनती 3 अगस्त के हुई। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देवे के चलते इस सीट खाली भइल रहे, जेकरा वजह से ई उपचुनाव हो रहल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि राज्य के सब प्रमंडल में निगरानी के विशेष अदालत बनावल जाई। एकरा साथे साथे हर जिला में निगरानी थाना और सब अनुमंडल में निगरानी ओपी खोलल जाई। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस के मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत रहले। मुख्यमंत्री कहले कि सरकार पारदर्शी शासन खातिर TTT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रहल बिया। उ लोगन से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनावे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे के अपील कैले। एह मौका पर मुख्यमंत्री बिहार सतर्कता जागरूकता हफ्ता के शुरुआत भी कैले। हमार संवाददाता के मुताबिक बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सब दफ्तरन में कर्मचारी लोगन के सतर्कता के शपथ भी दिलावल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार के हरी झंडी देखौले। साथ ही उ खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन भी कैले। अब पटना में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार ISBT से मलाही पकड़ी तक हो गई बा। पूरा रूट के लंबाई 6.2 किलोमीटर बा और ये दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाई। ISBT से मलाही पकड़ी तक के भाड़ा 30 रुपया तय कैल गई बा। इस मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा समेत कई गो गणमान्य लोग मेट्रो में

यात्रा भी कैले। राज्य में आवे वाला 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगन के टीबी स्क्रीनिंग करे के लक्ष्य रखल गई बा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मिशन मोड में अभियान चलावे के ए लक्ष्य के हर हाल में पूरा करे के निर्देश देले बाड़े। टीबी मुक्त भारत अभियान के समीक्षा बैठक में बतावल गई कि राज्य के 2.76 करोड़ लक्षित आबादी में से अब तक 39 लाख लोगन के जांच हो चुकल बा, जे कुल लक्ष्य के सिर्फ 14% बा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा के 20,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेले बा। गिरफ्तार अधिकारी एगो रिटायर कर्मचारी से एरियर के भुगतान करावे के बदला में घूस लेते रहे। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एगो भारी चट्टान गिर गईला से 7 गो प्रवासी मजदूरन के मौत हो गई बा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मरे वाला लोगन में बिहार के रहे वाला कई गो मजदूर भी शामिल बाड़न। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन एह दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जतौले बाड़न। ऊ मरे वाला लोगन के परिवार के प्रति अपन गहरा संवेदना व्यक्त कैले बाड़े। वही जे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एह हादसा पर गहरा दुख जतावत शोक में डूबल परिवारन खातिर अपन संवेदना जतौले बाड़न आ ईश्वर से एह दुख के घड़ी में शक्ति देवे के प्रार्थना कैले बाड़न। सारण जिला के अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर गांव में पोखरा में नहाए के दौरान डूबे से 2 गो किशोरी के मौत हो गई। औरंगाबाद जिला के पैथू थाना क्षेत्र के भताही मोड़ के पास एगो तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के चपेट में आवे से 2 गो छात्रा लोगन के मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर थाना क्षेत्र में एगो किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई। एह अगलगी में लाखन रुपया के संपत्ति जर के राख हो गई और एगो युवक गंभीर रूप से झुलस गई। मानसून के सक्रिय होए से आज पटना बक्सर सारण वैशाली बेगूसराय आ खगड़िया समेत कई जिलों में झमाझम बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे बेसी 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज कल गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बा कि काल राज्य के ज्यादातर हिस्सा में बारिश होके के संभावना बा। राज्य के उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सा में कुछ जगह पर धूल भरल आंधी के साथे वज्रपात के चेतावनी जारी कैल गई बा। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातिर नामांकन मंगले बा। ये पुरस्कार 5 से 18 साल के लड़का लड़किन के असाधारण कामयाबी और उपलब्धि खातिर दिहल जाला। नामांकन पत्र जमा करे के अंतिम तारीख 31 जुलाई बा। मंत्रालय बतौले बा कि एकरा खातिर नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर कैल जा सकेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेलकूद समाज सेवा विज्ञान आ प्रौद्योगिकी पर्यावरण कला और संस्कृति के क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करे वाला लड़का लड़किन के दिहल जाला। एकरा अलावा ई पुरस्कार कोनो मुश्किल घड़ी में असाधारण साहस आ बहादुरी देवे वाला बच्चा के भी देहल जाला। एकरे साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में विजयपथ फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जमीर काजमी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: विजयपथ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः, तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2,000+ परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखा

0: अंकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गतसायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधानविषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.rti.org.in

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश, पीडियाट्रिशियन सिवान से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
1: इसके कारण समय बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना होता है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे छुट्टियां होती हैं, स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो फिर दोबारा एक साथ क्लासेस में आते हैं, कक्षा में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिनमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, ये ज्यादा बच्चों में आसानी से फैल जाती है। कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक हाइजीन है उसके बारे में ट्रेन करें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में अगर बच्चे भीग जा रहे हैं तो उनके कपड़े तुरंत बदलवा दिए जाएं, पानी खूब पीना है बच्चों को इस मौसम में, और इसके अलावा खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे बच्चों को बचाना है।
0: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: आंगन के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, वन महोत्सव सप्ताह भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनावल जाए वाला एगो जरूरी महात्म वाला पर्यावरण के उत्सव है। एकरा वृक्षों का त्योहार भी

कहल जा हई। एकर शुरुआत आधिकारिक तौर पर 1950 में तत्कालीन कृषि में डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा कैल गेले हल, जेकरा से कि नागरिक में पर्यावरण और वन के प्रति जागरूकता बढ़ावल जा सक है। जुलाई के पहला सप्ताह के चयन ई लेल कैल गेले है कि ई समय सौंसे देश में मॉनसून सक्रिय होबे है, जेकरा से लगावल गेल पौधा के जीवित रहे के संभावना सबसे ज्यादा होबे है। एकर मुख्य उद्देश्य है कि पेड़ हवा के शुद्ध करे है और बढ़ल तापमान के नियंत्रित करे में मदद करे है। पेड़ के जड़ मिट्टी के कटाव के रोके है और भूजल स्तर के सुधारे में सहायक होबे है। ई वन्य जीव के आश्रय और इंसान के फल छाया और शुद्ध हवा दे है। ई सप्ताह देश भर के स्कूल, सोसाइटी और सरकारी विभाग में बड़ पैमाना पर वृक्षारोपण अभियान चलावल जा है। ई साल भी देश में एगो पेड़ माँ के नाम और स्वदेशी पौधा जैसे नीम, पीपल, आम के लगावे पर विशेष जोर दिल जा रहा है। और एगो बात के जरूर ध्यान देथिन कि खाली पेड़ लगावल जरूरी नहीं है, बल्कि एकर बेहतर देखभाल के करना भी सही मायना में ई दिन के मनाना है। और जिनका जितना जगह जमीन है नहीं तो घर में भी गमला में हरियाली के लिए पेड़ पौधा जरूर लगाथिन, जितना हो सके पर्यावरण के बचाथिन, हरियाली फैलाथिन। और एक साथ साथ अपने सब सुनथिन कविता चौधरी से इस शिव भजन।

0: बहुत निमन शिव जोगी बाबा बैठले जंगलवा में हो। अभी हमने सब सुन रही है शिव भजन कविता चौधरी से। अब सुनथिन टेलीफोनिक भेंट वार्ता ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी। भेंट वार्ता कर रहे थे देविका गोस्वामी और हिनका से बातचीत कर रहे थे अजीता चौबे।
1: श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देविका गोस्वामी जी से, जो कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में गैर सरकारी संस्था के लिए कार्य कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी इस विषय पर। देविका जी, आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं के बीच।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आपकी प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
1: देविका जी, बातचीत की शुरुआत हम करते हैं इस प्रश्न से, ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसका क्या अर्थ होता है?
2: सामुदायिक भागीदारी का अर्थ है कि गांव के समुदाय स्वयं अपने विकास से जुड़े निर्णय, योजना के निर्माण और उनका क्रियान्वयन, साथ ही साथ उनका निगरानी और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन में सक्रिय भागीदारी करे। इसमें महिलाएं, युवा, वंचित समुदाय व अन्य हितग्राही के सहभागिता बहुत ही आवश्यक होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्थानीय लोगों को ही उनकी समस्या या उनका आवश्यकताओं के बारे में सही तरीके से पता होता है। उनकी सक्रिय भागीदारी से योजनाएं अधिक प्रभावी हो सकती है, पारदर्शी एवं टिकाऊ भी हो सकती है। उस प्रक्रिया से समुदाय में एक ओनरशिप का भावना भी विकसित हो सकती है और इससे सारी सरकारी या गैर सरकारी प्रयास जो ऑन ग्राउंड चलता है उसको भी बहुत मजबूती मिलते हैं। सामुदायिक भागीदारी के बिना इन सारे प्रयासों की सफल होना बहुत ही मुश्किल है।
1: जी।
2: जैसे कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या जिसको हम शॉर्ट में GPDP बोलते हैं, उस प्रक्रिया में भी आप जानते हो कि सरकार ने सामुदायिक भागीदारी को प्रमुखता से उसका पार्ट बनाया गया है और वही इनकी सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक भी है। जितने भी बिहार के क्षेत्र की अगर बात करें, जितने भी SHGs है या आजीविका से जुड़ी हुई समूह है, बिहार में वो काफी अच्छा चल रहा है काफी साल से। और इसके भी सफलता का एक कारण ये है कि इसमें सामुदायिक भागीदारी, स्पेशली महिलाओं की जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, उसको मुख्य माना गया है।
1: जी जी जी, ये सामुदायिक भागीदारी विकसित करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? मतलब क्या आप उनको सिखाते हैं जिससे कि वो एक कम्युनिटी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सके, या
2: तो
1: जिसको आप कहते हैं कि ग्रास रूट लीडरशिप?
2: जी जी, जैसे जमीनी नेतृत्व या ग्रास रूट लीडरशिप जो आप बोल रहे हो
1: जी,
2: इसकी सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका है, बहुत ही क्रिटिकल रोल है
1: जी।
2: और ये जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो और समुदाय, इनके बीच में जमीनी नेतृत्व बीच की सेतु या ब्रिज के रूप से काम करते हैं। इनके माध्यम से ही स्थानीय समस्याओं का सही सही पहचान हम कर सकते हैं और जिसके फलस्वरूप नागरिक संगठित या इकट्ठे हो जाते हैं तथा आपस में भी सही संवाद या राइट कम्युनिकेशन एक स्थापित हो सकता है। इससे सामूहिक निर्णय, जिसको हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, उसको लेने की प्रक्रिया जो है वो भी, उसको भी बढ़ावा मिलता है।
1: जी,
2: जमीनी नेतृत्व को विकसित करने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि स्थानीय युवा जो है या महिलाएं जो है, उनकी नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। हमने भी कई सालों से बिहार के क्षेत्र में इस तरीके की कार्यक्रम चलाया है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि महिला नेतृत्व स्कूल या युवा नेतृत्व स्कूल, जिसके माध्यम से कुछ सिलेक्टेड महिलाएं या युवाओं के साथ गांव-गांव में हमने रेगुलर नियमित ट्रेनिंग चलाया है, जिसके तहत कुछ बेसिक जीवन कौशल की शिक्षाएं भी दिया गया है ताकि उनकी आत्मविश्वास बढ़े, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, जेंडर इक्विटी के बारे में उनको प्रॉपर आइडिया हो जाए और सबसे अहम बात जो है,

0: लोकल जो समस्याएं हैं उनको सही तरीके से पहचाने और उसकी जो समाधान की प्रक्रिया है उसको भी समझे और उसको अपनाएं। तो ये बहुत एक क्रिटिकल एरिया है जिसपे हम फोकस करके काम करते हैं और नियमित प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि है होते हैं या जो SAGs की मेंबर होते हैं या कोई भी CBOs की मेंबर्स होते हैं उनको सशक्त बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत की या GPDP के जो मीटिंग्स होते हैं उसमें इन लोगों की नियमित भागीदारी काफी हद तक सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बना सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ सफल स्थानीय नेतृत्व की जो उदाहरण है, जो सफल एग्जाम्पल्स है, उसको भी हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि समुदाय के लोग प्रोत्साहित हो जाएं।
1: जी, हमारे बिहार में महिलाओं की गांव के विकास में भागीदारी किस तरह बढ़ाई जा सकती है?
0: जी, बिहार में गांव का विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है, तथा इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसे कि जो SAGs की मैं बार बार बात कर रही हूँ, स्वयं सहायता समूह जो है उसको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है तथा आर्थिक रूप से सक्षम होती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास का निर्माण भी होता है। महिलाओं को पंचायत बैठकों और ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना और उनके बोलने के लिए माहौल बनाना तथा विचारों को भी महत्व देना ये बहुत जरूरी है। हम सब देखिए ये जानते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% आरक्षण है, पर इसमें मुख्य चैलेंज कई बार हमें ये दिख जाता है कि इसमें महिलाओं की जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है या जो वास्तविक असली जो भागीदारी है वो बहुत बार सीमित रह जाती है बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। तो साथ ही साथ शिक्षा, वित्तीय साक्षरता जो है जिसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, या डिजिटल लिटरेसी जो है, ऑनलाइन कार्यक्रम सारी जगह पे आजकल चलता है तो इस पे डिजिटल लिटरेसी पे इन सब चीजों को अगर बढ़ावा दे सकते हैं हम तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा सामुदायिक भागीदारी को स्ट्रेंथन करने में। जैसे कि रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संस्थाएं, NGOs, SAGs, इन सबको, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलजुल के काम करना इसके तहत बहुत जरूरी होगा, क्योंकि महिला, किसान और उद्यमी को हम दूर दराज बाजार तक जोड़ सकते हैं, बाजार के साथ जोड़ सकते हैं, तभी हम जोड़ सकते हैं अगर सारी संस्थाएं मिल के काम करें तो। और इसी सिलसिले में मैं एक और पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगी कि आजीविका के अवसरों को भी हमें विस्तार करना चाहिए। जैसे कि SAGs को केवल लोन देने तक सीमित ना रखें, सामूहिक आय सृजन या जिसको लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं उससे जोड़ के ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिहार में मखाना उद्योग, जो कि बहुत हद तक वुमेन लेड है, इसके लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ सामाजिक मान्यता जो होते हैं या लैंगिक भेदभाव जो है, ये इस तरीके की जो चुनौतियां है इसके ऊपर जागरूकता कार्यक्रम भी बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे। जैसे कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये किया जा सकता है, और हमने कई सारे प्रोजेक्ट से इसके तहत हमने ये ऐसे इस टाइप के कार्यक्रम चलाया भी है जिससे महिलाएं और सशक्त बने हैं ग्राउंड लेवल पे। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि महिलाओं के सक्रिय भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक कल्याण, इन सारे प्रोग्राम्स को प्राथमिकता मिलती है, तो इसलिए महिला भागीदारी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है।
1: देविका जी, आप बहुत सालों से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकती हैं जहां समुदाय ने मिलकर किसी बड़ी समस्या का समाधान किया हो?
0: हाँ, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जैसे बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मुजफ्फरपुर में के जो ग्रामीण इलाकों में कृषि यंत्रीकरण की कमी और सीमित आय का समस्या, ये एक बहुत मेजर इशू है। और इसको दूर करने के लिए सक्रिय कुछ महिलाओं की ग्रुप ने एक समूह बनाया जिसको हम बोल सकते कस्टम हायरिंग सेंटर या एक CHC जो इन्होंने सफल तरीके से संचालित किया है। हमारी फाउंडेशन की सपोर्ट से जीरो टिलेज मशीन, रीपर मशीन, धान क्रशर इत्यादि जैसे उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराया गया है जो पहले उस क्षेत्र में इतना ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। अब इन मशीनों की उचित किराया पर

0: मशीनों को उचित किराया पर देकर जो आय होती है उससे जो पुराने जो मशीन है उसके रख रखाव भी किया जाता है और अतिरिक्त मशीनों की भी खरीदारी हुआ है, जिससे इन केंद्रों को और अधिक मजबूती मिल रही है। साथ ही साथ इससे हमने जो इम्पैक्ट देखा, फसलों की पैदावार में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और महिला किसानों की शारीरिक श्रम और थकावट में भी कमी आ गई है। तो ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे शेयर कर सकते थे।
1: ये बताइए, जमीनी स्तर पर जब आप कार्य करती हैं, गांव के स्तर पर जाती हैं, तो सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने में चुनौतियां किस तरह की आती हैं, क्या समस्याएं होती हैं अक्सर?
0: अजिता जी, चुनौतियां तो बहुत है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने में कई प्रकार की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा काफी अच्छा प्रयास की जा रही है, फिर भी कई गांव में हम लोगों को ये महसूस होता है कि जागरूकता और जानकारी की कभी कभी लिमिटेड या सीमित होता है। जैसे कि सरकारी प्रोग्राम्स हो,

0: और थकावट में भी कमी आ गई है। तो ये एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे शेयर कर सकते थे।
1: ये बताइए, जमीनी स्तर पर जब आप कार्य करती हैं, गांव के स्तर पर जाती हैं, तो सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने में चुनौतियां किस तरह की आती हैं, क्या समस्याएं होती हैं अक्सर?
0: अजिता जी, चुनौतियां तो बहुत है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा काफी अच्छा प्रयास की जा रही है, फिर भी कई गांव में हम लोगों को ये महसूस होता है कि जागरूकता और जानकारी की कभी कभी लिमिटेड या सीमित होता है। जैसे कि सरकारी प्रोग्राम्स हो या शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी हो, ये काफी बार सीमित होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता बहुत होता है गांव में कुछ हद तक, तो उसमें फिर महिला और वंचित वर्गों की सीमित भागीदारी भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि वही ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स है उसमें भी कई बार ये सब कारण की वजह से सीमित भागीदारी देखा जाता है। साथ ही साथ नेतृत्व की कमी भी एक मुद्दा है, और कई बार हम देखते हैं कि कुछ सीमित लोग ही जो है उनकी अत्यधिक नियंत्रण भी होता है। तो इसके अलावा समुदाय के लोगों के लिए समय और संसाधनों की भी सीमाएं होती है, और ये सारे जो चुनौतियां हैं इसका सामना हमें करना पड़ता है, और इसको करने के लिए रेगुलर कम्युनिकेशन, रेगुलर ट्रेनिंग, एक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बार बार बातचीत करना, और एक बेसिकली एक समुदाय में एक प्लेटफॉर्म देना लोगों की, वो साथ में आके मिलके इकट्ठे बैठ के कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के तरफ बढ़े, ये हमें लगातार करना पड़ेगा और ये हम करते भी हैं।
1: देविका जी, इस वक्त बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है ताकि वे अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं?
0: हम सबको ये समझना और मानना पड़ेगा कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे ये शहर हो या गांव हो, केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए एक साझा जिम्मेदारी होती है सबकी। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे और ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी करे, सामूहिक निर्णय का सम्मान करे और समाज के कमजोर वर्गों को साथ लेकर चले, तभी हमारा गांव अधिक समृद्ध हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है और सशक्त बन सकता है। मेरा संदेश सबके लिए यही रहेगा कि बदलाव की शुरुआत अपने गांव से करें और विकास की जो यात्रा है उसमें सक्रिय भागीदार बने।
1: जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे देविका गोस्वामी जी से, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की विशेषज्ञ हैं आप। देविका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी इस विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी।
0: आपको भी मुझे इनवाइट करने के लिए।
2: अभी आपने सब सुन रहे थे ना टेलीफोनिक कार्यक्रम भेंट वार्ता, ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी, भेंट वार्ता कर रहे देविका गोस्वामी और हिनका से बातचीत कर रहे थे अजीता चौबे। अब सुनते हैं पूर्वी झूमर कविता चौधरी से।

0: वाह, बहुत निमन। अभी अपने सब सुन रहा थी नल बरसाती झूमर कविता चौधरी से। एके साथ साथ हमने के आंगन के समय उड़िया रहा है। अब तनिका देर बाद मिलम खेती गृहस्थी में।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश, पीडियाट्रिशियन सिवान से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: इसका कारण समय बदलाव, बारिश में भीगना या लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना होता है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जब बच्चे छुट्टियां होती हैं, स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो फिर दोबारा एक साथ क्लासेस में आते हैं, कक्षा में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिनमें सर्दी खांसी वगैरह होती है, ये ज्यादा बच्चों में आसानी से फैल जाती है। कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जो बेसिक हाइजीन है उसके बारे में ट्रेन करें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में अगर बच्चे भींग जा रहे हैं तो उनके कपड़े तुरंत बदलवा दिए जाएं, पानी खूब पीना है बच्चों को इस मौसम में, और इसके अलावा खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे बच्चों को बचाना है।
1: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: किसान भाई, अपने से हम एगो बहुत जरूरी बात कह जा रही है भाई। बरसात के मौसम है तो ई मौसम में हमनी के पशु के देखभाल बहुते जरूरी है, तो आई बात एकरे पर। भारत में बरसात के ऋतु में सामान्यतः देखते नहीं से 15 जून से 15 सितंबर तक होवा है। ई मौसम के दौरान परजीवी के संख्या में ज्यादा वृद्धि देखे लगे मिला है। बरसात के दौरान अपनाल गेल योग्य कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हम अपने से साझा कर रही है, जेकर पालन कैला से पशुपालक अपन पशु संसाधन के स्वास्थ्य के बना के रखते हैं। तब भाई बारिश के पहले पशु के पशुशाला के छत के मरम्मत कर देते हैं, जेकरा से कि बरसात के पानी नहीं टपकत। पशुशाला के खिड़की खुला रखिन और गर्मी के उमस से बचे लगी पंखा के उपयोग करथिन। ई मौसम में साफ सफाई के खास ख्याल रखथिन और पानी के एक जगह पर जमा नहीं होबे देथिन, जेकरा से कि मच्छर नहीं लगे और परजीवी के संक्रमण के रोकल जा सकले हैं। तब पशुशाला में पशु के मल मूत्र के निकासी के भी उचित प्रबंधन करथिन। पशुशाला के दिन में एक बार फिनाइल के घोल से जरूरे साफ करथिन, जेकरा से कि बीमारी फैले वाला बैक्टीरिया कम हो सके। बाड़ा में और ओकरा आसपास कचरा और गंदगी इकट्ठा नहीं होबे देथिन और ओकर निकास के उचित व्यवस्था हो सके है, त नियमित अंतराल पर कीटनाशक के छिड़काव।

0: करथिन, जानवर के ज्यादा शारीरिक थकावट नहीं होवे देथिन और बार बार धूप में नहीं लाथिन। बारिश के मौसम में पशु के बाहर चरे के लगी नहीं भेजथिन, काहे कि बरसात के मौसम में गीला घास में कितना तरह के कीड़ा मकोड़ा होबा है जो पशु के पेट में चल जा है और शरीर के नुकसान पहुँचावा है। पशु के खेत के पास में गड्ढा चाहे तालाब के पानी पिलावे से परहेज करथिन, काहे कि इस समय किसान खेत में खर पतवार के कीटनाशक के दवा के इस्तेमाल करथिन जे रीस के एकरा में आ सक है बह के। कोशिश करथिन कि पशु के बाल्टी से साफ और ताजा पानी पिलाथिन। दाना के भंडारण नमी वाला जेकरा में जगह नहीं है वहाँ रखथिन। इ मौसम में दाना के 15 दिन से ज्यादा भंडार नहीं करथिन। बरसात आवे से पहले पशु के अलग अलग संक्रामण रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना भाई बहुते जरूरी है। अब भाई पशु के बात हो गए तो आप भेंट वार्ता सुनथिन, वृक्षारोपण हेतु सरकारी योजना एवं प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें। भेंट वार्ताकार हथिन दिनेश कुमार दास और हिनका से बातचीत कर रहे हैं संगीता सिन्हा।
1: नमस्कार, खेती गृहस्थी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संगीता। और आए दिन आपकी समस्या और निदान के लिए समय समय पर कई ऐसी चर्चाएं परिचर्चाएं हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अब आज जो चर्चा है और आज जिस विषय को लेके मैं आई हूं, तो कहा जाता है कि किसी भी राज्य का अगर पर्यावरण सुरक्षित है यानी कि हम भी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं हम जिस विषय पे, वो है वृक्षारोपण हेतु सरकारी योजनाएं एवं प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें। किसी भी चीज का अगर प्रशिक्षण करके अगर कोई कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है निदेशक राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान गया के निदेशक हैं दिनेश कुमार दास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। ये एक ऐसा विषय है
1: जी,
2: मेरी समझ से कि ये कृषि वानिकी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन्हें जो किसान को कुछ लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। खेती तो वो करते ही हैं, खेती से फायदा तो उनको होता ही है। उसके अलावे वन पर्यावरण विभाग भी उनके लाभ में बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी भागीदारी निभा सकती है
1: जी। तो सर, यहाँ पे एक सवाल है मेरे जेहन में, राज्य की जनता वन विभाग वृक्षारोपण में राज्य की जनता को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं सर?
2: जरूर, सुविधाएं ये हैं कि वो अगर जितने पौधे लेना चाहें उनके पास अगर जमीन है, जमीन एक यूजुअली ये समझते हैं लोग कि मेरे पास खाली जमीन है तभी वो जमीन मानते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत जागरूक हैं वो समझते हैं कि नहीं, मेरे पास मेड़ पे जमीन है, मेरे घर के किचन गार्डन जैसी जगह है वहाँ पे भी जगह है, कम से कम छोटी सी छोटी जगह को भी वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो हर राज्य के 3800 जिलों में हम लोगों की नर्सरियाँ, विभाग की नर्सरियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ से वो अगर पौधा लेना चाहें तो वो पौधा ले सकते हैं, पौधा क्रय करके और उसका लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक योजना हमारे यहाँ एक कृषि वानिकी की योजना है कि अगर मान ली आप 100 पौधा लेना चाहते हैं तो प्रति पौधा आप सरकार को 10 रुपये के दर से आप कुछ राशि जमा कर दें।
1: बहुत मिनिमम
2: 10 रुपये के तौर पे आप जमा कर दें और वो 10 रुपया भी आपको तीसरे साल लौट जाएगा। लेकिन आप तीसरे साल अगर बचाते हैं तो उसमें उसके बाद थर्ड ईयर में हम 3 साल के सर्वाइवल उत्तर जीविता बचती है वो पौधा, तो फिर हम आपको 50 रुपया 60 रुपया के दर से एक पौधा का देंगे। तो 100 पौधा का से आप 60 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से गुना कर दें तो 6000 रुपया वो हो गया। और आपने जो शुरू में जो पैसा जमा किया था प्रति पौधा 10 रुपया के हिसाब से, जो भी हो, अगर 100 पौधा का था तो 1000 रुपया आपने जमा किया था तो वो 1000 रुपया वो भी आपका लौट जाएगा। मतलब कहने का, एक पौधे के बदले में आपको 70 रुपये तीसरे साल में मिल रहे हैं।
1: क्या बात है,
2: ये एक बहुत ही सरकार ने एक ऐसी एक योजना दी है कि राज्य में, और इसकी बदौलत ये राज्य में हमारा जो राज्य के विभाजन के पश्चात झारखंड के कटने के बाद हमारे यहाँ राज्य में

0: जंगलों की और हरित आच्छादन की जो स्थिति थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, क्योंकि झारखंड में सारे चले गए थे, लगभग 6% जैसी ज़मीन थी, बस उतनी ही भर ज़मीन थी जिसको कि हरित ग्रीन कवर के अंदर में हरित आच्छादन के तहत में था। लेकिन इस योजना के बाद और पिछले वर्षों से भी योजनाएं चल रही हैं लगातार, हम लोग बहुत सजग हैं,
1: जी
0: जिसकी बदौलत आज हम लोगों ने 15% की जो
1: जी
0: है सो उपलब्धि प्राप्त की है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर सर। और देखिए हमारे किसान भाई, अगर ये तो किचन गार्डन की बातें हुई, जो छोटे जगह में जो हम लोग पौध को लगा सकते
0: हाँ नहीं,
1: हैं।
0: आप इसमें ऐसा है
1: हाँ
0: कि अगर चाहें तो
1: हाँ
0: आप, हमने 5,000 पौधा चाहिए, आप डिपॉजिट 5,000, आप 5,000 पौधे के पैसा आप जमा करें, आप 50,000 रुपया जमा कर दें,
1: जी,
0: हाँ
1: हाँ
0: 5,000 पौधा आपको चाहिए, उतनी ज़मीन की आपने कागजात जमा किए हैं,
1: जी
0: एक अब जिस वन प्रमंडल से आप जुड़े हैं उनके साथ आप एक अनुबंध वहाँ पे दस्तखत कर लें, एक अनुबंध कर लें, और उसका 30 साल में अगर आप 5,000 का 5,000 पौधा अगर आप बचाते हैं तो आपको 60 रुपये के दर से 56,3 लाख रुपये वो मिल जाएंगे,
1: जी
0: और वो आपके आप शुरू में जो आपने 3 साल पहले आपने जो पैसे पचास
1: दिए
0: हजार रुपये
1: जो
0: जमा
1: जो
0: किए
1: हाँ
0: थे
1: जी
0: एज ए सिक्योरिटी मनी वो भी लौट
1: लौट
0: जाएगा,
1: जाएगा।
0: मतलब आप 3.5 लाख रुपये आपको मिलेगा। हाँ
1: वाह,
0: तो
1: बहुत ही
0: ये
1: सुंदर योजना
0: जस्ट,
1: है
0: हाँ,
1: ये,
0: और
1: बिल्कुल।
0: अगर मान लीजिए अच्छी प्रजातियाँ आपने लगाया, मान लीजिए फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज लगाए हैं, शीघ्र बढ़ने वाली जो कि 7-8 साल में तैयार हो जाता है, कदम का पेड़ है,
1: जी
0: यूकलिप्टस का पेड़ है, पोपलर का पेड़ है, ये बहुत जल्दी जल्दी ये पेड़ जाते हैं, तो फिर आप उसको सेल आउट करेंगे तो एक पेड़ का आप जो 1,000 रुपये 800 रुपये किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में उतना तो मिलना ही मिलना है।
1: वाह,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर। तो सर मान लीजिए कि हमारे किसान भाई अगर बड़े बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं, तो आपके विभाग के तरफ से बड़े पेड़ लगाने के लिए क्या सुविधाएं हैं?
0: हाँ बड़े पेड़
1: जी
0: उनको
1: हाँ
0: हम थर्ड ईयर तीसरे साल का पौधा देंगे, 3 साल का पुराना पौधा देंगे,
1: ओके
0: यानी जैसे वो 3 साल का बढ़िया पौधा होगा तकरीबन 5-6 फीट का पौधा हो ही जाता है, 4 फीट भी, कुछ कुछ स्पीसीज हैं जिनकी ग्रोथ रेट उतनी बेहतर नहीं होती, थोड़ी स्लो ग्रोथ है, लेकिन अदरवाइज जैसे आप मान के चले कदम वगैरह है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, वो उसकी हाइट पकड़ लेती है, यूकलिप्टस है उसकी बढ़िया होती है, महोगनी थोड़ा स्लो ग्रोइंग है
1: जी
0: स्लाइटली, उसकी हाइट नहीं पकड़, लेकिन उसका टिम्बर वैल्यू कास्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सागवान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सागवान शीशम ये दो लकड़ियाँ अभी मार्केट में अभी जाएं तो इसके रेट में
1: सबसे
0: लकड़ियाँ
1: कॉस्टली
0: बहुत
1: है।
0: कॉस्टली लकड़ी है ये
1: जी
0: दोनों
1: जी
0: लकड़ियाँ। हाँ इसके अलावा एक विदेशी प्रजाति मलेशियन साल का आता है, एम सोल शॉर्ट में कहते हैं,
1: जी
0: साल की ही वेराइटी है वो, जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मलेशिया में होता है, वहाँ से बीज लाए गए हैं और उसको ट्राई की गई है, यहाँ पे उत्तर बिहार में खास करके वो जो कोसी वाला बेल्ट है आपका पूर्णिया का जो
1: पूर्णिया
0: इलाका
1: साइड
0: है
1: जी
0: उस इलाके में वो बहुत पॉपुलर है, वहाँ के किसान लोग उसको बहुत लगाते हैं, उसका लकड़ी का जो प्रकार है वो क्लीन बोल अच्छा सीधा निकलता है, कहीं मोड़ नहीं आते,
1: ओके
0: उसकी चिप
1: जी, कहीं मतलब पैचेज
0: कहीं
1: नहीं
0: पैचेज नहीं
1: है।
0: आते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: कहीं
1: हाँ
0: जड़मर, तो वो चीज़ें
1: जी
0: हैं, इन चीज़ों को लगा करके किसान बहुत लाभान्वित हो सकते हैं ये।
1: और एक बात और कि मान लीजिए कि कई बार होता है कि आर्थिक रूप से लोग जो कमजोर हैं, तो कई जगह मतलब प्रोत्साहन करने के लिए मान लीजिए कि पेड़ लगाएं, या इस पे हम विशेष इसलिए जोर देना चाहेंगे कि निराशाजनक स्थिति में कई लोग आ जाते हैं कि क्या करें ना करें अपने भरण पोषण के लिए। तो मान लीजिए कि वृक्षारोपण के लिए आपका जो विभाग है, तो प्रोत्साहन के लिए कुछ राशियां भी क्या
0: जरूर
1: उपलब्ध
0: जरूर,
1: कराते
0: ये
1: हैं क्या?
0: मैं जरूर, ये आप जो प्रोत्साहन, मैं तो वही आपको फिर
1: जी
0: से रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़ को, शुरू में उन्हें लगता होगा कि मैं अभी जो पौधा ले रहा हूँ वो 10 रुपया मेरे से डिपॉजिट करवाया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन अल्टीमेटली तो हम तो आपको उसके एवज में 70 रुपया दे रहे हैं, वो आपके 60, वो 10 रुपया आपका लौटा दे रहे हैं हम, और उसके
1: मल्टीप्लाई हो
0: हाँ
1: गया
0: प्लस
1: वो।
0: हाँ वो और
1: जी
0: एंड 60 रुपये, खाली आपको ये करनी है चौकीदारी करनी है, निगरानी करनी है, बीच में आपको केयर लेना है वो बीमार सिक नहीं हो जाए, वो अगर कमज़ोर नहीं हो जाए उसका ग्रोथ बढ़िया हो, क्योंकि अगर मान ली वो आप ध्यान नहीं देंगे बीमार हो गया ख़त्म हो गया और फिर रिप्लेसमेंट करके कहीं दूसरे जगह से पौधा ले आकर तो उसकी हाइट बढ़िया नहीं होगी,
1: जी
0: टाइम खामखा बर्बाद होगा, तो आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, उस श्रम का उस सजगता का आपको एवज में यह है।

0: कि आपको राशि है, पैसा मिल रहा है आपको,
1: जी
0: सब यू आर गेटिंग 60 रुपीज, हाँ, और
1: जी
0: आपका जो अपना जो है वो पैसा मिला,
1: जो एफर्ट्स है,
0: एफर्ट
1: आपकी
0: है
1: जो
0: वो, हाँ
1: मेहनत है वो
0: ये,
1: रंग लाती
0: हाँ
1: है जब भी
0: दूसरी, और ये आप पैसा ही, अभी ये तो कमर्शियल गेन की ही बात बता रहा हूँ। ऐसी ज़मीन है जिनके पास, वो किसान जिनके पास की अच्छी ज़मीन नहीं है, बहुत रेतीली ज़मीन है, ऐसा है कि बाढ़ बहुत आ जा रहा है
1: जी
0: या इस तरह का डूब जा रहा है। नॉर्थ बिहार में इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस है, साउथ बिहार में भी अब आने लगा है। पिछले साल हमें कुछ जहानाबाद के नज़दीक में कुछ लोग, किसान लोग
1: जी
0: थे वो, लेकिन मैं पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद, लेकिन बाढ़ आया था, तो वो अब पानी का जो, पानी भी सस्टेन कर सके, 2-4 महीने तक पानी में बर्दाश्त कर सके, कि आपने प्लांटेशन लगाया और आपका प्लांटेशन फेल कर गया, तो सरकार तो ये नहीं देखने, आप देखने जा रही है कि आपका किस वजह से हुआ, क्या हुआ,
1: जी
0: तो उसके तो अब तो वो ऐसा प्रजाति का चयन करना, फिर कुछ उसमें मेड़ वगैरह लगाना, हमेशा किसी में अगर एक दो पेड़ में अगर बीमारी लगा तो बीमार आप हटा लें वहाँ पे उस पेड़ को,
1: जी जी
0: ताकि वो स्प्रेड ना करे। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक कमर्शियल भी वायबिलिटी, कमर्शियल लाभ जो कह सकते हैं,
1: जी
0: व्यावसायिक जो इसमें वाणिज्यिक लाभ जो भी है, वाणिज्यिक लाभ भी है, बहुत बढ़िया लाभ है, और खास करके जो बड़े काश्तकार हैं वो तो बहुत सागवान का प्लांटेशन वो करते ही करते हैं, हाँ, 100 एकड़ में, 2-4 एकड़ में वो करते ही करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेस्ट गेन, इससे बेहतर गेन का और कोई उपाय ही नहीं है
1: नहीं है
0: आपका।
1: बिल्कुल। अब सर कहा भी जाता है कि देखिए जिस काम में लगन लगता है ना, तो
0: हाँ
1: निश्चित तौर पे ये देखा गया है कि उसमें सफलता मिलती ही
0: जरूर
1: मिलती
0: जरूर,
1: है
0: ये
1: ना।
0: बात है, बेशक,
1: और एक जहाँ तक मेरी समझ है, लोगों का कहना है कि जिस काम में आप जिस काम को करने जा रहे हो तो उसमें अगर प्रशिक्षण लिया जाए
0: हाँ
1: तो निश्चित तौर पे वो सफलता प्राप्त होती है। तो
0: जरूर,
1: आपके विभाग के द्वारा क्या पौध लगाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है
0: हाँ
1: क्या कि
0: हाँ
1: जिसमें
0: हाँ जरूर
1: प्रशिक्षण वगैरह दिया
0: जरूर
1: जाता
0: जरूर,
1: है?
0: बहुत बढ़िया। ये क्या है कि खेती जो किसानी है वो कुछ सीजन्स का चीज़ है,
1: जी
0: मौसम का, एक सीजन 4 महीना 5 महीना 6 महीना का आप सीजन्स के हिसाब से है, साल भर में है, 2-3 फसल निकालते हैं, 2 फसल निकालते हैं, इस तरह का। ये भी एक तरह की खेती ही है,
1: जी
0: कृषि वानिकी भी एक खेती है, ये लॉन्ग टर्म इसका है, 4 साल 5 साल कम से कम, आपका जब तक पेड़ स्टेबलाइज नहीं कर जाए, एक एक दफ़ा पेड़ आपका स्टेबलाइज कर गया 3 साल में 4 साल में, उसके बाद फिर आपको सोचना नहीं है, उसका ऊपर वाला उसका रखवाला है, हाँ, उसका ऊपर वाला उसका ग्रोथ करवाएगा, वो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। तो इसमें यह है कि फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप बीज आपने खरीद लिया, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है कि चलिए भाई हम कोई नहीं है, खुद का हम अपना बीज कलेक्ट किया, हमने किया तो बीज खरीद लिया, तो ना आपको बीज छांटना है, अब करो बीज छांटो, बीज की पहचान होनी चाहिए जिस क्वालिटी की है, बीज का ट्रीटमेंट जानना चाहिए, बीज का ट्रीटमेंट डालकर सोइंग का टाइम है उसका, उसको किस किस्म से आप सोइंग किया, उसके बाद फिर आपने जो उसमें से स्प्राउट्स निकले, अंकुरण जो पहला निकला, उसके बाद फिर उस अंकुरण से आप उसको ट्रांसफर करते हैं पॉलीट्यूब में, पॉलीट्यूब में थोड़ा बड़ा हो गया, 3 साल जैसा लगभग हो गया, ताकि कोई गाय बैल बकरी उसके नहीं चढ़ पाए, हाँ, वो सीधे आप जब आपने चूंकि लगाया, खेत में लगाया, आप कितनी देर तक पहरेदारी करेंगे, सुबह
1: सही,
0: में कोई 4 बजे आकर के खेत चला
1: हाँ
0: देगा,
1: बिल्कुल
0: तो अब चार
1: बिल्कुल,
0: पांच फीट का पेड़ पौधा रहेगा तो चढ़ने की गुंजाइश कम
1: नहीं
0: रहेगी, ग्रेजिंग
1: रहेगी,
0: की गुंजाइश
1: बिल्कुल
0: कम
1: बिल्कुल
0: रहेगी,
1: बिल्कुल।
0: उस ख्याल से आप देखेंगे तो फिर आपका ये उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। ये सारी ट्रेनिंग हमारे हर वन प्रमंडल में, राज्य में 28 जो वन प्रमंडल हैं, ये सारे वन प्रमंडलों में हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, जो कृषि वानिकी में जो जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके अलावा वन संसाधन केंद्र हैं हर जगह बने हुए, जहाँ पर उनको नर्सरी से जुड़ा हुआ सारी चीज़ प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उन्हें बताया जाता है, और रिपीटेड रेगुलर बेसिस पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
1: बहुत अच्छी बात है ये। देखिए सर, इस व्यवसाय से तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन क्या है कि बहुत शॉर्टकट में मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि पर्यावरण के सुधार के लिए भी आपके विभाग की तरफ से कुछ क्या सुविधाएं दी जा रही है और क्या किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है?
0: देखिए मेरा तो विभाग ही ये है
1: हाँ
0: कि मैं किसान के सारी चीज़ के लिए कर रहे
1: जी
0: हैं, पर्यावरण का सुधार के लिए कर रहे हैं। अब ये है कि किसानों को हमने जोड़ा है कि उनकी भी भागीदारी, उनकी भी हिस्सेदारी हो,
1: हो
0: तो बेशक हवा पानी

0: मिट्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं, हवा पानी मिट्टी हम लोगों का बेहतर रहे उसमें सब का ठीक है। एक महकमा है, एक विभाग है,
1: जी
0: शिक्षा विभाग में मानसिक रूप से तैयार कर रहा है बच्चों को कि नहीं तो इन चीज़ों के पर्यावरण के लिए सजग रहें। किसान जो ही समझते हैं उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही समझ रहे हैं। वो जो मौसम की मार
1: जी
0: और अब मिट्टी का बदलाव सारी चीज़ से वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए किसान को कहने की बहुत ज़्यादा देने की हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है।
1: जी
0: मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा सभी किसान भाइयों के लिए कि वो कृषि वानिकी योजना में अधिक से अधिक जुड़ें
1: जी
0: और इससे लाभ हो, अपने इर्द गिर्द में वातावरण सबों को जो है
1: जी
0: उसको सुधारें, बेहतर से बेहतर करें और ये पृथ्वी, ये राज्य, ये समाज उनके लिए बहुत ही सदा के लिए हमेशा ऋणी रहेगा
1: जी
0: ये।
1: सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत, इतनी अच्छी जानकारी दिया आपने। वृक्षारोपण हेतु सरकारी योजना और प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें, इस विषय पे तो आपका बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद। मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा।
1: वाह, बहुत नीमन। अभी हमने सब सुन डालियल भेंट वार्ता, वृक्षारोपण हेतु सरकारी योजना एवं प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें। भेंट वार्ता कर रहे थे दिनेश कुमार दास और हिनका से बातचीत कर रहे थे संगीता सिन्हा। अब सुनथिन बरसाती गीत कविता चौधरी से।

वाह, बहुत निमन भाई। बरसात के मौसम में बरसाती गीत बहुते भाई बढ़िया लगे है। तो अभी हमनी सब सुन रही है बरसाती गीत कविता चौधरी से। तो हिनका बहुते धन्यवाद। और एक साथ साथ देखथिन हमनी के भाई समय भी ओरिया रहल है। तो अपन दिव्या के विदा देथिन, प्रणाम।

0: जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, जैसा हम लोग पहले कॉलेज वगैरह से अपना ग्रेजुएशन,
1: अभी आप चौपाल के अंतर्गत महिला ग्रामीण महिला कार्यक्रम और खेती गृहस्थी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रिपल टी से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISPT से मलाही पकड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी के विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी थाने और सभी अनुमंडलों में निगरानी OP खोले जाएंगे। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में OP बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन के लिए TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
2: इसमें हम लोगों ने TTT की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर ये अभियान चलाने से हम बिहार के

0: लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण भी किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार अब ISBT से मलाही पकड़ी तक हो गया है। पूरे रूट की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह दूरी 15 मिनट में तय होगी। ISBT से मलाही पकड़ी तक का किराया ₹30 निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मेट्रो में यात्रा भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान आज तिरुपति में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूती मिलने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर सुशासन, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सस्ती कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है। चौथे कृषि रोडमैप के तहत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 50% या 17,50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 50 कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। यह योजना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी वाले 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में लागू होगी। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कोल्ड स्टोरेज संचालक बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में से अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14

0: प्रतिशत है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले कई श्रमिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड

0: कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 3 जुलाई, राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक सौराठ सभा की आज से शुरुआत हुई। मिथिला की इस प्राचीन वैवाहिक परंपरा में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर और वधु के संबंध तय करने के लिए पहुंचते हैं। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्था के अनुरूप वंशावली और गोत्र का मिलान कर विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के पौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत भताई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दो छात्राओं की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाराही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी आईटीआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 60,000 रूपये लूट लिए। अररिया के जिलाधिकारी विनोद धुहन के निर्देश पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 प्रखंडों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 3,000 लीटर पेट्रोल के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई है। पेट्रोल के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, TTT से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISBT से मलाही पखड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
1: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
2: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
1: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: दरभंगा जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से मौसम में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने के बाद भी लगभग एक सप्ताह तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कृषि कार्यों पर इसका असर पड़ा है। खासकर धान की रोपनी का कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है, जिससे किसानों को समय पर बुआई को लेकर चिंता बनी हुई है। इधर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर केवल धान की खेती पर ही नहीं बल्कि बागवानी और फल उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले की सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम हयाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में हुआ। इसका शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन और पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में पंचायतों के समग्र विकास, जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सशक्त विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि

0: में पथ निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन और पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में पंचायतों के समग्र विकास, जन भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सशक्त विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्यों को जमीन पर उतारना है। उन्होंने बताया कि पंचायत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें 9 प्रमुख विषयों के तहत लागू किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल विकास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं शामिल है। केवटी प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता के मामले में दरभंगा प्रमंडल के लोक प्राधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त ने बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी है। इससे पहले लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था और पद अच्युत की अनुशंसा करने को कहा था। इधर पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाड़ किया है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने असली अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 12-12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। मामले में लहरियासराय और नगर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने 48 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उसकी आवाजाही को आसान करना है। वितरण के बाद सभी लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही UDID कार्ड के महत्व और उसके मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। जिले की रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और उपलब्ध संसाधनों तथा आधारभूत संरचना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मिल के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बग्गा और त्रिभुवन गांव में मुहर्रम जुलूस के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बग्गा गांव के 14, त्रिभुवन के 12 और खिरमा पथरा गांव के 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 50-60 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चक्रपाणि मिश्रा से भजन।

0: अभी आप चक्रपाणि मिश्रा से भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं संत कबीर एवं नागार्जुन जयंती समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन अंबिका कुमारी, वाचन संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
1: प्रस्तुत है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा द्वारा आयोजित संत कबीर एवं नागार्जुन जयंती समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को पटना स्थित फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी भवन में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा द्वारा संत कबीर एवं नागार्जुन का जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारम्भ राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान से हुआ। तदुपरांत मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया, साथ ही संत कबीर एवं बाबा नागार्जुन की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद कुंवर, उपनिदेशक राजभाषा, ने दोनों साहित्यकारों के जीवनी पर प्रकाश डाला।
2: कबीर दास, अब तक प्राप्त जीवन वृत्त के अनुसार यह बताया जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से काशी में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 को हुआ था। विधवा माँ ने लोक लाज से अपने अवैध पुत्र को लहर तारा के निकट भेज दिया। यहाँ से अलिया नीरू नामक दुलाहा बालक कबीर को उठाकर अपने घर ले गए और उनका लालन पालन किया। कबीर ने आगे चलकर स्वामी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया और राम नाम को अपना गुरु मंत्र माना। कबीर का राम दासरथी राम नहीं है, बल्कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। कबीर हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। बाबा नागार्जुन, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। पैतृक निवास ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार प्रांत है। संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा अपने गांव तरौनी और गनौली जिला मधुबनी एवं पंचगछिया जिला सहरसा से प्राप्त की। काशी से शास्त्री, कलकत्ता से विद्यालंकार एवं श्रीलंका से बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया।
1: आगे अपर सचिव सह निदेशक राजभाषा विभाग श्री SM परवेज आलम ने अपने स्वागत भाषण में कहा,
3: इस समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की दो महान विभूतियों संत कबीर और नागार्जुन की जयंती पर उन्हें सामूहिक रूप से श्रद्धा सुपन अर्पित कर रहे हैं। कबीर दास हिंदी साहित्य के महान संत कवि और समाज सुधारक थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। संत कबीर का व्यक्तित्व सरल, निर्भीक और क्रांतिकारी था। नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जन कवि, उपन्यासकार और चिंतक थे। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली और हिंदी भाषा पर उनका समान अधिकार था। अपनी रचनाओं में उन्होंने आम आदमी के जीवन संघर्ष और सामाजिक विषमताओं को प्राथमिकता दी है। उनका जीवन सरल और संघर्षपूर्ण था। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण उन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन ने कविता, उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: इस अवसर पर छात्राओं

0: संत कबीर और नागार्जुन के साहित्य तथा सामाजिक योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की छात्रा तृप्ति कुमारी ने बाबा नागार्जुन को याद किया।
1: दो शिखर पुरुषों की जयंती है। सर्वप्रथम अपने प्रिय नागार्जुन जी की कविता की कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, इतने जो फूल खिले हैं, मेरी भी आभा है इसमें। आज मैं हिंदी साहित्य के ऐसे अमर साहित्यकार के बारे में अपनी विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिन्हें जन कवि के नाम से जाना जाता है, और वे हैं नागार्जुन। नागार्जुन हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अपनी लेखनी को केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज की आवाज बना दिया।
0: इग्नू पटना की छात्रा कुमकुम ने संत कबीर के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए।
2: कबीर का जन्म एक ऐसे कालखंड में हुआ था जब हमारा समाज पाखंड, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता के अंधेरे में डूबा हुआ था। एक जुलाहे परिवार में पले बड़े कबीर ने न तो किसी विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी डिग्री ली थी और न ही कोई बड़े वेद ग्रंथ आदि का अध्ययन किया था। उन्होंने खुद कहा था कि मसी कागज छो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी उन्होंने कभी कागज और कलम को छुआ तक नहीं था। लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान का वह समंदर था जो बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं होता।
0: ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के IIMT प्रबंधन महाविद्यालय से पधारे डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, ने कबीर पर अपने वक्तव्य दिए।
3: तो कबीर की रचनाओं को हम देखें तो सबसे पहले कबीर की रचनाओं का हमें जो पता चलता है वो 19वीं शताब्दी में जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम ऑफ कबीर नाम से रचना का इन्होंने जब अनुवाद किया, उसके बाद कबीर जो है विश्व के पटल पे सर्वाधिक रूप से दिखाई देने लगे। इसके पहले तक कबीर को लोग केवल लोक में ही समझते थे, जानते थे, उन्हें गाते थे, बजाते थे, लेकिन उस प्रकार से अकादमिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति नहीं बन पाई थी। उस समय की हम बात करते हैं जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 कविताओं को लेकर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब हमें मालूम चला कि अच्छा, जब फॉरेन से लोग कहना शुरू किया कि नहीं, हमारे पास एक ऐसा रचनाकार है जो इस प्रकार की चीजों को लिख रहा है, तो हमने भी उसे प्रसन्न करना शुरू किया कि हाँ, ये एक ऐसा रचनाकार है जो हमारे बीच में लिख रहा है, हमारे लिए लिख रहा है, और लगातार अपने आवाज को प्रतिरोध के साथ मुखरित किया जा रहा है। तो ये सामने हमारे तब आता है। रचना की बात करें तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में लगातार कई कविता किताबों का संग्रह शुरू होता है, जिसमें श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जैसे लोग आते हैं और उनकी रचनाओं का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। और हजारे प्रसाद द्विवेदी 1940 में जब वो कबीर लिखते हैं तो कबीर की स्थापना थोड़ा मुखर रूप से हिंदी साहित्य के जगत में ठीक से आती है।
0: डॉक्टर नेहा सिन्हा, सहायक प्राध्यापक सह हिंदी विभागाध्यक्ष पटना कॉलेज, ने नागार्जुन की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रकट किए।
1: नागार्जुन जन कवि हैं, तो उनकी पंक्तियां हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। वो जन कवि यूं ही नहीं है, वो कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन यात्री हैं और घूमते रहते हैं, पक्कड़ हैं, तो उनका कोई प्रॉपर बहुत निश्चित निवास स्थान नहीं है, वो सब जगह घूमते हैं और घूम घूम कर ग्रहण करते हैं, घूम घूम कर सृजन करते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी बात है और हम सबको उस यात्रा में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो यह जन कवि जनता के जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। ऐसा नहीं है कि खेत में मजदूर किसान पसीना बहा रहे हैं और नागार्जुन एसी में बैठकर रचना कर रहे हैं, यह नहीं है। नागार्जुन का चरित्र बहुत यथार्थ में है और स्पष्ट है। बाबा नागार्जुन के नाम से जब हम स्मरण करते हैं तो मुझे दो चीजें एक साथ याद आती हैं। दो ध्रुवों पर वो काम कर रहे होते हैं। पहला ध्रुव है तीखी

0: राजनीतिक प्रक्रिया प्रतिक्रिया। कोई भी घटना होती है विश्व में तत्क्षण प्रतिक्रिया करते हैं नागार्जुन, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। बेहिचक निडर होकर कहने वाला व्यक्ति आज बहुत कम है।
1: इसके उपरांत हिंदी सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी ने कबीर के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए।
2: कबीर धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं और फटकार लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर धार्मिक नहीं है। कबीर सबसे बड़े धार्मिक हैं और वो जहां प्रहार कर रहे हैं वो धर्म में और समाज में जो फैली हुई कुरीतियां है वो सब कुछ है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे तो उनके सबसे पसंदीदा कवि तुलसी होते हैं। उन्होंने उन्हें भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। उसके बाद उनकी दृष्टि सूर पर जाती है और वह कहते हैं कि हिंदी कविता के तुलसी और सूर, सूर्य और चंद्र हैं। फिर उनकी नजर जायसी पर भी जाती है और वो उनकी गिनती प्रसिद्ध सिद्ध फकीरों में करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर कबीर पर जाती है वो मानते हैं कि कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर का जो चोट है, कबीर का जो व्यंग है, वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। इसलिए उनकी रचनाएं अशिक्षित वर्गों तक तो पहुंची, शिक्षित वर्गों तक नहीं पहुंच सकी। कबीर की भाषा के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं।
1: कार्यक्रम में बोकारो झारखंड से पधारे साहित्यकार डॉक्टर राशि सिन्हा ने कबीर के विचारों को प्रस्तुत किया।
3: सूरदास ने जिस काल को वात्सल्य की दुआ दी थी, तुलसी ने बख्शा उसे सगुण निर्गुण का समन्वयन, और चमका दिया उसे कबीर ने अपने निर्गुण आप से, अपने निर्गुण आप से, अपने निर्गुण आप से। ये निर्गुण आप कबीर ने अपने लिए नहीं चमकाया, उन्होंने पीढ़ियों को समझा, पीढ़ियों को जाना और आखन देखी लिखते लिखते, आखन देखी महसूस करते करते, बोलते बोलते, गाते गाते हमारे भीतर एक आखन देखी का अनुभव साचा, अनुभव साचा सौंपते चले गए।
1: कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामलखन सिंह यादव कॉलेज गया जी के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हसन सिंह ने अपने उद्बोधन में पाटलिपुत्र को ज्ञान की भूमि कहा।
4: मित्रों, या पाटलिपुत्र की धरती ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति में अग्रगण्य रही है। भले हम इसे प्रचार प्रसार नहीं कर पाए काशी बनारस की तरह, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारी पाटलिपुत्र की धरती है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति के क्षेत्र में अग्रगण्य है, इसलिए सर्वप्रथम मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ।
1: आगे उन्होंने कबीर और नागार्जुन की दृष्टिकोण में समानता पर प्रकाश डाला।
4: साहित्यकार होता है ना, और धारा को निश्चित रूप से बदल देता है, वो उस लीक पर नहीं चलता है, वो धारा को बदल देता है। और तभी तो हमारे मनुष्यों ने कहा कि लीक लीक तीनों चले, कायर पूत कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले। तब मुझे तो कबीर ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, रसरी में ही दोष है, पानी सब में एक। ये कबीर रसरी था। और जब कबीर की इस बातों को हम ध्यान करते हैं, देखते हैं, सेम उसी तरह की बात हम नागार्जुन में भी पाते हैं। नागार्जुन की भी विचारधारा यही था, पानी सब में एक। कितनी बड़ी बात कह दी। हम आज जातीयता की बात करते हैं, अगलेपन की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। कबीर ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, रसरी में ही दोष है, पानी सब में एक। चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम उन्होंने एक बात कही, मानवता की बात कही।
1: कार्यक्रम के दूसरे भाग में कविता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के कई जिलों से युवा कवि कवित्री भाग लिए। इस समारोह में भारी संख्या में साहित्य प्रेमी, कवि, लेखक, छात्र छात्राएं और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसी के साथ संत कबीर एवं नागार्जुन जयंती समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। संकलन एवं प्रस्तुति सहयोग अंबिका कुमारी की, वाचन एवं प्रस्तुति

0: हरेंद्र आजाद की। तो
1: अभी आप सुन रहे थे संत कबीर एवं नागार्जुन जयंती समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देरों में।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनते हैं आईपीएस विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी, बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: जी, हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं, हम बता दें विकास वैभव जी 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर, सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
2: देखिए, मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूँ। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और बीआईटी सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं दी, तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
1: जी।
2: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात आईआईटी कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और आईआईटी से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला इंडियन पुलिस सर्विस। तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ
1: जी। बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की आईआईटी कानपुर से, उसके बाद फिर यूपीएससी की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
2: देखिए, प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7th में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान
1: जी,
2: जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई, तब 9th में था, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे तो

0: उसके बाद आईआईटी की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और आईआईटी के पेपर 1997 में अगर आप याद करेंगे लीक हुए थे, उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट्स के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, आईआईटी कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय बोरौनी रिफाइनरी टाउनशिप फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम जिसको कह सकते हैं एक ऐसी घटना घटी, घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन अब वही कैंपस में रही है। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है, जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने आईआईटी में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी और उसी का नतीजा है कि आईपीएस मिला और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद एएसपी, सीटीएसपी, सीनियर एसपी, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में एएसपी के रूप में पहली पोस्टिंग हुई और 2005 के अंत में एएसपी दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी। वहीं से सिटी एसपी पटना बने, फिर बघा एसपी, रोहतास एसपी के रूप में पोस्टिंग हुई, जहां अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है एनआईए जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। एनआईए बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे एनआईए के लिए रिलीज किया गया और एनआईए के शुरुआती दिनों में एनआईए के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। एनआईए जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहां से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर एसपी के रूप में, जहां पहले एएसपी भी रहा था, सिटी एसपी भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर एसपी के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे, तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर डीआईजी बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष डीआईजी के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है, जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में ब्लास्ट हुए थे। उस समय एनआईए में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझें कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्ले किया हुआ था। और जब पटना ब्लास्ट हुआ तो लगभग वो संदेह पूरा यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी। कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है उसके?
0: तो मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि
1: जी
0: बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा। तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर, तो पुलिस के जीवन में खतरा जो है वो तो उसका अंग है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। और कई अवसर आते हैं, मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही

0: भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बघा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है, लेकिन जो दो अनुभव बघा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर ब्लैक पैंथर भी हुए, और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां
1: जी
0: जब
1: जी
0: सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए, जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा, और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया, और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग के रूप में हुआ करती थी, शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 6 में डीएसपी शहीद हुए थे बिक्रमगंज में, अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे, लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गांव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला, और जब अपनी विरासत से अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम है, और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सभी गांवों में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया, और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपनी विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है, बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहां स्थापित हुआ, केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूं क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूं कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था, जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है, और तब वह संभावना जगती है जहां हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी, जातियां प्राचीन बिहार में थी, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंद वंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब हम उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आपकी बातचीत से हमें यह पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझे वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिए, जैसे वेदों में जो हम लोग पढ़ेंगे, सारी ऋचाओं को देखेंगे, तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा होती जब है, तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाहे नासदीय सूक्त हो, उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की, क्या उन्हें भी पता है कि उनकी रचना किसने की? वेदांत में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस रूप में मिलता है जब हम चार महावाक्यों को देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है और अपनी पूर्णता लिए हुए। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसका अंश है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है जिसमें हर व्यक्ति उस सृष्टि के मूल तत्व से एकाकार समझने लगता है और इससे पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, और इसमें जिन्हें हम कहीं दूर खोज रहे थे उनको अपने अंदर स्थित पाते हुए जीवन को देखते हैं। तो इससे एक तो एक व्यक्तिगत दृष्टि बदलती है, साथ में समाज में यदि इस प्रकार का भाव जगे तो समाज में भी जो भेदभाव हमें आपस में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो मिट जाते हैं। तो बिहार में वेदांत की दृष्टि के कारण बहुत सारे अपवाद हम प्रस्तुत कर सके। आज भी मुझे लगता है कि यदि जो भेदभाव समाज में हमें भिन्नता की ओर ले जाते हैं, वेदांत की दृष्टि के साथ यदि हम चलेंगे तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते
1: की
0: हैं।
1: स्थिति उत्पन्न, कोई भेद नहीं रहेगा,
0: कोई भेद नहीं रहेगा।
1: जी बिल्कुल, ये वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अद्वैत अभेद। इसके अलावा वेदांत के पहले भी जो चार पांच आस्तिक दर्शन थे, क्या वो विलुप्त प्राय हो गए हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है अभी?
0: लेकिन सबसे महत्व

0: महत्वपूर्ण रूप में अद्वैत ही है जो जिसने भारतीय संस्कृति को एक वैचारिक दृष्टि दी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाकी ज्ञान परंपराएं रही हैं तो विलुप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, अभी भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। अनेक ऐसे चिंतक आज भी आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ट्रेडिशन है उसमें अद्वैत मूल में है, लेकिन उसका एक अलग रूप हम देखने को पाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति को जो भी समझना चाहेंगे तो जो हमारे छह दर्शन जिस प्रकार से बात होती है तो उसको यदि पढ़ेंगे तो हम अपना एनरिचमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में विश्व को भी कुछ नया देने की दृष्टि ला पाते हैं। जो आपने बात पहले कही, एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था जिसमें कि अलग अलग प्रकार से वेदों की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन होता गया और वेदांत एक समय आया जब लगा इससे कुछ ज्यादा नहीं सोचा जा सकता, ये उत्कर्ष प्राप्त हमने कर लिया। तो मुझे गर्व इस बात की होती है कि उस भूमि जहां वेदांत का दर्शन सिद्ध हुआ बिहार की भूमि रही, और इसी बात को मैं युवाओं को बार बार बताना चाहता हूं कि जिस भूमि ने कभी वेदांत का दर्शन किया हो, विश्वविद्यालय देखे हो, उसमें आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है, बशर्ते हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने का प्रयास बिहार में करें। आधुनिकता की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ परंपराओं से जुड़े रहने की, अपनी परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से हवा आ सके, लेकिन सतर्क ये रहना चाहिए, ध्यान ये रखना चाहिए कि हवा इतनी तीव्रता के साथ ना आए कि हमें उड़ा के ले जाए। तो मतलब है कि अपने अस्तित्व को समझते हुए बाहरी दर्शन को भी समझना होगा, और जो भी नई चीजें चल रही जैसे आज AI का युग है, डेटा एनालिटिक्स का युग है, तो हमें उसमें भी उत्कर्ष कैसे प्राप्त करें, उनका उपयोग कैसे करें, इस पर भी चिंतन करना होगा। लेकिन साथ साथ जो मूल तत्व हमारे संस्कृति के हैं उसको नहीं समझेंगे तो हम जो गहराई एक व्यक्ति में होनी चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
1: जी, अगर हम इसी क्रम में वैदिक गणित की बात करें तो वेदों में वो गणित और कई सिद्धांत ऐसे दिए गए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं और उनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक अच्छा कर सकते हैं। आगे हम वेदांत की ही बात करें, आपने महावाक्यों की बात कही है तो थोड़ा विस्तार से, थोड़ी सरलता से हमारे श्रोता समझना चाहेंगे कि वो महावाक्य कौन कौन से हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे।
0: देखिए, इसमें एक कहानी जो आती है उपनिषदों में, वो श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक जो महर्षि थे उनकी आती है। जब उद्दालक श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है, तो श्वेत केतु नहीं दे पाते हैं। उनको समझाने के लिए बताते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन को देखने पर जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो कहता है मिट्टी के बर्तन है, जिस प्रकार सोने के आभूषण को देखने पर व्यक्ति देखते हैं कहता है सोने के आभूषण है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है एक तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं, सोने के आभूषण सोने से बने हैं, उसी प्रकार सब कुछ जो भी सृष्टि में है वो एक परम तत्व से बना है और परम तत्व से ही तुम भी बने हो, तो तुम वही हो तत्वमसि। उसी प्रकार से उस भाव को हम ये देखें तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी वही तत्व हूँ, उसी तत्व से बना हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो मतलब जो मूल सृष्टि का तत्व है उससे हम अलग नहीं है, हम भी उसी से बने हैं। और जिस प्रकार जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को देखने पर कहता है ये मिट्टी का बर्तन है क्योंकि मिट्टी को जानता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो मूल तत्व को जानता है, वो किसी को भी देखेगा तो कहेगा ये भी तो उसी से बना है, उसमें कोई विभेद नहीं रह जाता। तो यही मूल रूप से वेदांत की दृष्टि है जिससे हमारी पूरी संस्कृति अत्यंत प्रभावित हुई और एक वैचारिक उत्कर्ष की स्थिति बिहार ने पूरे देश को दी।
1: जी, यानी कि वेदांत में हम देखें तो ज्ञान की बातें, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या वेदांत में भक्ति का भी कुछ स्कोप है?
0: देखिए, भक्ति जैसे वेदांत में गीता को भी उपनिषद का भाग माना गया है ना, तो गीतोपनिषद कहा जाता है, तो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म ज्ञान और भक्ति तीन मार्ग हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उसमें भक्ति वेदांत उस रूप में हम जानते हैं। उसमें बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उसको काफी और अगले स्तर तक ले गए, आज इस्कॉन मूवमेंट भक्ति वेदांत पर ही आधारित है।
1: जी, तो वेदांत में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का सिद्धांत समाहित है। वेदांत में आत्मा और मोक्ष की क्या अवधारणा है?
0: देखिए, मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को समझ जाता है तो जान जाता है कि वो उसी पूर्णता को लिए हुए है और अंत में वही जाना है, तो ये जीवन की प्रासंगिकता है।
1: वेदांत की बात हम करेंगे आगे भी, आपने लेट्स इंस्पायर बिहार की चर्चा की, तो ये क्या मुहिम है, क्या ये अध्यात्म से जुड़ा है, क्या ये समाज सेवा से जुड़ा है, क्या शिक्षा से जुड़ा है?
0: देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है एक विकसित बिहार बनाने का 2047 तक, ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। बिहार की क्षमता असीम है जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन इस असीम क्षमता के साथ यदि हम आपस में संघर्ष करेंगे तो जहां हम पहुंचना है नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये प्रयास है लोगों को प्रेरित करने का और उनको कहने का कि अपने अपने हिस्से के बिहार में जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उसको हम करें। आज लगभग 360,000 स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति

0: इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें लगभग 30,000 महिलाएं हैं, लगभग 25,000 उद्यमी हैं। इन सभी व्यक्तियों को जोड़ने से हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रकल्पों का निर्माण का जिससे समाज को कुछ लाभ मिले। अभी बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिनमें 2500 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से वंचित है अध्ययन करते हैं। इनमें से 28 केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के नाम से संचालित। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की क्रांति बिहार में लाने के लिए अनेक स्टार्टअप्स को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, ताकि उनको हम समय समय पर सहयोग कर सकें, उनको मेंटोर कर सकें। लगभग 600 स्टार्टअप्स इस अभियान के साथ आज जुड़ी हैं। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 के अंत तक स्थापित हो सकें, जिनमें 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो। इससे एक ऐसा बीजारोपण होगा जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर आएंगे, और इसी की आवश्यकता बिहार को है। आज स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम की भी आवश्यकता है, इसीलिए बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं, जिनका मूल बिहार से है, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और बड़ी संख्या में आज बिहार के वैसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, बड़े महानगरों में रहते हैं, वो सक्षम है, इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उनमें से 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने जब प्रेरित किया, तो उनके द्वारा अपने गाँवों में कुछ न कुछ योगदान किया जा रहा है। किसी ने लाइब्रेरी खोली है, किसी ने स्कॉलरशिप स्थापित की है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया है, या अन्य किसी प्रकार से भी लोग योगदान कर रहे हैं। यही इस अभियान की दृष्टि है। तीव्रता के साथ बिहार बढ़े, लगभग 15% का ग्रोथ रेट आए, और पर कैपिटा इनकम जो बिहार का सबसे भारत में कम है, उसको हम अन्य राज्यों के स्तर तक ले जा सकें, अग्रणी ले जा सकें, यही इसकी दृष्टि है।
1: तो क्या जो युवा हैं बिहार के या जो बाहर जो प्रवासी हैं, क्या इससे जुड़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं?
0: देखिए, 5 वर्ष हुए हैं और 360,000 लोग सीधे रूप में जुड़े हैं, तो अपने आप में बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने कि हजारों लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, तो ये सुखद संकेत है। और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी।
1: लक्ष्य 2047 तक बिहार को
0: जी बिल्कुल पूर्ण विकसित बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया, जिसमें समाज के हर अंग की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको भी हम लोगों ने चिन्हित और रेखांकित करने का प्रयास किया है।
1: युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ?
0: बहुत आसान है, आप वेबसाइट जा सकते हैं, इसका अपना वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के माध्यमों से भी जा सकते हैं, उसमें लिंक पर आप रजिस्टर करें, वेबसाइट पे सभी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी दिए हैं, उनको भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, तो काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक ये मुहिम है, और हम उम्मीद करते हैं कि काफी युवा इस मुहिम से जुड़ेंगे। हम बात करेंगे आपके हॉबीज के बारे में। आप, जैसा कि हमने पढ़ा है आपके प्रोफाइल से, कि आप इंडियन हिस्ट्री फिलॉसफी के मर्मज्ञ हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, बहुत ज़्यादा आप यात्राएं करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, और क्या कुछ खास, क्या गीत संगीत में भी कुछ रुचि है आपकी?
0: देखिए, दर्शन में बहुत रुचि है, इतिहास में रुचि है, तो पढ़ता रहा हूँ बहुत। आज भी मेरे घर पे एक पुस्तकालय है जिसमें करीब 5,000 पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, तो जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ, भ्रमण करता हूँ, गीत संगीत भी यदा कदा सुनता हूँ। और यदि फेवरेट गाने की बात करें तो ए मालिक तेरे बंदे हम मुझे बहुत पसंद है, जो अक्सर सुनता हूँ, और जब भी कुछ कठिन घड़ी आती है तो उसको पुनः सुनता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं में बराबर पढ़ता रहता हूँ, याद करता हूँ। एक कविता है, आशा का दीपक वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। इस कविता की पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया स्टूडेंट लाइफ से ही, और आज भी जब कुछ कठिन चुनौती सामने आती है तो कविता की पंक्तियों का स्मरण करते हुए स्वयं को संकल्पित करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जीवन में हार्ड एस्पेक्ट्स भी हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स भी हैं, और सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते जाना है।
1: तो कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं, और आपकी पसंद का ये गीत ए मालिक तेरे बंदे हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: गीत संगीत के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम है इनसे मिलिए पॉडकास्ट बातों बातों में। गीत के पहले हमने विकास वैभव जी से उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, आईपीएस रहते हुए उनके जो उपलब्धियां हैं, उनके संघर्ष के बारे में और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें की, काफ़ी प्रेरणादायी बातें हुई। आप लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में भी बातें हुई। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। वापस हम वेदांत के ही सवाल से अंत करना चाहेंगे कि वेदांत में एक जगह कहा गया है कि औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता, इसी प्रकार साक्षात या अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म ब्रह्म कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो जाता। तो ये एक मौलिक प्रश्न यहाँ ये उठता है, तो किस प्रकार जो है ब्रह्म का अनुभव किया जाए या जिज्ञासु कैसे शुरुआत करें?
1: देखिए, इसमें एक मंत्र, एक श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिस हो जाते, यानी एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी सब कुछ भोगता है और दूसरा पक्षी केवल दिखता रहता है। तो अपने जीवन में यदि हम इसकी कल्पना करें तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं अंतर्मन हमें सचेत करता है जब कभी हम कुछ गलत करना चाहते हो, और यदि हमने कुछ गलत किया तो मन बार बार कहता है कि तुमने गलत किया है, तो जब सही करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो ये जो भाव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ये दूसरा पक्षी है जो कुछ ग्रहण नहीं करता केवल देखता है, साक्षी भाव है और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में है। जिस दिन हमने उस साक्षी भाव को, उस अंतर्मन को एक प्रबल स्थान दिया, उसके हिसाब से हम चलने लगे तो जीवन की संतुष्टि अपने आप और बढ़ जाएगी और जीवन हमारा सार्थक होगा। तो मूल रूप से इसी कल्पना को यदि हम, इस सामान्य सी जो बात हमारे अंतर्मन में कहता रहता है, अंतर्मन की हम सुनेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे।
0: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज सुधारने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, क्षमता हमारी असीम है, वेदांत की दृष्टि भी यही कहती है, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते। तीन प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो आपके मन में यदि इच्छा है, निष्ठा है और आप प्रयास करते हैं, सफलता के लिए आवश्यक ये दोनों ही नहीं है, सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम दृढ़ संकल्पित हों, दृढ़ निश्चय के साथ हम प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति में कैसे भी विघ्न बाधा आए हम रुके नहीं। मैं सभी से यही कहूँगा, पूरे परिश्रम के साथ सफल हो जाएं, और एक बार सफल हो जाते हैं, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल स्वयं तक नहीं, थोड़ा अंशदान समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी जरूर दें, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा।
0: बिल्कुल, खुद सफल हों और लोगों को भी सफलता की ओर प्रेरित करें, यह आदर्श आपका है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव। आज हमने इनसे कई आयाम, इनके जीवन के कई आयाम पर बातें की और काफ़ी प्रेरणादायक इन्होंने बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। तो इसी के साथ

0: हम आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। विकास वैभव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणादायक संदेश हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई

0: शक्ति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाई जी, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में

0: व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के

0: अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी।

0: श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो-पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize that this is

0: and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई ज़हानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाईशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस वाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ वाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान

0: पान की बाहमी शराकत दारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आज़ाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाईची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतेहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े मुमालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलावामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने

हम अंशक के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Nationwide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी, देखिए, कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए, क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल, जो जिसे आप कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच, जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के
1: जी,
2: उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है। और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई, जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
2: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया, पर डोक मोर को, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर

0: बेटर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एसेंशियल वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर लोग मोर ग्रो प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मॉनसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है, और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: तो हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा, जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, कि वो जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि वह काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं की हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पॉन्ड्स है उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं
1: जी।
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेकडैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ प्रिसिशन इरीगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरीगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरीगेशन है
1: जी,
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स है इसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरीगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में कई जगह एक चौथाई पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरीगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसा आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरीगेशन था जो बड़े पॉन्ड से या लेक से जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो और इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर नोड क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स को कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी,
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स है उनको अभी एक तरीके जो एक्सटेंशन है जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
1: जी, और हरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए

0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
0: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पीके नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूडियाट्टम, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is the son and disciple of Padmashri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moolikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepatya Kodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kut Ka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarbh Divya Pashupata Astra Ki Prapti Ke Liye Pandavon Mein Arjun Bhagavan Shiv Ki Kathor Tabasya Aur Aradhana Karte Hai. अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव

0: concerned, do you feel you're in a better place now to cope with this pressure?
1: Yeah, I think so. Everyone's feeling really confident in what they've done, and this group as well. So, we're in a good spot, and hopefully we can perform out there today.
0: Go well this evening.
1: Thank you.
0: So the news from the toss, South Africa have won it. They're having a bowl.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वाज कॉन्स्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वाज ही 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस when England were knocked out by South Africa in this very stage.
3: Yes, definitely they're known to upsetting any tournament, any team. And their form is yet to come. And I mean, especially if you talk about Wolwart, she's yet to give her best. I guess, they can do anything, and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, this England team, English team, it looks very balanced at the moment. And they're giving their best. Their batters are contributing really well. Their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side. So let's see who plays well today.
4: जी, और कंसिस्टेंसी जो है वो इंग्लैंड की इस पूरे टूर्नामेंट में एक मजबूत पक्ष उसका रहा है. और ऐसे में जिशान, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नजदीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा. और खासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि ये अच्छा मैच होने वाला है. खासकर जहाँ तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस और जो पास्ट चीज़ें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स की खासकर. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलर्स पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नज़र आना है, वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू. नाउ राजा, वी सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. चार्ली डीन वॉज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव ब्रांट वॉज इंजर्ड. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
6: I think that's the hallmark of a good team, Mega. And any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get a first bowl, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20 over format and the 50 over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया? कौन लाया?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। सुनवाने जा रहे हैं पहली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में। नाम है लहू के दो रंग, संगीतकार

0: because remember, this is a World Cup semi-final. Sometimes it can come down to a run or two to decide who the winner is. And therefore, the umpires want to be very sure. After going through a bazillion replays, they've decided to give it as two runs. So well done, Nadine Clerk. You have saved a couple of runs for your team. Anyhow, Wyatt Hodge prepares to face what will be the last ball of the second over. The slip fielder has moved a little bit wider, and once again it's a bottom edge which takes the ball towards backward square leg. The keeper runs towards her left, picks it up and throws it at the striker's end. She doesn't hit the stumps, and that allows the batters to cross over for a single. It was a good length delivery, angled in towards the stumps. Wyatt Hodge was looking to work it towards the offside but got a thick bottom edge which allows a single. 20 for 1 after 2.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो दोनों टीमों की ओर से अपने अपने हिसाब से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि शबनम स्माइल जब आई तो उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत के पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो पिछला ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। तो इस बार स्टेप आउट किया है, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में इनफैक्ट फील्डर मौजूद हैं। मैरिजन कैप आई हैं नया ओवर लेकर के। रन रेट, रन बनाने की रफ्तार 9.23 है और पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। डैनी वियाट हॉज, कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बोल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी वियाट हॉज को आउट कर दिया।

0: कर दिया है, कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिलिन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया, गेंद और बल्ले के बीच में काफ़ी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था, और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
1: A good length delivery, which after pitching jagged back in sharply, and that inward movement is what caught Danny Wyatt-Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries, and even here she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizaan Karp, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt-Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunt out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley. Remember, Sophia Dunkley came in as the injury cover for Natsiva Brunt and scored a 49 not out in the previous game, which was played at this very ground. Before that, she got a 50 as well in one of the group stage matches, but she was dropped from the team today so that they could get Siva Brunt in. Alice Capsey, who hasn't really done anything extraordinary in this World Cup, is now in the middle and has responsibilities on her shoulder. She gets beaten on the first ball by a lovely outswinger delivered on a good length outside the off stump, and tried to poke at it, did Alice Capsey, only to watch the ball whiz away from the outside edge of her bat.
0: बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं मैरिजन कैप, और उन्होंने बहुत ही अहम सफलता दिलाई है दक्षिण अफ्रीका को। इनफैक्ट एलिस कैप्सी को उनकी जो पहली गेंद थी, स्लोअर डिलीवरी थी वो, और उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकी थी मैरिजन कैप। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट के पीछे उसे गैदर किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो दो झटके पावर प्ले में, जहां बात होती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ताबड़तोड़ बैटिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट में भी, और बड़े से बड़े स्कोर बनाए जाते हैं 20-20 ओवर के मुकाबलों में। और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने जो टॉस जीता, वो टॉस बहुत ही अच्छा जीता उन्होंने, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। अभी तक तो वो निर्णय सही साबित हुआ है। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके धीमे से ऑन साइड में नैटसिवर ब्रंट ने पुश किया था बॉल को, जब तक फील्ड किया जाए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। तो पिछले ओवर में 16 रन खर्चे गए, लेकिन ये ओवर बिल्कुल शांत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, और डैनी वियाट-हॉज जैसा बता रहे थे दर्पण के 294 रन उन्होंने बनाए हैं। और ये अलग बात है कि आउट होकर के आज जल्दी ही पवेलियन लौट गई हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से 2 उन्होंने अर्धशतक जमाए थे और 1 शतक भी जमाया था इस टूर्नामेंट में आज, लेकिन बल्ले से कोई खास योगदान वो नहीं दे सके। इस बार मिडिल लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, बैकफुट पर जाकर धीमे से पुश किया है, हालांकि फील्डर्स डीप में तैनात थे और शॉट मिड विकेट की दिशा में इनफैक्ट कोई फील्डर था नहीं, तो 1 रन लेने में कामयाबी। इसके साथ ही मैरिजन कैप का एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 7 dot balls in the first couple of overs that Marizaan Kapp has delivered, and more importantly, the big wicket of Danny Wyatt-Hodge. An interesting thing that I noticed, Shivendra, was the fact that a couple of batters stepped out. We'll talk more about it. There's an appeal for LBW. However, it has been turned down by umpire Jacqueline Williams, who shows absolutely no interest. It was probably sliding down the leg side. Shabnim Ismail, the bowler who ran in over the wicket, delivered this one on a good length, and the ball beat the inside edge of Siva Brunt's bat and hit her pad. Interestingly, Laura Wolfart shows the tee. She decides to use DRS and take this upstairs. Now, the reason why we are surprised is because to the naked eye, it seemed as if the ball would have gone down the leg side. But two things to be kept in mind. First of all,

0: the umpires are obviously much more experienced, and therefore you tend to judge, tend to trust their judgment. More importantly, I think what has pushed Laura Wolfart or persuaded Laura Wolfart to take this review is the fact that the batter in question is Nat Sivabrunt, one of the most consistent performers throughout the world. And therefore, they want to get her out. And therefore, they have decided to take the review. The first replay shows us that there is no involvement of bat. Ultra Edge shows a flat line. And the ball tracker confirms exactly what we suspected. The impact is down the leg stump. It is down the leg side. So it's a horrible review. But Shivendra, I feel the only reason why they went for it is because the batter in question is Sivabrunt.
1: जो भी फैसला था मुझे तो लगा इट इज़ वेल टेकन दर्पण, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो खिलाड़ी क्रीज पर थी वो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और साउथ अफ्रीका वो जो इम्पैक्ट जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी गेंदबाजी से उसको वो और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और चांस लेने में कोई बुराई थी नहीं। अगर विचार विमर्श के बाद ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं रिव्यू के लिए, और रिव्यू बना ही इसीलिए है, कोई बात नहीं। अगर वो लॉस्ट भी हुआ तो भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत या बहुत खराब डिसीजन था।
0: A leg by was also stolen by the way. Next delivery from Shabnam Ismail. Another shout for LBW. This time Jacqueline Williams raises her finger. So does Shivendra in the commentary box of Akashvani. This looks plumb. However, Alice Capsi now has the opportunity to use DRS. She walks down 22 yards, has a conversation with her captain at the other end, who shakes her head. That means Alice Capsi will have to turn around and take the long walk back. Shabnam Ismail has picked up another wicket. England have lost 3 in 3.2 overs. They are struggling. They are huffing and puffing. 23 for 3. South Africa in the driver's seat.
1: इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी साउथ अफ्रीका के लिए। शबनम इस्माइल, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत आज जब वो रिटायरमेंट से वापस आई हैं इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए, और उनके लिए आज के सेमीफाइनल में डिलीवर करना कितना ज़रूरी था, ये उनसे या उनके टीम प्रबंधन से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। और एलिस कैप्सी जो कि अभी अभी आई थी, 4 गेंदों में 1 रन बनाकर के पेवेलियन वापस लौट गई हैं, और शबनम इस्माइल जिन्होंने T20 विश्व कप में अपने 50 विकेट पूरे किए थे, अब वो 51 की शुभ संख्या पर पहुंच गई हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में अभी तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए, तो 28 मैचों में 23 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं और 4 मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आज लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है टॉस जीते के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए, वो शायद फिलहाल तो इस ओर इशारा कर रहा है कि पलड़ा कागज पर भले ही मैच के शुरू होने के पहले दर्पण इंग्लैंड का भारी था, लेकिन इस समय हालात बदल चुके हैं।
0: Heather Knight is the new batter. More on her after this ball. Runs in to deliver this one on a good length. Does Shabnam Ismail. The ball hones in towards the off stump, but in a very careful, cautious, watchful manner, presents a stubborn full face of the bat. Does Heather Knight and blocks this one. Heather Knight is a cornerstone of this English team. Remember back in 2017 when they won their last ICC trophy, she was the captain when England lifted the 50-over World Cup in 2017 after breaking a billion Indian hearts. We'll talk about it. Next delivery, full in length, around the off stump, presses forward, does Sivabrunt and then unleashes, Knight presses forward and unleashes a deft glance towards deep square leg, picks up a comfortable single, and that takes the score to 24. 24 for 3 after 3.4 overs. Talking about Knight, Knight was their captain back when England won the last World Cup, and now an interesting replay on our monitors, Shivendra. Looks like Alice Capsi had got an inside edge. More about it after this ball. Good length delivery. Sivabrunt presses backwards, allows the ball to come close, and then dinks it back to the bowler. Alice Capsi, who was trapped LBW a couple of balls ago, had got an inside edge. And I wonder why she did not review it. She did walk to her partner at the other end and had a discussion. But if you are the batter, you would have felt that there was an inside edge, especially at the pace at which Shabnam Ismail is bowling.
1: इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आपके लिए स्किलफुल होना तो जरूरी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से टफ होना भी जरूरी है। बढ़िया शॉट है इस बार।

0: नेट सेवर बैंड के बल्ले से निकला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Right, and that also brings us to the end of the fourth over. 28 for 3 are England. They are in trouble, and the reason why we say in trouble, Jatin Sood gives us another piece of information which confirms it. This is the second time in this World Cup when England women have lost 3 wickets in the power play. The only game where they lost 3 in the power play was against Ireland, where they were 35 for 3 in 6 overs, and Ireland did give them a run for their money. However, two interesting things have happened. First, Ali Scapsi, despite getting that big, thick inside edge, did not review it. Otherwise, her LBW decision would have been overturned. The second thing is that Sophia Dunkley, who otherwise would have been playing in the situation, is not a part of the 11. Marizan Kapp begins what is her third over in the power play, delivers the first delivery on the fuller side of good length. Heather Knight lunges forward and wads it off into the cover region. No runs to be had on that occasion. The reason why I'm talking about Sophia Dunkley is because she was in good form. She comes across that kind of a player who has the big match temperament, who tends to counter-attack and throw the pressure back on the opposition. And she was dropped out of the 11 today. And Ali Scapsi, therefore, must have had that added pressure on her because she hasn't had a big score in this tournament yet. She was not able to deliver. The next delivery is down the leg side. Heather Knight tried to walk out of her crease, which we have seen on a couple of occasions even before this. Even in last over of Marizan Kapp, we saw the batters trying to step out of their crease and trying to throw her off her length because she's getting some movement. However, this delivery did not swing and ended up down the leg side, became a wide ball. The next delivery, this time Heather Knight stays rooted to her crease. However, the ball is full enough for her to get a good stride out. It is outside the off stump. She presses forward and then uses soft hands to ward the ball off into the cover point region. 4.2 overs done, 29 for 3 is the score currently, and South Africa, we believe, are in the driver's seat.
0: Definitely South Africa is in the driver's seat as far as this semi-final is concerned. Aur jo gendbazi unki team ki or se hui hai, aur outfield mein bhi bahut hi badhiya contribution raha hai sabhi khiladiyon ka abhi tak, to kul milakar ke paristhitiyan is samay South Africa ke paksh mein jati hui pratit ho rahi hain, kyunki teen jo top order batters hain wo pavilion mein vishram kar rahe hain. Shabnam Spile ne is baar unke bayi or gend aayi thi, halanki wo right hander hain, bayi or dive lagayi unhone aur sunishchit kiya ki gend ko rok le, lekin isi kram mein kai martaba aisa hota hai ki khiladi इंजर्ड भी हो जाते हैं. थोड़ी सी मुश्किल में दिखी थी लेकिन फिलहाल खड़ी हो गई हैं अपने स्थान पर. 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है 4.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, स्टेप आउट किया था सेवर ब्रंट ने. बड़े ही प्रभावशाली, बड़े एकाधिकार के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बड़े कमांडिंग अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं. और इस बार एक लेग बाई का इशारा किया है जैकलिन विलियम्स ने. इस्माइल, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लगातार 51 विकेट ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में. मेगन शर्ट के नाम पर 48 विकेट हैं. एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, 44 विकेट. आयन अशरफ सोल, जिनके नाम पर 41 विकेट हैं. और मैरिजन कैप 39 विकेट लेकर के पाँचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में. वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. इस बार पैड के सहारे खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. आसानी के साथ एक रन मिलेगा. जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई. हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था. एमी जोन्स आउट होकर के पेविलियन वापस लौट चुकी थी. तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी. इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर. ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैरिजन कैप. ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है. एक रन मिलेगा. जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे. 5 ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: लूं. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
2: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizan Kapp has

0: and Jatin Sood has handed me an elongated list which tells me that England made it to the semi-finals in 2009. Of course, that is when they went on to lift the trophy. That's when they defeated their arch rivals Australia by 8 wickets. Then they defeated New Zealand in the 2012 edition. They defeated South Africa in the 2014 edition, but lost to Australia in the 2016 edition, won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition, the match was abandoned. It was England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then, of course, the 2023 semi-final where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50 over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati, and once again England suffered a one-sided rubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game, and Marizaan Kapp picked up 5 wickets. Here again, what we see is Marizaan Kapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Kapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35 for 3.
1: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और ख़ासतौर पर अगर नैट सिल्वरब्रंट का जिक्र किया जाए, नैट सिल्वरब्रंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला, उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और चौथा ओवर है ये उनका। 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान पर ऐसा ही लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुँची है, 1 रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया। और नैट सिल्वरब्रंट और हैदर नाइट दोनों का अब इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक के बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उभरा जाए, और ख़ासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं 7वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा, और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी, लेकिन शॉर्ट पॉइंट विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वॉल्वर्ट थी संभवतः वहाँ पर, गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाबी नहीं मिली। हालाँकि डीप से बैकअप था, 1 रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया। तो धीमे धीमे भाई सही, लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नैट सिल्वरब्रंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है, और हैदर नाइट इस समय यॉर्क करने की कोशिश है, कलाइयों का इस्तेमाल करके फाइनल की दिशा में मोड़ा गया है। आया उबंगा खाप का जहाँ पर मौजूद है, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की 3 गेंदों पर सिंगल्स, लेकिन ये जो इस समय परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल के पर ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, लेकिन अगर केवल सिंगल लेने में कामयाब हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से तो ये बेहतर स्थिति है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: थोड़े इंतजार के बाद आया, लेकिन अच्छा आया चौका, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, एकदम आगे बढ़ाया, हाफ वॉली पर लिया और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लेकिन गेंद उनसे दूर काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42, 3 विकेट के नुकसान पर।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुम

0: उनसे शादी कर ले।
1: जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: 42 for 3 after 7 overs are England, and the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the 4th over on a trot, which is an interesting move. She was going for the kill. She realizes that the wicket of Siva Brunt and Heather Knight is as good as gold for South Africa right now, and therefore she did not hold Karp back. But they won't have her services for the remaining part of the innings now. Ayobanga Kaka has been given the ball in hand. The first change in bowling. They're not going to bowl out Shabnam Ismail just yet. Kaka, who bowls right arm medium, runs in to bowl this one from over the wicket, with the wicketkeeper Sinalo Jafta up to the stumps, delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7 and England are 43 for 3 after 7.1. Nat Siver Brunt now on strike. Here comes Ayobanga Kaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Kaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump opens the face of the plate. Does Heather Knight? The timing on that is good enough to beat Malaba in the deep. 4 runs.
4: ये लगा आभा का चौका।
3: Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it, and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third, and therefore another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten. Beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one, perhaps because it landed on the seam, got up steeply and therefore went over the bat. Good take from Jafta, but that extra bounce surprised Knight.
5: जी हाँ, बिल्कुल यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था, और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाईं ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली 2 रन तो बचाए गए, हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को। तो 3 जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मैरिजन कैप, शबनम इस्माइल और आयाबोंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले, और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफ़ कोर्स, लेकिन मैरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है। 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का। तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता, दोनों टीमों में एक एक बदलाव। सुनेलूस का आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नैट सिवर ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही। डैनी वियर्ट हॉग, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी 3 बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं, और 50 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा। तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइक, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं।

0: ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नैट सिवरब्रंट ने, और एक रिव्यू वैसे बेकार हो चुका है। क्या पैड से टकराई है गेंद? और जी हाँ, लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है, और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाएं, क्लियर पोलोसाक के पास। एलॉयस शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर के लिए, और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी। हालांकि ऐसा लगा दर्पण की खुद गेंदबाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी।
1: Tell you what, they are desperate to see the back of Nat Sivabrant. Once again, the batter in question is Nat Sivabrant, and that's why Laura Wolfart was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle pole, and it pitched on a good length. Sivabrant loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise. But the ball did hit her pad in front of the middle stump. However, we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad, and that is exactly what Ultra Edge has also confirmed. And yes, South Africa have burnt another review. They are now out of reviews. They have used up both their reviews. This will be an interesting ploy going forward.
0: मलाबा ओवर के अगली गेंद बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी डीप में लॉन्ग ऑन में तैनात हैं, तब तक एक रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, रन बनाने की रफ्तार 6.1 दो रन प्रति ओवर पर पहुंचती हुई 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं। और नैट सिवरब्रंट, हालांकि मलाबा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा दर्पण बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हैदर नाइट की, और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया। फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक जो मुकाबला खेला गया है, और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नज़र आया नहीं है। और ये दोनों ही जो बैटर हैं, नैट सिवरब्रंट या फिर हैदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में, जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था, डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर, पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से, और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं। और मलाबा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन लेने में कामयाबी मिली है, तो इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के द्वारा। चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार हाफ वॉली पर लेकर फाइन लेग की दिशा में खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका,
0: तो बढ़िया चौका लंबे अंतराल के बाद आता हुआ इंग्लैंड के खाते में, हैदर नाइट के खाते में जाएगा ये, और अपनी टीम के लिए उन्होंने 4 आकर्षक रन जोड़े हैं। हालांकि डीप में फील्डर तैनात थे, ऑन साइड में इनफैक्ट 3 खिलाड़ी हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। इस बार मलाबा की अच्छी वापसी, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, धीमे से पुश किया और इसको भांपते हुए कि खिलाड़ी डीप में थे, एक रन लेने में कामयाबी। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 9 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बनाए 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में,
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: Folks, this is an important stage in the game. Don't go away from your radio sets, because the upcoming phase might as well decide which way this match will go. Why are we saying that? I'll tell you that in a bit. Nadine de Klerk, meanwhile, has been given the ball in hand. She bowls right arm medium. It will be interesting to see if she tells the keeper to stand on the stumps, or does she tell her to stand back? No, she has asked Sinolo Jofta to be on the stumps. They want to keep Heather Knight in her

0: blocking shot from Natsiva Brunt, and it gets her a boundary.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Natsiva Brunt's third boundary and probably the most convincing of them all, a tad shorter than the previous one, and that was all that Siva Brunt required. She picked it from in front of the off and middle, didn't quite go on to the back foot. She stood on the front foot and swished her bat across the line with vehemence. The ball went scampering away and bisected the gap between deep backward square leg and deep mid wicket. Let's see what Nadine de Klerk's response is going to be. She responds by trying to dart the ball into the block hole. However, Natsiva Brunt has been able to dig it out and play it towards deep mid wicket. And before the fielder over there can converge, pick the ball up, throw it back to the 22-yard playing strip, two runs have been taken. Yes, the oval has big pockets, but watch out for Natsiva Brunt's running. This is what she thrives on. She loves to hair between the wickets, and that is exactly what she exhibited on that occasion. Now, backs away to the leg side. This is delivered on a good length at the middle stump, and Natsiva Brunt brings out the short arm pull to play towards deep mid wicket, where once again Anuri Dirksen does the fielding. A single has been added that takes England's score to 66 after 9.4 overs at the loss of 3 wickets. Suddenly, can you sense that urgency that Natsiva Brunt and Heather Knight are showing in their running between the wickets? This is exactly what I was talking about. They are now looking to up the ante against the second string of bowling. Next delivery on a drivable length outside the off stump, and the Heather Knight lunges towards it and then plays a deft drive, a measured drive towards deep cover. A comfortable single this time has been taken, taking the score to 67 after 9.5. So in the next 4-5 overs, we are going to see a lot of it, and therefore South Africa have to be on their toes. Next delivery on a full length at the middle pole has been whipped away towards the right of long on, and Shabnam Ismail moves quickly to keep them down to a single. 10 overs are done. 68 for 3.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है और टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बना ली है और आज दूसरा सेमीफाइनल ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड मेजबान टीम है और मैच के शुरू होने के पहले कहा जा रहा था कि उनका कागज़ पर पलड़ा भारी है। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है। क्लिव ट्रायन का आगमन हो रहा है, जिन्होंने कि अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से की है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में आती हैं, बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का दायित्व संभालती हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत, आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता लॉरा वॉलबर्ट ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक एक बदलाव था। सोने लूज साउथ अफ्रीका की टीम में आई, नैट्सिव ब्रंट इंग्लैंड की टीम में आई। इस बार ख़राब डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, स्टेप आउट किया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है। नैट्सिवा ब्रंट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
3: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइन लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
1: ये लगा आभा का चौका।
3: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट्सिवा ब्रंट और हेदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट्सिवा ब्रंट, लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज। पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट्सिवा ब्रंट का योगदान 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 3 विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी। अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट्सिवा ब्रंट।

0: हैदर नाइट और नेट्सवेयर ब्रांड के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Natsiva Brunt have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Natsiva Brunt has helped it along to the fine leg boundary for 4.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: Yes, a poor ball, but Natsiva Brunt, after the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it these days. And the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps. And there comes out the short arm pull from Natsiva Brunt. And before the ball is fielded in the deep mid-wicket region, once again, the batters hustle quickly between the wickets to take 2 runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Siva Brunt was out with a calf injury. Yet, she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Khaka, outside the off stump, on a foolish length. However, Siva Brunt was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards long on and pick up a comfortable single. And just like that, Siva Brunt has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
0: 2023 के बाद से Natsiva Brunt ने एक आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आया था जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसी बीच बैक फुट पर जाकर कट कर दिया। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है गेंद 4 रनों के लिए। हैदर नाइट के बल्ले से निकला है बेहतरीन चौका।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जतिन सूद बता रहे हैं कि Natsiva Brunt और हैदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी। और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज़्यादा शिद्दत से तलाश थी। 41 रन 31 गेंदों में Natsiva Brunt, 22 गेंदों में 26 रन। हैदर नाइट 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका। परिवर्तन के तौर पर Ayobonga Khaka की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई, बाउंड उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया था उनके द्वारा। रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये दोनों खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे।
4: एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट द टीम नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फैन बेस is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is. And this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket or else they will see England running away with this match. Let us tell you, folks, that the average first inning score in the 6 women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one.

0: on the pads. It has been flicked away towards square leg, and before the fielders in the deep can converge and throw the ball back once again, the two batters have haired back and forth and converted this into a couple once again. Fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over. Delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump. Has been chopped towards extra cover, where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर. मलाबा की गेंद स्टेप आउट किया, हाफ वाली बल्ले कर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है. हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हेदर नाइट एंड नैट सिवरब्रंट, दे आर ऑन फायर. उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और खास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है, उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: द लास्ट बाउंड्री दैट वाज हिट बाय हेदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस, और सो वी फेल्ट, नदीन डी क्लर्क रन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ बिग डाइव टुवर्ड्स हर राइट एंड ट्राइड टू फ्लिक इट अवे फ्रॉम द बाउंड्री कुशंस. We felt that the ball had already hit the boundary cushions, and now comes the confirmation from umpire Alois Sheridan, albeit it comes after a delay because a boundary check was happening. It has been signaled a four, 97 for 3 after 12.3 overs. Next delivery, Malaba this time delivers it with a slightly flatter trajectory so that the batter cannot step out on a good length around the off stump. And once again, brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again, these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हेदर नाइट. और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नैट सिवरब्रंट को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है. उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची है, और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई है हेदर नाइट. और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं. क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है. 99 रन इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन. इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Last four overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadine D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the impact to my untrained eye seemed to be outside the off stump. Nat Sivabrant, beg your pardon, it was Heather Wright, the batter in question, and the umpire has turned Nadine D. Clerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Wright had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Nat Sivabrant back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for four.
2: Ye laga abha ka choka.
0: De Klerk was probably searching for a yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Nat Sivabrant, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery again.

0: a very full length delivery. This time Nadine de Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder. Anari Dirksen will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
1: प्रोडक्शन ने इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ झटकती हुई नजर आई, शायद इस बार स्कूप करने की कोशिश, और कोशिश कामयाब होती हुई। विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: नैट सिवर ब्रंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत खराब थी और 3 विकेट गिर चुके थे। इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर। अब पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है। 2 फील्डर्स को बायसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: Natsiva Brunt with that boundary has completed a half century. 53 and 35 balls, out of which 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डेरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है। और नैट्सिव और ब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है। उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं, जब जब शॉर्ट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं। 19वां अर्धशतक है T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं। 4था अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है। ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट्सिव ब्रंट, आज सोफिया डंकली की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था। हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी ख़राब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नैट्सिव ब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके साथ साथ हैदर नाइट जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, 4थे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है। और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस तिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है, 15वां ओवर प्रगति पर है।
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat, this one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Aloysius Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long.

0: in line with the stumps, went towards her left, did Heather Knight, to allow the bat to come through, then swung her bat hard, and the replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine de Klerk did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Nat Sivabrant now on strike. Goodland delivery, angling in towards the off stump. Sivabrant backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर तीन इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैट सिवब्रंट और उनके साथी हैदर नाइट के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बोंगा काका आई हैं. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है, लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती हैं और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. 2 रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे 1 रन को 2 रन में बदला है, 2 को 3 में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है. ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला टी20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बोंगा काका की गेंद लो फुल टॉस पर और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है 6 रनों के लिए. पहला छक्का
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.
0: अ 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside-out drive which fetches her another 4.
2: Ye laga abha ka chauka.
0: This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however on a drivable length. Nat and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball and then whilst flaunting that high elbow of hers unfurled that delectable inside out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी सेमीफाइनल में. 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी डैनी वियर्ड फॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैट सिवब्रंट और हैदर नाइट का आगमन

0: हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एडिन डी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में एक रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन डी क्लार्क अपना तीसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम इस्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंगा खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंगा खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए। 143 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं। नेट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
2: दैट सिक्स वाज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Natsiva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Natsiva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls they want to limit the damage as much as possible.
0: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीन डी क्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के। तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था। इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन डी क्लार्क की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, एक रन मिलेगा। 154 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रेसाइज। 17.5 ओवर के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर नैट सिवर ब्रंट 45 दिनों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं। 46 दिनों में 58 रन उनके नाम पर। 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 3 विकेट के नुकसान पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: and Long On are currently those three fielders. Ayobonga Kaka, who has been expensive today, 35 runs off her three overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobonga Kaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid-wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: Ayobonga Kaka apne kote ka aakhri over lekar ke aayi hain. 36 run unhone kharche hain. Pehli safalta ki talash hai. Malaba ka pichla over South Africa ke lihaz se bada sunehra over kaha ja sakta hai, jahan unhone 2 wicket hasil kiye the. Filhal Freya Kemp aur Danny Gibson crease par hain. कैंप ने अभी सिर्फ एक गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है. और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल 3 खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्कल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं. अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप 4 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर तैनात कर सकते थे. 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर. अच्छी वापसी करते हुए Ayobonga Kaka ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है. हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं. और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है Ayobonga Kaka के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद. और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में. कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर है, स्ट्राइक पर है. सामने है गिब्सन, 3 गेंदों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि Ayobonga Kaka की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है. और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर. एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई. तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10. इंग्लैंड 162 5 विकेट के नुकसान पर. ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है. 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स. साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है.
0: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. Kaka इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम Freya Kemp's आर्क. Freya Kemp इज नोन फॉर that bat swing of hers. She's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Kaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson can not reach the ball. Yet another dot ball. Intelligent bowling from Kaka. Next delivery. This time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge. The ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from short third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also, in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. 2 runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings. It is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: It was a good length delivery in line with what would have been the tram line for the umpire to decide it was a wide ball. However, the batter shuffled towards it and hence it hasn't been signaled a wide. Eventually, Gibson was looking to guide it towards third using an open face, but she could not lay bat on ball. The ball went past her, past the wicketkeeper as well, and trickled over into the fence. That means England have ended their innings, ended their quota of 20 overs with 169 for 5. They lost

0: 3 wickets very early. However, then Natsiva Brunt and Heather Knight, with an excellent partnership, were able to forge a recovery. We will meet you after the innings break. For now, we will head to the studios of Akashwani for a very special program called Free Hit 20.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the fourth wicket between current and former captains Natsiva Brunt and Heather Knight. But subsequently, South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
5: Ji, aur hamare saath mehman hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer, aur G Rajaraman, varishth khel patrakar. राजा, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम? क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद, ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
6: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे, दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है। मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा। 169 काफ़ी है उनके पास, और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
4: क्या थी इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस।
7: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played, and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
5: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से? क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे, दोनों के 3-3 ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का 4th ओवर 7th ओवर तक समाप्त हो चुका था। इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे।
8: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने। आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही आपस में, उन लोगों के कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं, उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में, और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें, या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहाँ वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहाँ पे अपने उन चीज़ों को, स्ट्रैटेजी में। उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे, उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को, तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की। और उनका जो बिल्ट है दोनों का ही, एक लंबी है, उनका जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तो बाय द टाइम वो समझते उन्होंने, या तो इनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे, जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है, साउथ अफ्रीका को उन्होंने, उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पर यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को

0: कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक, अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट है, अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंड सेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से।
1: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
2: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much because they were moving outside the off stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the 3 wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them. They played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers, did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job of that.
3: जी, और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान नैट सीवर ब्रंट की वापसी, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी, और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
4: डेफिनेटली, काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जहाँ पर आपके जो टॉप 3 बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहाँ आके अगर जब वो फेल हो जाए, और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया।
1: The duo exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत टाइम से रन नहीं आए उनके बल्ले से, कंस्ट्रिंग की विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी।
0: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन, हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए। बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे ज़रूरत टीम को होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए, तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में, और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ, हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में।
3: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
2: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट ज़रूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पे।
1: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है।
4: जी बिल्कुल, ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ

0: English team. Definitely, it will be a very good contest, and Laura Woolworth and Brits and Marison Karp or Ellis Capsey, Eccleston or Sarah Glenn के बीच में कॉन्टेस्ट होगा. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है.
1: तो जिशान, क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी? वो क्या चाहेंगे, पावर प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने, कोई बात नहीं?
2: देखें, आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये है ज़रूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है उन लोगों की. स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, इस विकेट में स्लो विकेट है. इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है, एक सिंगल और डबल और उस, तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे. लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो. तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर. जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें. अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा.
3: South Africa chased down 158 against India and collected two crucial points in the group stage. Now, Detson, we've seen her bat at number 3 in this World Cup, barring that game against India where she couldn't open her account. She's been chipping in with important runs.
4: So, this is a game where everybody has to contribute. It's not a small score, chasing 170 to win. Everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally, you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets. And that's the nature of the beast of T20, and I think we will get to see a very fascinating contest, with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
1: Khyati, इंग्लैंड की कप्तान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है साउथ अफ्रीका की कप्तान की. उनकी अच्छी पारियां अभी तक आई नहीं है, कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
0: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है. अब देखिए वो किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती हैं.
3: एंड राजा, वी हैव सीन लॉरेन बेल, barring one game in the group stage, give South Africa, rather England, early wickets.
4: This is a big game, semi-final. They will have to play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England. But they've got a good score to defend.
3: Absolutely. 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing third successive finals. England looking to win the World Cup at home.
5: Pre-hit 20.
6: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
7: ओवल का मैदान जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ हैं तैजमिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर. और इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है.

इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लिंसे स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन के लिए छोर बदला है। लॉरा वॉल्वर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है। तैजमिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी। तैजमिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके बारे में ज़रूर हम जिक्र करेंगे। अच्छे

0: three overs. Next delivery, this time in the slot, and Brits opens her arms, goes for a big shot, whacks it over mid on for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: She's a powerful, powerful batter, is Tasmin Brits. That bicep of hers on the right arm has the tattoo of the Olympics logo. And Shivendra was about to tell you about her story. She was a javelin thrower. Am I right, Shivendra? That's what you were coming to.
2: Yeah, बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर थी और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओलंपिक्स की उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी. लेकिन ओलंपिक्स में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे क्रिकेट के मैदान पर पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है. और आज बहुत ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को उनकी एक बेहतरीन पारी की. एक बहुत ही शानदार पारी वो खेल भी चुकी हैं इस मुकाबले में. इस विश्व कप में 69 गेंदों में 114 रन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे और फिलहाल 101.5 ओवर के बाद 11 रन बने हैं साउथ अफ्रीका के सामने. टारगेट 170 रन का है. इस ओवर में एक चौका, दो वाइड डिलीवरी, लॉरेन बेल का ओवर समाप्त हुआ. दो ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका.
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: A boundary on the fourth ball of the over. After that, Lauren Bell adjusted her line, delivered the next one on the pads, which was flicked away for a single. And then the last delivery was on a length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide off, and it has been flayed away through the backward point region for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went on to the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been that Shivendra was telling you. She was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
2: Strike par hai kaptan Laura Wolfart, 3 gunon mein 1 run, step out kiya, middle or off stump ki line par gain thi, mid wicket ya long on ki disha mein khelna chahti thi, gain theek tarike se balle par aayi nahi, lekin achhi baat ye hai ki carpet ke sare gain ludakti hui dur gayi thi. Aur लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ, फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था, उस गैप का इस्तेमाल किया तस्मिन ब्रिट्स ने. 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद, थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी, ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी. इस बार पैर पर लगी थी, स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई. तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है, और ख़ासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहाँ फाइनल में पहुँचना दांव पर लगा हुआ हो. और 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, लेकिन उन्होंने अच्छी सधी हुई शुरुआत की है ये कहा जा सकता है. और जब तक साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है अगर वो डिलीवर करता है, जिसके लिए डिलीवर करना आज बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तभी फाइनल की उनकी राह कुछ आसान हो सकती है.
0: Right, 21 without loss after three overs. Tasmin Brits has done the bulk of scoring.

0: scoring. She has been the chief aggressor so far. 17 of 14 deliveries against her name. Three boundaries has been hit, and she has been hit on the body a couple of times as well. In the previous over, there was an occasion where she inside edged one ball onto her boot and then hobbled, but she's a tough nut to crack, and that is exactly what she's exhibiting. Meanwhile, the next delivery from Lauren Bell, the first of the fourth over, is down the leg side, and very deftly Wolfart tries to get a tickle on it. She even gets a tickle on it. However, Amy Jones, the wicketkeeper, moves to her left in order to cut it off and end the possibility of any sort of a run. So dot ball to start off with. The next delivery onto the stumps on a fuller length, and a delectable on drive from Laura Wolfart, which has been cut off superbly by Sophie Eccleston at mid-on, who moves towards her left and puts in a nimble slide in order to ensure that the South Africans do not get any more than a single. Now remember, folks, England lost to South Africa in the semi-final of the 2025 World Cup. They lost to South Africa in the semi-final of the 2023 T20 World Cup as well. And there was a commonality between those two games. What it was, I'll tell you after this ball. The next delivery on a fuller length, in line with the middle pole, and nudges it towards mid-wicket. Does Tasmin Brits to pick up another single. That takes the score to 23 without loss in 3.5 overs. In both those matches, Laura Wolfart and Tasmin Brits were the heavy scorers. Wolfart scored 169 and Brits scored 45 in the ODI World Cup semi-final. And in the 2023 T20 World Cup semi-final, Wolfart scored 53, Brits scored 68. And just as I say that, Laura Wolfart picks up her first boundary. Ye laga abha ka choka. Delivered on the fuller side of good length. In fact, I would say it was a full delivery in the channel outside the off stump. And Laura Wolfart pressed forward and then unleashed a robust off drive. Nat Siva Brunt moved towards her right and put in a dive at mid off. However, she wasn't able to stop the ball. Such good was the timing of the bat of the South African skipper, who has now moved to 7. Next delivery, Lauren Bell pulls her length back to a good length, angles this one in towards the leg stump, 114 kilometers or thereabouts on the speed gun, and a defensive dab from Laura Wolfart. So both Wolfarts and Brits in both those semi-final victories for South Africa were the heavy scorers, which means England cannot take them lightly. They need to get them out as soon as possible. It goes without saying, doesn't it? Fourth over's last ball. Lauren Bell runs in over the wicket and Laura Wolfart steps out. And after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over. 28 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। मत जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष। उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और टॉरा वुडवर्ट और टैस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। चार्ली डीन का आगमन हुआ है, आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
4: ये लगा आभा का चौका।
5: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर, कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है।

0: इंस्टेंटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है या देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में। लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेट कीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है, कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में खासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नरसिंहर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटेज डिलीवरी बैक टू द बॉलर ड्राइव फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पांच ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: चार्ली डीन्स लास्ट ओवर प्रोड्यूस्ड 6 रन्स and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Natsiva Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump of a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple, beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been 2 runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for 4.
5: Ye laga abha ka chauka.
4: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid on. Currently, long off and deep mid wicket are the two fielders outside the 25-yard circle. Once again, steps out, and this time she won't be able to clear the mid on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
0: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को, कप्तान लॉरा वुल्फर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी। पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। इस बार भी उन्होंने सर्कल को क्लियर करने की कोशिश की, मिडॉन की दिशा में सोफी एक्लिस्टन तैनात थी। गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया। 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुल्फर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है। और एक बहुत बड़ा विकेट है ये, साउथ अफ्रीका को बहुत जोर का झटका, इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है, तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है।
4: दे आर 43-1 विद द 2 deliveries स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले। ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप हैज नॉट एग्जैक्टली बीन वेरी प्रोडक्टिव। दे स्कोर 2 runs फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम, 11 अगेंस्ट पाकिस्तान, 25 अगेंस्ट इंडिया, 121 against Netherlands, but after that 0 against Bangladesh, and here again 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anari Dirksen has walked out

0: to bat at number 3. But here the bottom line is that Nat Sivabrant's move to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Sivabrant stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
1: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार। और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को। जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद ख़राब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए, इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया। हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। नैट सिवरब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में। एंडी डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में। और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है। नई बल्लेबाज डक्सन, हाफ वॉले पर लेकर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नैट सिवरब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं। एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था, हालांकि बात वही है अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfart has just fallen. And we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50-over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps. That allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over, 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anuri Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anuri Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46-1 after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मरतबा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेंड डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो लॉरा वुलवर्ट का विकेट 6th ओवर में लिया गया। लिंडसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है, इस बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में

0: खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 22 गेंदों में 24 रन बना करके खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी 1-4 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में। पारी का 7वां ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया शॉट, थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: साउथ अफ्रीका नीड अनदर 123 रन्स टू विन इन 78 बॉल्स। बिग न्यूज, अनरी डर्कसन वाज ड्रॉप्ड, वाज गिवन अ लाइफलाइन when she was on zero. She has moved to two now. At the other end is Tasmin Brits batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left arm seamer, so provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for 1. The previous over fetched 4 runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet face for England this, and there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside off, slanting away from the right-hander. Anneli Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Anneli Dirksen comes to an end. 49 for 2 after 7.3.
0: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डर्कसन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हों, देखने में ये आ रहा था कि पिछली 2-3 गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की, उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से। जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूँकि बातले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैंप को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है मिडल और लेग स्टंप की दिशा में, शॉर्ट ऑफ लेंथ करायों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, और ख़राब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी,

0: कैंप के द्वारा बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है लेकिन यहां पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन दो विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर सेंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, एक रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 दो विकेट के नुकसान पर।
1: राइट, 119 मोर नीडेड ऑफ द रिमेनिंग 72 बॉल्स। हाउएवर इन द लास्ट 3 or 4 ओवर्स यू कांट हेल्प बट फील दैट इंग्लैंड हैव टाइटन देयर ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। The last boundary came in the 6th over, which means we have had 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her second over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the second ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery slightly shorter outside the off stump, opens the face of the plate, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who did the fielding, and that keeps the batters down to one. Next delivery backs away to the leg side. The Tasmin Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way, she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only 3 is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one on the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced 6 runs, one ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the 9th over, 58 for 2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बना करके इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के। हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है, सामने है टैस्मिन ब्रिट्स। विचार विमर्श चल रहा है, हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है। और ख़ास तौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की ये गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ब्रिट्स

0: स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती हैं और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आज़ादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैप हों जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए और तैसबिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है। बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ तैसबिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में है। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। तैसबिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बना करके सामने हैं। इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पकड़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी, हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: No boundaries for 27 balls and just as I say that, steps out of a crease and flares it towards the extra cover region. Does Tasman Brits picks up a 4.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, she shortens the length and the batter tries to go cross-batted swipe. Tries to go for a cross-batted swipe and doesn't quite make the connection that she desired. The ball goes aerial and falls in no man's land in the forward square leg region, and a single has been added. So 4-0-1 to start off the 11th over. Next delivery, this time Marizan Kapp steps out, miscues, and she has been caught in the extra cover region. Natsiva Brunt completes the catch and there's an explosion of joy in the English camp. They have got the big fish. Marizan Kapp has been dismissed. 68-3 are South Africa, and Charlotte Dean's over, which did not begin on the right note, has produced something invaluable for South Africa. All the Indian fans know how important Marizan Kapp is. She played that magnificent innings to knock India out of the competition. And over here, however, she has not been able to deliver. She scores only 5 of 7 balls.

0: to get that boundary indeed, albeit in the form of buys.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: This is almost identical to what happened on the last ball of England's innings. Sune Luce went into a horse riding straddling stance and then shuffled towards the offside. She was basically shaping up for the scoop shot and Gibson went wider in response. The ball finished near the tram line, but the batter failed to lay bat on ball. The keeper failed to gather it and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
2: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलबर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सुने लूस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है. और सुने लूस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची हैं जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है. सोफिया क्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए. इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं. 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में. इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पवेलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं. दूसरी ओर तैजमिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं. इस बार स्वीप शॉट खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया. कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया. सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला. तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात को इशारा करता है. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में. साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद. इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया तैजमिन ब्रिट्स ने. एक्लेस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला. चार्ली डीन वहां पर मौजूद है. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को. साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 88 रन चाहिए, 43 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं. इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है. इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है. कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी. तैजमिन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन. 13 ओवर के समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Nearly 12 and a half runs per over required by South Africa if they are to win this match. They are chasing 170, 83 for 3 after 13 overs, and Lauren Bell has been brought into the attack. Lauren Bell, who throughout this tournament we have seen has dedicated a couple of overs towards the death phase, has been brought back in today in the 14th over. Interesting move by England. They want to kill the game right now. They do not want to take it deep. Starts off with a good length ball, which is in line with the imaginary fourth pole. Sune Luce backs away to the leg side and that allows her to work it away towards the backward point region. The ball goes straight to the fielder and hence there is no run to be had. With every dot ball, the pressure will mount on South Africa. 83 for 3 in 13.1. Luce has scored 4 of 9 balls, which is not ideal by any means at this stage. Next delivery, a slower ball. She steps out and plays it towards the extra cover region. There could be a run out. However, the wicketkeeper has failed to gather the ball cleanly and Tasmin Brits gets a life. This time around, Luce converted this one into a half volley and then punched it towards Charlotte Dean at extra cover, who was quick to pick it up and hurl it towards Amy Jones. However, Amy Jones was not able to gather it cleanly or else it would

0: have been curtains for Brits. So Brits gets a life. Can she make the most of it? Next delivery banged in short, in line with the middle pole. Brits stays besides the line, attempts a pull, connects with the bottom edge of the blade, and the ball goes trickling away towards the backward square leg region. Only a single. The first half of the over has produced only two runs. That is not ideal from South Africa's perspective. They've reached halfway the target, but have only 39 balls to score 85 more. Bell runs in, delivers another short ball outside the off stump. Sunil Lees brings out a pull, which is not a very robust one, not a very vigorous one. The ball trickles away into the gap between long on and deep mid-wicket, and that allows for a couple. However, ones and twos are not going to hurt England. South Africa need to find boundaries. Sunil Lees needs to up the ante. 7 of 11 against her name. Lauren Bell runs into bowl what will be the penultimate ball of her over. It's a slower ball on the shorter side of good length at the middle pole, and Lees brings out a robust short arm pull. The ball goes to the fence, gets her 4. Ye laga abha ka choka. Almost had to wait for the ball to arrive and delay her bat swing. However, Lees did it in accordance with the slowness of the ball, and in the end placed it well too. This is what they need more of. She placed it between mid-wicket and long on. There's a gaping gap towards it. Next delivery, short ball. This time she wasn't in control of the pull shot, and Sophie Eccleston completes another fantastic catch. Lauren Bell has delivered the goods. She has done exactly what Nat Siverbrunt asked her to do. Brought in earlier in the 14th over because England wanted to kill the game, and with the wicket of Lees, they might have done it. South Africa reeling, crumbling under pressure. They are 4 down for 91 as we head into a drinks break.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है, और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवरब्रंट की बदौलत। नैट सेवरब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया नैट सेवरब्रंट ने, हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए, और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सुनील लूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं, और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में, यानी 7 से 14 ओवर के बीच में, इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था। और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी, जहां पर नैट सेवरब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे। और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सुनील लूस आउट हो चुकी हैं, और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इंग्लिश कैप्टन नैट सेवरब्रंट के द्वारा आज टीम में उनका आगमन हुआ था।

0: और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। 79 रनों की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदें फेंकी जानी शेष है, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। टैस्मिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बना करके खेल रही है, बैकफुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही टैस्मिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बना करके वो क्रीज पर हैं, 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है? टैस्मिन ब्रिट्स इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नेट सिवरब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये 5वां झटका, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चार्ली डीन को एक और सफलता, टैस्मिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
2: The hopes are dwindling. The target of 170 looks further and further away. Looks like South Africa's wait for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tatsmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for an ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine De Klerk. Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sune Luce in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sune Luce, and Luce went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine De Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads, it has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और नैदीन डी क्लर्क और क्वेट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने

चार तीन गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुई इंग्लिश टीम। नैट सिबर ब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है, बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है और दो कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडल लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफ़ी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही क्लो ट्रायन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करार नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, एक रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने।

0: पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करा नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, एक रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो पांचवें पायदान पर आ गई हैं। उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में। 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफ़ी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर बाएँ हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं। पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नैदीन डिक्लर्क के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है एडिन डिक्लर्क के द्वारा। एक रन मिलना चाहिए, पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं। हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डग आउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of a crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory, on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Natsiva Brunt chases it down. Interestingly, Natsiva Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover and the ball bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again. That Charlie Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting

0: to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across. Ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: अभी मत, जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट शो खेला। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की पर दिशा में जा रही है गेंद, डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
5: ये लगा आभा का चौका।
4: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है। स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्किल को क्लियर किया था। तीन खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्किल के अंदर तैनात हैं। 4 रनों का इजाफा डीकला के स्कोर में। लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग सर्किल के मुहाने पर, अच्छा बैकअप भी आता हुआ। कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन परिस्थितियाँ बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है। हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफ़ी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा। क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं। बोल्ड हो गई हैं, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेटिश डिलीवरी। तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से। पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है, स्ट्रेटिश डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया, गेंद की लाइन में आए बगैर, और बोल्ड हो गई हैं तो ट्रायन, उनकी पारी का अंत हो चुका है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल, और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है, और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिबर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज, जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में, उन्हें शामिल किया गया। काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले 2 मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया। जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, 4th विकेट के लिए शतकी साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ। अब जैफ्ता का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है। एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्ता, उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहां पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास, 18 ओवर के बाद 119 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago. And looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need

0: improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident. Slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played her shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end, and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run, and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
1: Yeah, bilkul. Dakshin Africa ke fans jo hain, unhone oval maidan se ab prasthan karna bhi shuru kar diya hai. और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर. ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं. बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है उनका. स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे. दूसरे छोर पर नैडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं. लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, 2 डॉट डिलीवरीज हैं. पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था. बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है. और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है. पटकी हुई गेंद थी, आंख मून करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं था आयाबोंगा खाका को. पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था. हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था. और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नैडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया. तो काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है. नैडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है. यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है आयाबोंगा खाका को. और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर. यानी सिर्फ 2 खिलाड़ी आने बाकी. लॉरेन बेल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है. बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. आयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था. 3 गेंदों में 4 रन.

0: बना करके वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए।
1: Of course, 47 needed of the final over. Let's do the math. It's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition. Last six deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win. And Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to two. 125 for eight, five deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. Five balls before the match comes to an end. There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
0: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी चार गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेज़बानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुँचने की दहलीज पर हैं। अगली गेंद जिस पर शबनम स्माइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है गेंद को, एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी डाली थी, लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटिश डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेल बेल के पास पहुंची है, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में चार रन बने ज़रूर हैं लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
1: नेक्स्ट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन अ गुड लेंथ गोज फॉर अ लॉफ्टेड शॉट। डज नदीन डी क्लर्क फाइंड्स एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द डिजायर्ड टाइमिंग। द बॉल लैंड्स वेल शॉर्ट ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर एंड बिफोर द फील्डर कैन पिक इट अप थ्रो इट बैक टू द 22 यार्ड प्लेइंग स्ट्रिप अ कंफर्टेबल सिंगल हैज बीन टेकन दैट टेक्स द स्कोर टू 128 and that brings Shabnim Ismail on strike. Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnim Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men's team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was back in 2009 under the captaincy of Charlotte Edwards, who's currently on the park hugging and delivering handshakes, congratulating the English players. She's the head coach of the team currently. And with these joyous scenes, it is time for us to say goodbye here from the Akashwani commentary box. You were listening to Darpan Tikya in English. Shivendra Chaturvedi in Hindi. We had the company of scorer Sunil.

0: and statistician Jatin Sood, who provided you intriguing facts from around the game. The final would be played on 5th of July between arch rivals England and Australia at the Lords. With that, we leave you. However, don't go too far, because our special program Hero 20 is coming up next.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Player of the match.
5: England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
6: And Megha, our guest, Khyati Gulani, former cricketer, Jishan Ul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman, varishth khel patrikar. Raja, शुरुआत फिर से आप ही से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई। जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
7: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था। आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है इंग्लैंड ने वो सारी चीज़ें की है सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया पिच और धीमी होती गई एंड बॉल वॉज कीपिंग लो, तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफ़ी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन दे ओनली हैव देमसेल्फ टू ब्लेम फॉर दैट।
5: Khyati, continuing that conversation about England's bowling attack, all-round show from the bowlers, every bowler contributed their bit in creating pressure on the batters.
8: Yeah, definitely. If you see this Eccleston and Lauren Bell, they have participated really well, and their batters as well. And if we talk about fielding also, they are far ahead from the other team. And the bowlers like Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her breaking the partnerships. I think it all in all it was a very good performance by the bowlers.
6: Aur Jishan, agar hum baat karte hain ballebazi ki, jo South Africa ki ballebazi rahi, khas taur par captain Wolfhard अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे, आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
9: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका के जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था खासकर, तो मेरे ख्याल से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेनी चाहिए थी, इसलिए कि ये एक बड़ा मैच था सेमीफाइनल। एक किसी भी बैट्समैन को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आखिर तक लेकर के मैच को जाना चाहिए था, बाकी बैट्समैन जो भी बैटर्स थे उन बैटर्स को उनको चाहिए था कि उनको वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूटिलाइज करके उनसे रन निकाल करके मैच को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो उनकी थी या जो कुछ भी था, या ये आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ज़रूर प्रेशर इनके ऊपर डेवलप करता चला गया, जैसे बातें हो रही थी हम लोगों की पीछे भी कि जैसे जैसे ओवर गुजरता जाएगा और रन का जो एवरेज है वो अगर इनके ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो वो मुश्किल होएगी इनको रन बनाने में, और वो ही डेवलप होता चला गया। ख़ासकर जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जो उन्होंने बैटिंग की है, शुरुआत एक अच्छी की थी, आखिर का जो ओवर था हमारे ख्याल से वो छठा ओवर था,

0: चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे क्योंकि फाइनल्स सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहां पे नहीं दिया जा रहा था।
1: हाँ बिल्कुल, देखें मैं क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहाँ मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर प्लान ए ख़राब होता है कि कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती हैं और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज़्यादा ये होना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ के रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम 4 से और 6 से कोशिश करके और निकालेंगे मैच को, तो वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में है बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही 2 जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है। जब इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए थी कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो रोटेट करो, ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आए मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी। वो एक बिखरी सी टीम नज़र आ रही थी, और वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा है इस मैच को देखने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड के जो की जो कैप्टनशिप ही रही है इसमें, उनकी फ्लीट प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग्स, उनकी बॉलिंग का वो तरीका जहां बॉल डालना चाहिए था स्पेशली मुझे, ख़ासकर रमन सर अगर आप याद होगा कि हम लोग भी बात कर रहे थे पीछे भी इस सिलसिले में कि कैसे क्या होगा आगे की वो चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक किया है।
0: बिल्कुल, और इस पे कैसे देखते हैं 2 कप्तान, इसे कैसे इसका आकलन करते हैं, आइए सुनते हैं पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान लॉरा वॉल्फॉर्ट और उसके बाद इंग्लिश कप्तान को।
2: Today by a really good England side, and yeah, I think they played really well.
3: You've been in situations like this before and you've been able to get over the line, so what was different this evening?
2: Not too sure. I think the main difference between our innings and theirs is just they had so many more partnerships. Obviously we started really well with the ball and then they had that really big partnership, and I think we just didn't have any partnerships to sort of speak of, and didn't really have any batters that really got going. So frustrating to lose this way on a big stage, but yeah, we'll go back to the drawing board.
3: Did the pitch play as you expected to in that second innings, and what did you feel was traceable at the halfway stage?
2: Yeah, I thought it was a pretty decent pitch, coming on quite nicely. Thought 170 was about par, pretty happy with that. Yeah, I thought, especially with the outfit as well, it's lightning, I thought it was going to be tough to defend. But yeah, I think they bowled pretty well, clearly had different plans for us, and yeah, we weren't able to step up.
3: How difficult is it to play against a team that have so much home support as well at a ground like this?
2: Yeah, I think it does play a role, but also cool to see so many fans here tonight. I think it just adds sort of to the vibe and the energy. A couple of South Africans as well that I saw, so yeah, that was nice.
3: And just lastly, just on South Africa on the whole through this tournament, you know, a lot of positives obviously for you to get to this point. How will you reflect on, you know, what you put and what you brought to the table?
2: Yeah, a decent campaign for us. I think happy to have made it out of this group stages. I think upon reflection, our batting never really fired throughout the competition. We had some glimpses here or there, some special innings throughout the tournament, but I think as a whole, we just weren't quite clicking. And I think that showed again a bit today, but yeah, I think our bowling and our fielding was pretty good throughout. So yeah, I think we'll have a look at what we've done wrong and hopefully be better next time.
3: A lot of experienced players within that squad, but a lot of young players coming through. Do you see that they've learned enough lessons here to be able to take forwards?
2: I hope so. I think we've got an exciting mix at the moment. Got some really senior players who have played a lot of games with a lot of experience, but some exciting youngsters coming through as well. Hopefully we learn from this. I think the likes of Dirksen was pretty good with the bat throughout. So yeah, hopefully players like that can be even better in the next edition.
3: Hard luck once again, Laura, and all the best in your matches coming up.
2: Thanks.